शुभ प्रभात दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिव्य दर्शन के भजनों के इस प्रोग्राम में। भजन क्यों किए जाते हैं, यूं तो सभी को इस बारे में पता है, लेकिन फिर भी भजन करने से जो मन की शांति हमें मिलती है, स्वास्थ्य लाभ हमें मिलता है, सुबह सुबह जो हमारे चित्त को, हमारे

0: स्वभाव को, हमारे सोचने की शक्ति को प्रबल कर देता है, अच्छा बना देता है, सुख से भर देता है, उसी को भजन कहते हैं दोस्तों। तो आइए सुनते हैं दिव्य दर्शन के ये भजन।
1: एक रेस्टोरेंट में कई बार देखा गया कि एक आदमी जो कि दरअसल भिखारी था, वो आता था और भीड़ का लाभ उठाकर नाश्ता करके चुपके से बिना पैसे दिए खिसक जाता था। एक दिन जब वो खा रहा था तो एक आदमी ने चुपके से दुकान के मालिक को बताया कि ये भाई जी भीड़ का लाभ उठाएगा और देखिएगा बिना बिल चुकाए निकल जाएगा। उसकी बात सुनकर रेस्टोरेंट के मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे बिना कुछ कहे जाने दो, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। हमेशा की तरह भाई ने इधर उधर देखा और भीड़ का लाभ उठाकर चुपचाप खिसक गया। उसके जाने के बाद उसने रेस्टोरेंट के मालिक से पूछा कि मुझे बताइए तो सही कि आपने इस व्यक्ति को भला जाने क्यों दिया। रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा, भाई आप अकेले नहीं हो, कई भाइयों ने देखा है उसे और मुझे उसके बारे में बताया भी है। वो रेस्टोरेंट के सामने बैठा रहता है और जब ये देखता है कि भीड़ हो गई तो वो चुपके से खाना खाने आता है और खा के निकल जाता है। मैंने हमेशा उसे नजरअंदाज किया और कभी उसे रोका नहीं है, उसे कभी पकड़ा भी नहीं और ना ही कभी उसका अपमान करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी दुकान में भीड़ इसी भाई की वजह से है। कैसे? देखिए, वो मेरे रेस्टोरेंट के सामने बैठे हुए प्रार्थना ही करता रहता है कि जल्दी इस रेस्टोरेंट में भीड़ इकट्ठी हो तो मैं भी जल्दी से अंदर जाकर कुछ खा सकूं और निकल सकूं। और निश्चित रूप से जब वो अंदर आता है तो हमेशा यहां भीड़ ही होती है, तो ये भीड़ भी शायद उसी की प्रार्थना का असर है। शायद इसीलिए कहते हैं कि मत करो घमंड इतना कि मैं किसी को खिला रहा हूं। क्या पता कि हम खुद ही किसी के भाग्य से खा रहे हों।
2: आप हैं आरजे जमीर के साथ भक्तिमय दिव्य दर्शन प्रोग्राम में।
3: कलयुग की सच्चाई को इस गीत के माध्यम से आप सभी के बीच लेकर आया हूं और आशा करता हूं आप सुनेंगे और अमल करेंगे।

कंधे पर रखकर चारों धाम की यात्रा करवाते थे। और आज इस कलयुग के पुत्र अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाते हैं। उन्हें अपने माता पिता को अपने साथ रखने में शर्म आती है।

जिस माँ ने रात रात भर जागकर और खुद भूखी रहकर अपने बच्चों को अपने खून से सींचा, आज वही बच्चे उसे अपने साथ रखने में भी शर्माते हैं।

एक माँ 9 महीने अपने बच्चे को कोख में रखती है, लेकिन एक पिता ता उम्र उस बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए अपने दिमाग में रखता है, और वही बच्चे उस पिता के साथ क्या व्यवहार करते हैं, आइए सुनते हैं।

0: दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइए बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। देखिए, कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ।
1: आइए दोस्तों, मिलकर प्रभु की प्रशंसा में गीत गाते हैं, भजन गुनगुनाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि सभी को प्रभु खुश रखें।

कौन हुआ है हवा से रूबरू? बोलो, कौन हुआ है हवा से रूबरू? न मैं और न तुम, मगर जैसे ही पत्तियों की होती है सरसराहट, होने लगती है गुजरती हुई हवा की आहट। किसने देखा है हवा को? न तुमने न मैंने, मगर जब पेड़ हो जाते हैं नतमस्तक, मगर जब पेड़ हो जाते हैं नतमस्तक, बस बहती ही रहती है हवा। बोलो, कौन हुआ है हवा से रूबरू? न मैं न तुम।

एक बार कुछ जिज्ञासुओं ने क्वेश्चन किया, प्रश्न किया कि मनुष्य डेवलपमेंट क्यों चाहता है, विकास क्यों चाहता है, उसे पाने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। दरअसल विकास यानी कि डेवलपमेंट नेचर यानी कि प्रकृति का एक शाश्वत नियम है, होके रहेगा आप करें या ना करें। सृष्टि में सब कुछ गतिमान है, चलता ही रहता है। मनुष्य सृष्टि का ही एक अंग है और विकास करना, आगे बढ़ना उसका मौलिक लक्षण है। मनुष्य को यह पता है कि जब तक वो परिश्रम नहीं करेगा विकास पथ पर आगे बढ़ ही नहीं सकता। विकास का पथ चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक, इसके पीछे का उद्देश्य व्यक्तिगत जीवन में सुख भोग की चाहत ही होती है। क्योंकि मनुष्य की सोच बहुत बड़ी है, इसलिए सिर्फ वो अपने लिए सुख समेटना उसका मौलिक गुण धर्म नहीं होता। उस सामाजिक जीवन को भी वो सुख पहुंचाना चाहता है जिसे वो भोग रहा है। विवेकशील प्राणी होने के कारण वो अच्छे बुरे के बारे में सही निर्णय ले सकता है। जब वो सही निर्णय लेने लगता है तब आध्यात्मिक महत्व को भी समझने लगता है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग का सहारा लेने के लिए उसे सुबह शाम साधना करनी पड़ती है। इसी साधना की बदौलत मनुष्यों में व्यक्तिगत मानसिक विकास और विश्व बंधुत्व की भावना कायम होगी। यहां एक और बात बहुत जरूरी है दोस्तों, आध्यात्मिकता के साथ मनुष्य को भौतिक और मानसिक जगत से भी संतुलन बनाकर रखना होगा। मनुष्य में वृहत्व को पाने की आकांक्षा है, इसे बड़ा देखने की इच्छा भी कह सकते हैं, इसे बड़ा बनने की इच्छा भी कह सकते हैं। अगर उसमें यह आकांक्षा न होती तो ब्रह्म समुद्र में रहकर भी वो पर ब्रह्म को पहचानने का प्रयास न करता और हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाता। विराट को पाने का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति है। व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं कि एक कार का मालिक 5 कारों का मालिक बनना चाहता है, करोड़पति अरबपति बनना चाहता है, मगर माने या ना माने सीमित संपत्ति को सभी मनुष्यों को संयुक्त संपत्ति के रूप में ग्रहण करना होगा। सीमित वस्तुओं की प्राप्ति के पीछे दौड़ दौड़ कर धक्के खा खा कर मनुष्य ने एक दिन ये सच तो खोज ही निकाला था कि सच में उसका मन ऐसा कुछ पाना चाहता है जो जीवन भर के लिए बस मिल जाए।

0: भजन किसी भी भाषा में धार्मिक विषय या आध्यात्मिक विचारों के साथ किसी भी भक्ति गीत को संदर्भित करना होता है, विशेष रूप से धार्मिक धर्मों में। तो लीजिए दोस्तों, सुनते हैं दिव्य दर्शन के ये प्यारे से भजन।
1: मोह माया के बंधनों में फंसे मनुष्य की वेदना को संबोधित करते हुए कबीर दास जी लिखते हैं कि ये माया ऐसी पापिनी है कि ये अलग अलग रूपों जैसे आशा तृष्णा इत्यादि के रूप में मनुष्य को घेरे रहती है। शरीर मरते रहते हैं, मनुष्य बार बार जन्म लेते रहते हैं, परंतु ये मोह माया के बंधन कभी समाप्त नहीं होते। इसलिए इस माया से सदैव दूर रहना चाहिए।

मनुष्य के जन्म मरण के चक्र को संबोधित करते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि अपने जीवन काल में ही मनुष्य को ऐसे सत्कर्म करने चाहिए कि जब वो प्राणी संसार से जाए तब ये सारा संसार उसे याद करते हुए उसके द्वारा की गई ईश्वर भक्ति तथा उसके द्वारा किए गए सत्कर्मों को याद करते हुए रोए और उसे सदा सदा के लिए अपने हृदयों में बसा कर रखे।

मेरे। संत शिरोमणि कबीर दास जी का यह दुआ भी कर्मकांडी भक्ति के तरीकों पर प्रहार करता है। वो कहते हैं कि भले ही लाख माला फेर लो, यदि आपके मन में प्राणी मात्र के लिए दया और प्रेम का भाव नहीं है तो आपकी पूजा पूर्णतः व्यर्थ है। अतः आपने हाथ की माला का त्याग करना है और अपने मन को शुद्ध करना है, जिसमें जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव न हो और सभी प्राणी एक समान रूप से प्रिय।

संत कबीर दास जी चाटुकारों और चापलूसों से बचकर रहने की सलाह देते हैं। उनके मतानुसार जो हमारी निंदा करता है उसे सदा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि केवल वही है जो कि आपको आपकी कमियों के बारे में अवगत कराता रहता है, जिसे हम दूर करके अपना जीवन सफल बना सकते हैं।

रेडियो टंटिया भील, आपके झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM। सुनते रहिए आपके झाबुआ की आवाज़।

या देवता या प्रभु को याद करना, उसका नाम लेना, जय जयकार करना, ये वही गीत हैं जिसमें ईश्वर या किसी देवता आदि के गुणों का कीर्तन किया जाता है। इन्हीं को भजन कहते हैं मित्रों। तो लीजिए सुनते हैं दिव्य दर्शन की ये भजन। मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर और आप सुन रहे हैं दिव्य दर्शन के भजन।

अनूठी ईमानदारी। श्रीलंका में मेहता शैसा नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो परम ईश्वर भक्त और ईमानदार था। वो धर्मशास्त्रों का वाक्य दोहराया करता था कि बिना परिश्रम के प्राप्त हुआ धन विष का काम करता है। वह पहले जड़ी बूटियों का एक बड़ा थोक व्यापारी था, लेकिन अब खुद जंगलों से जड़ी बूटियां लाता और उन्हें बेचकर दिन गुजारता था। उसका एक मित्र था लारोटा। वह भी पहले काफी धनी था, लेकिन इन दिनों गरीबी के दिन बिता रहा था। एक दिन मेहता शैसा लारोटा के बागीचे में जमीन खोदकर जड़ी बूटियां तलाश रहा था कि अचानक उसे एक घड़ा दिखाई दिया। उसमें सोने की अशर्फियां भरी हुई थी। शैसा ने अशर्फियों को देखा, किंतु उसके अंदर की सच्चाई ने लालच को पास भी फटकने नहीं दिया। उसने घड़े को मिट्टी में ही दबा दिया और लारोटा के पास पहुंचकर सूचना दी कि बगीचे में अशर्फियों से भरा घड़ा दबा हुआ है। लारोटा तत्काल बगीचे में उस जगह पहुंचा जहां पर वह घड़ा दबा हुआ था। अशर्फियां देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने शैसा को इनाम देने की कोशिश की तो उसने कहा कि दूसरे का धन विष के समान घातक होता है। लारोटा ने बगीचे की खुदाई करवाई तो उसे अशर्फियों से भरे कई घड़े मिले। शैसा की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसने अपनी बहन का विवाह उससे कर दिया।

तो चलिए दोस्तों, इन्हीं भजनों के साथ हम सभी का दिन शुभ हो। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा, आज के सुखदायक दिन के बाद कल सुबह मैं फिर प्रभु के नाम के साथ, प्रभु के भजनों के साथ हाजिर हो जाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप हैं आप ही के झाबुआ की आवाज रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। म्यूजियम से शुरू हुई कहानी, क्यूरियोसिटी की पावर। दोस्तों, कभी आप किसी ऐसे म्यूजियम गए हैं और वहां किसी एक छोटी सी लाइन ने आपको कुछ ऐसे इन्फ्लुएंस किया है जिसने आपकी सोच बदल दी हो? कभी एक छोटी सी कहानी ने आपको रोक कर सोचने पर मजबूर किया हो? आज मैं आपको एक ऐसे स्टोरी टेलर के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्होंने अपनी जिंदगी का डायरेक्शन एक म्यूजियम में पड़े हुए एक सच से बदल दिया। नाम है अरविंद विजय मोहन। उनकी कहानी सिंपल सी लगती है, लेकिन मैसेज बहुत गहरा है। एक वक्त था जब उनका इंस्टाग्राम भी बाकी लोगों की तरह था। ट्रैवल के फोटोज, लग्जरी प्लेसेस, खूबसूरत विजुअल्स, सब कुछ अच्छा था, पर मीनिंगफुल नहीं। फिर एक दिन वो जर्मनी के एक म्यूजियम में गए, मर्सिडीज म्यूजियम। वहां उन्होंने पढ़ा मर्सिडीज नाम एक्चुअली एक छोटी सी लड़की का नाम था। एक फादर ने अपनी बेटी के नाम पर कार का नाम रखा था। एक बिजनेस डिसीजन के पीछे एक इमोशनल कहानी थी, और बस यहीं से उनकी सोच बदल गई, पूरा यू टर्न ले लिया समझो। उन्होंने महसूस किया हर चीज के पीछे कहानी जरूर होती है। हर ब्रांड, हर बिल्डिंग, हर इन्वेंशन किसी इंसान की एक कहानी ही तो है। दोस्तों, यहीं से शुरू होती है उनकी क्यूरियोसिटी की जर्नी। उन्होंने डिसाइड किया कि इंस्टाग्राम पर सिर्फ फोटोज नहीं डालेंगे, कहानियां बताएंगे। और आज उनका कंटेंट सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होता, वो इंसाइट होता है, मीनिंग होता है। वो हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बना देते हैं, ब्रांड्स को ह्यूमन बना देते हैं, और फैक्ट्स को इमोशनल बना देते हैं। और सबसे खास बात, वो हर कहानी के बाद एक सवाल छोड़ देते हैं, हम अपनी कहानी कैसे बता रहे हैं, सोच कर देखिए। क्योंकि सच ये है, हर इंसान एक ब्रांड ही तो है, हर इंसान की एक स्टोरी है। पर फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग उस स्टोरी को समझते हैं और कुछ नहीं। अरविंद कहते हैं स्टोरी सिर्फ बताने के लिए नहीं होती, स्टोरी डायरेक्शन देती है। अगर आप अपने पास्ट को समझ लेते हैं तो आप अपने फ्यूचर को डिजाइन कर सकते हैं। सोचिए, अगर मर्सिडीज सिर्फ एक कार होती बिना किसी कहानी के, क्या वो इतनी आइकॉनिक होती? अगर कोई लीडर सिर्फ डेजिग्नेशन होता बिना स्ट्रगल की कहानी के, क्या लोग उसे कनेक्ट करते? नहीं, हम फैक्ट से इंप्रेस नहीं होते, पर कहानी से कनेक्ट जरूर होते हैं। और यही यही अरविंद का कोर मैसेज है। क्यूरियोसिटी को जिंदा रखो, सवाल पूछते रहो, सरफेस के थोड़ा नीचे देखो। और इंस्टाग्राम एक रिमाइंडर है, और उनका इंस्टाग्राम एक रिमाइंडर है कि दुनिया बोरिंग नहीं है। हमारी नजर बोरिंग हो जाती है, जब हम देखना सीख लेते हैं तो हर चीज में कहानी मिल ही जाती है। एक बिल्डिंग, एक नाम, एक पुराना सा बोर्ड, सब में हिस्ट्री छुपी हुई है। और शायद इसीलिए
उनके फॉलोअर्स सिर्फ कंटेंट कंज्यूम नहीं करते, वो सोचने लगते हैं। दोस्तों, आज का सवाल मेरा आपसे है, आपकी कहानी क्या है? आप अपने आप को कैसे डिफाइन करते हैं? अगर आज कोई आपकी बायोग्राफी लिखे तो उसमें सिर्फ डेजिग्नेशन होगा या कोई जर्नी भी होगी, कोई किस्सा भी होगा? क्यूरियोसिटी सिर्फ नॉलेज नहीं देती, क्लैरिटी देती है, और जब क्लैरिटी आती है तो इंसान ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाता है। याद रखिए, जिंदगी में सिर्फ जीना नहीं, ऑब्जर्व करना सीखिए, क्योंकि कहानियां हर जगह हैं, बस देखने वाली नजर चाहिए। देख के देखिए,

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: इंसान प्रोडक्ट नहीं खरीदता, कहानी खरीदता है। इसलिए 20 रुपए की कॉफी घर पर नहीं पीता, 200 रुपए देकर कैफे में बोलता है। यह वाइब अलग है भाई।

नरेटिव का जाल, मीडिया सच नहीं सच का फ्रेम दिखाता है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है सच क्या होता है? और जो हम कहते हैं वो सच होता है या सच का सिर्फ एक हिस्सा होता है? मीडिया हमेशा झूठ नहीं बोलता, लेकिन मीडिया सच को कैसे दिखाता है वही असली खेल है। इसको कहते हैं फ्रेमिंग। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हेडलाइन आए प्रोटेस्टर्स ने सिटी को ब्लॉक किया और दूसरी आए सिटीजंस ने जस्टिस डिमांड की, इवेंट सेम है, लोग सेम है, रोड वही है, बस शायद शब्द बदल गए, फ्रेम बदल गया और आपका रिएक्शन भी आई एम श्योर बदल गया। यही कल्चरल मैनिपुलेशन का पहला बीज है, सच को छुपाना नहीं सच को एंगल देना। एजेंडा सेटिंग, जो दिख रहा है वही इंपॉर्टेंट है। 1970 में कम्युनिकेशन रिसर्चर्स ने एक थ्योरी दी, एजेंडा सेटिंग थ्योरी। मीडिया लोगों को यह बताता है कि सोचना है, मीडिया लोगों को यह बताता है कि किस बारे में सोचना है। और अगर 10 दिन तक टीवी पर सिर्फ क्राइम दिखाया जाए तो लोग कहेंगे देश अनसेफ है, चाहे क्राइम रेट स्टैटिस्टिकली कम हो रहा हो। अगर 15 दिन तक इकोनॉमी की ग्रोथ हेडलाइन बने, लोग कहेंगे देश तो प्रोग्रेस कर रहा है, चाहे उनके घर का बजट टाइट ही क्यों ना हो। हम अपनी रियलिटी एक्सपीरियंस से कम, मीडिया के रिपीटेशन से ज्यादा बनाते हैं। अब थोड़ा सिनेमा की बात करते हैं। सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, सिनेमा कलेक्टिव इमेजिनेशन को डिजाइन करता है। हॉलीवुड ने 1940s एंड 50s में अमेरिकन सोल्जर को हीरो बनाकर वॉर को मॉरल ड्यूटी के रूप में प्रेजेंट किया। कोल्ड वॉर के दौरान विलेन का एक्सेंट अलग होता है, कलर ग्रेडिंग डार्क होती है, म्यूजिक टेंस होता है, आपका दिमाग स्लोली डिसाइड करता है कि ये लोग थ्रेट हैं। आपने कभी कॉन्शियसली डिसाइड नहीं किया, फ्रेम ने आपके लिए जरूर डिसाइड किया। इंडिया में भी 70s 80s के दौरान एंग्री यंग मैन का राइज हुआ। सिस्टम करप्ट है, हीरो सिस्टम से लड़ता है, ऑडियंस क्लैप करती है। ये सिर्फ फिल्म नहीं थी, ये पब्लिक फ्रस्ट्रेशन का सिनेमैटिक आउटलेट था। सिनेमा इमोशन को आइडियोलॉजी में बदलने का सबसे सटल तरीका होता है। सबसे साइलेंट वेपन रिपीटेशन। मैनिपुलेशन लाउड नहीं होती, वो रिपीट होती है। एक इमेज को 50 बार देखिए, वो नॉर्मल लगने लगेगी। एक स्टीरियोटाइप को बार बार सुन लीजिए, वो जोक बन जाएगा, फिर ट्रूथ बन जाएगा। सच और कहानी का सच डिफरेंस ही नहीं रहता है। 1990 के एड्स याद कीजिए, फेयरनेस क्रीम इक्वल्स टू सक्सेस। शादी के रिश्तों में गोरी प्रेफरेंस, ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं थी, ये ब्यूटी स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग थी। और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्शन एस्पिरेशन बन गया। कल्चर को चेंज करने के लिए लॉज नहीं विजुअल्स रिपीट किए गए। और अब आते हैं हमारा सबसे फेवरेट और सबसे नया एजेंडा, सोशल मीडिया एल्गोरिथम मैनिपुलेशन। अब आज मीडिया सिर्फ टीवी स्टूडियो में तो नहीं है, वो आपके हाथ में है हर समय। लेकिन यहाँ एक नया प्लेयर है, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम डिसाइड करता है कि आप क्या देखेंगे। अगर आप एक पॉलिटिकल व्यू देखेंगे आपको 20 और मिलेंगे, अगर आप एक आउटरेज क्लिप देखेंगे आपको एक्सट्रीम वर्जन्स मिलेंगे। इसको कहते हैं एको चेंबर। आपको लगता है दुनिया आप जैसे सोच रही है, असल में एल्गोरिथम आपको फिल्टर बबल में रख के दुनिया दिखा रही है। आपको लगता है आप इन्फॉर्म्ड हैं, असल में आप एक क्यूरेटेड रियलिटी में जी रहे हैं। मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट, एक पॉलिटिकल थिंकर ने टर्म दिया था, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। इसका मतलब पब्लिक को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं किया जाता, कभी नहीं। पब्लिक को स्लोली कन्विंस किया जाता है कि जो हो रहा है वही सही है। रिपीटेटेड एक्सपर्ट पैनल्स, रिपीटेटेड ग्राफिक्स,
रिपीटेटेड नरेटिव्स, कहानियां, किस्से, लोग रेजिस्ट नहीं करते, लोग अग्री करने लगते हैं। कल्चर को फोर्स से नहीं, फ्लो से बदला जाता है। विलेन बनाना, हीरो बनाना, मीडिया किसी को भी विलेन बना सकती है, किसी को भी हीरो बना सकती है, वो भी रातों रात। क्लोजअप शॉट्स, सीरियस बैकग्राउंड म्यूजिक, सिलेक्टिव फुटेज, और हीरो सॉफ्ट लाइटिंग, बैकग्राउंड में अपलिफ्टिंग स्कोर, पॉजिटिव कमेंट्री। ह्यूमन ब्रेन स्टोरी टेलिंग का अडिक्ट है, हम फैक्ट्स नहीं स्टोरीज कंज्यूम करते हैं, और जो स्टोरी कंट्रोल करता है वो परसेप्शन कंट्रोल करता है। सबसे बड़ा सवाल, तो क्या मीडिया हमेशा गलत है? नहीं, मीडिया पावरफुल है, ताकतवर है, और पावर न्यूट्रल होती है, उसे कैसे हो वो मैटर नहीं करता। प्रॉब्लम तब होती है जब व्यूअर क्रिटिकल नहीं होता, सवाल नहीं पूछता, अपनी सोच नहीं इस्तेमाल करता, जब हम हेडलाइन शेयर कर देते हैं बिना सोर्स तक चेक करे, जब हम वायरल क्लिप पर रिएक्शन दे देते हैं बिना कॉन्टेक्स्ट देखे। कल्चरल मैनिपुलेशन तब सक्सेसफुल होता है जब ऑडियंस पैसिव हो। दोस्तों, सच को झूठ बनाना मुश्किल है, लेकिन सच को फ्रेम करके आधा सच बनाना आसान है। आज जब आप न्यूज देखें, फिल्म देखें या इंस्टाग्राम की रील देखें, एक सवाल जरूर पूछेगा, मुझे क्या दिखाया जा रहा है और क्या नहीं दिखाया जा रहा? क्योंकि नरेटिव का जाल तब टूटता है जब देखने वाला जागता है। जाग कर देखिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: जब प्रोडक्ट गलती से फ्लोट करने लगे, कोई और कंपनी पैनिक करती, जीनियस ब्रांड बोल उठे, देखिए ये पानी पर तैरता है। लेसन, बिजनेस में मिस्टेक भी फीचर बन सकती है।

बोरोलिन, एक हरी डिब्बी, एक देसी दास्तां। दोस्तों, आज मैं आपको किसी ग्लैमरस कॉस्मेटिक ब्रांड की कहानी नहीं सुनाने वाली, ना कोई फिल्मी इंडोर्समेंट, ना कोई फ्लैशी एड कैंपेन। आज की कहानी एक छोटी सी हरी टिन की डिब्बी की है, जो शायद आपके घर में जरूर होगी, और अगर नहीं है तो कभी ना कभी तो जरूर रही होगी। नाम है बोरोलिन। हाँ, वही बोरोलिन जिसकी खुशबू आते ही बचपन की याद आज भी ताजा हो जाती है। शुरुआत 1930 में अंग्रेजों का दौर था। साल 1930 इंडिया अभी आजाद नहीं हुआ था। बाजार में ज्यादातर फॉरेन प्रोडक्ट्स ही मिलते थे। देसी चीजें बनाना एक हिम्मत का काम था। तब कोलकाता की एक व्यक्ति गौर मोहन दत्ता, इन्होंने डिसाइड किया कि एक इंडियन एंटीसेप्टिक क्रीम बनाई जाए। उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की जीडी फार्मास्यूटिकल्स, और वहां से पैदा हुई बोरोलिन। नाम भी इंटरेस्टिंग है, बोरो आया बोरो एसिड से, जो इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है। ओलिन आया लिनोनिन से, जो स्किन को नरम बनाता है। मतलब नाम के अंदर ही फॉर्मूला छिपा है भाई। सिर्फ क्रीम नहीं, स्वदेशी सोच। उस टाइम बोरोलिन सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं थी, वो एक मैसेज थी, अपना बनाओ अपना लगाओ। फॉरेन क्रीम्स के सामने एक देसी जवाब, सिंपल ग्रीन डिब्बी, सीधा सा डिजाइन, कोई एक्स्ट्रा शोशा नहीं। और शायद इसी सिंप्लिसिटी ने लोगों का दिल जीत लिया सालों तक, शतकों तक। वो पहचान वाली खुशबू, आपने नोटिस किया है, बोरोलिन की एक खास स्मेल होती है, थोड़ी मेडिसिनल, थोड़ी कंफर्टिंग। कई ब्रांड्स टाइम के साथ फ्रेग्रेंस चेंज कर देते हैं, पर बोरोलिन ने अपनी ओरिजिनल खुशबू ऑलमोस्ट वही रखी है, क्योंकि वो समझ गए थे प्रोडक्ट सिर्फ स्किन पर नहीं लगता, यादों पर भी लगता है। दादी की संदूक में, माँ के पर्स में, स्कूल के बाद घुटने की चोट पर, हर जगह एक ही क्रीम, बोरोलिन। बिना शोर के पॉपुलर हुई बोरोलिन। आज के जमाने में ब्रांड बनाने के लिए सोशल मीडिया, रील्स, इन्फ्लुएंसर्स, एड्स, सब कुछ चाहिए। पर बोरोलिन का असली एडवर्टाइजमेंट क्या था आप जानते हैं? लोग, एक घर से दूसरे घर तक, एक माँ से दूसरी माँ तक, वर्ड ऑफ माउथ। जब प्रोडक्ट सच में काम करता है तो लोग खुद ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। मुश्किल दौर में भी साथ दिया। 1947 का पार्टीशन बिजनेस के लिए टफ टाइम था, पर बोरोलिन का प्रोडक्शन बंद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लोगों को उसकी जरूरत थी। छोटी सी कट, फटी हुई स्किन, सर्दी में फटी हुई एड़ियां, बोरोलिन हर घर का एक परमानेंट मेंबर बन चुकी थी। पैकेजिंग जो बदली नहीं। एक और इंटरेस्टिंग बात, मार्केट में इतने सारे नए एंटीसेप्टिक क्रीम्स आए, मॉडर्न ट्यूब्स, ग्लॉसी पैक्स, स्टाइलिश ब्रांडिंग, लेकिन बोरोलिन आज भी अपनी हरी टिन में ही मिलती है। क्यों? क्योंकि कभी कभी चेंज करना ग्रोथ नहीं होता, कभी कभी कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। वो टिन सिर्फ कंटेनर नहीं है, वो आइडेंटिटी है। सोचिए, अगर आपसे कोई पूछे घर में एंटीसेप्टिक क्रीम है, अक्सर जवाब होता है हाँ बोरोलिन है। ये होता है ब्रांड रिकॉल, जब प्रोडक्ट कैटेगरी का नाम ही ब्रांड बन जाए। बंगाल में तो बोरोलिन लोग घर का हिस्सा मानते हैं, शादी के सामान में, ट्रैवल बैग में, विंटर के टाइम बेडसाइड टेबल पर, सभी जगह जानी जाती है। 100 साल का सफर, लगभग एक सदी होने को आई है। ना अग्रेसिव मार्केटिंग, ना कोई सेलिब्रिटी फेस, सिर्फ एक चीज, भरोसा। और शायद इसीलिए बोरोलिन एक एग्जाम्पल है कि ब्रांड लाउड होने से नहीं, रिलायबल होने से बनता है।
दोस्तों कभी कभी सबसे सिंपल चीजें सबसे ज्यादा टिकती हैं। हरी भरी डिब्बी, एक सिंपल फॉर्मूला और एक देश की यादें। बोरोलिन सिर्फ क्रीम नहीं, वो कंटिन्यूटी है, वो रिमाइंडर है कि असली वैल्यू पैकेजिंग से नहीं क्वालिटी से आती है। तो अगली बार जब आप बोरोलिन लगाएंगे, सिर्फ स्किन हील नहीं होगी, शायद थोड़ी सी मेमोरी भी रिफ्रेश हो जाए। लगा के देखिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: नए ब्रांड्स, पैकेजिंग ग्लॉसी, एड फ्लैशी, इन्फ्लुएंसर रेडी। पुराने ब्रांड्स, हम 80 साल से खड़े हैं, तुम इंस्टाग्राम संभालो, हम भरोसा संभालते हैं।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज। दुनिया में ज्यादातर इंसान मन हारे बैठे रहते हैं कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं तो छोटा आदमी हूं, क्या काम कर पाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ज्ञान नहीं है, क्या कर लूंगा। कई बार तो धनी और ज्ञानी लोग भी अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता जैसे मुहावरों के पीछे छिप जाते हैं। ये सुंदर युवती भी बस यही सोचती थी। दुनिया जब द्वितीय युद्ध लड़ने जा रही थी तब वो क्या कर सकती थी। उसके देश पोलैंड पर जर्मनी और रूस का कब्जा हो चुका था। वो युवती कभी नर्स का काम करती तो कभी नौकरानी। जुल्म के दिन थे, यहूदियों पर तो कहर टूट रहा था, हिटलर की हैवानियत चरम पर थी। ये युवती ईसाई थी पर अपने देश की आजादी की पक्षधर भी थी, तो उसे भी तरह तरह से सताया जाता था। वो बिचारी अपने परिवार से बिछड़ गई, चुपचाप नजरें झुकाए मुंह छिपाए घर से निकला करती थी कि पता नहीं कब कौन सी नई मुसीबत टूट पड़े। सामान्य कद की, दुबली पतली, मृदुभाषी नीली आंखें और घने सुनहरे बालों वाली यह युवती तमाम झमेलों से बचने के लिए इधर उधर फिरती थी। वो सोचती रहती थी कि ये सोचकर भी वो क्या कर लेगी, किसे बचा लेगी। अक्सर वो आंखें मूंद लेती जैसे ज्यादातर लोग करते हैं, पर एक दिन तो हद ही हो गई। अप्रैल का महीना था, साल 1942, बाजार में कोहराम मचा था, नाजी दरिंदे लोगों को मार रहे थे, एक छोटे से बच्चे को भी उन्होंने उसकी मां से छीन लिया। छीनते ही एक नाजी अफसर ने उसे हवा में उछाल दिया और जमीन पर गिरने से पहले ही गोली मार दी। हैवानियत के बेरहम मंजर में नाजी पागल जानवरों से भी ज्यादा खूंखार नजर आ रहे थे। उनकी रगों में सिर्फ नफरत का सैलाब था जिसमें इंसानियत का नामो निशान नहीं था। ये नाजी भी कभी बेबस शिशु रहे होंगे, उन्हें किसी ने मां की गोद से नहीं छीना होगा ना, उन्हें किसी ने हवा में नहीं फेंका होगा ना, उनके सीने को कोई गोली न पार कर गई होगी। न शिशु से मोह और न ममता की परवाह, न मानवता का लिहाज। क्या नफरत ही दुनिया का मूल स्वभाव है और बाकी धर्मपंथ उसके पीछे पीछे बस घिसटे जा रहे हैं? क्या ईश्वर भी धर्म देखकर बचाव के लिए आगे आता है कभी? क्या ईश्वर भी विधर्मियों को मौत का तमाशा दिखाता है? उस युवती का ईश्वर से यकीन उठने लगा। शायद कोई ईश्वर होता ही नहीं, खुद अपनी मदद के लिए इंसान को सजग रहना पड़ेगा। तब बहुत आसान था तमाशबीन बनकर रह जाना, पर उस युवती ने यह नहीं सोचा कि वो इन दिनों बेघर बेपरिवार नौकरानी है। उसने कहीं सुना था कि किसी इंसान की जान बचाना संसार को बचाने के बराबर है। काश वो भी किसी की जान बचा पाती। चारों तरफ लोग मर रहे थे, जो सिर्फ तमाशा देखने से तो काम नहीं चलेगा, न नींद आएगी न चैन मिलेगा। उन दिनों उस 19-20 बरस की युवती शहर से कुछ दूर एक बड़े से घर में काम करती थी। उसका मालिक एक नाजी अफसर ही था। एक दिन नौकरानी को पता चला कि पास के कारखाने में बंधुआ मजदूरी कर रहे 12 यहूदियों को किसी भी दिन मार दिया जाएगा, तो वो उन सभी को छपाकर साथ ले आई। सभी यहूदी मुंह पर ताले लगाए रात भर उस बड़े घर के तहखाने में छिपे रहते और तभी ऊपर घर में आते थे जब नाजी अफसर काम पर चला जाता था। दिन के समय सारे यहूदी रसोई से सफाई तक मिलकर घर का पूरा काम करते थे और शाम होने से पहले ही तहखाने में कैद हो जाते थे। महीनों बीत गए पर एक दिन भेद खुल गया। युवती नाजी अफसर के पैरों में गिर गई कि मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूं पर किसी की जान मत लो। तब जान बच गई पर कुछ ही दिन बाद सबको लेकर जंगल में छिपना पड़ा। खैर एक दिन युद्ध खत्म हुआ और वो युवती किसी तरह अमेरिका पहुंच गई। वहां
वो संकोची युवती जीवन के नए संघर्ष में खो गई। पर दुनिया में जब यहूदी कुछ संभले, तब उन्होंने अपने मददगारों को याद किया और मददगारों के इतिहास में युवती आइरीन गट ओपडाइक का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। 5 मई को जन्म लेने वाली आइरीन को यहूदियों के देश के सर्वोच्च सम्मान इज़राइल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। उनकी करुण दास्तान वाली पुस्तक इन माई हैंड्स मेमोरीज ऑफ अ होलोकॉस्ट रेस्क्यूअर की लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 30 वर्ष स्कूली बच्चों को अपनी कहानी सुनाते और देशाटन करते हुए बिताए। वो बार बार कहती थी कि राष्ट्रीयता धर्म रंग और पंथ की परवाह किए बिना सबसे लगाव रखिए, हम एक ही परिवार हैं, प्यार करना सीखिए और मौका मिलते ही एक दूसरे की मदद कीजिए, तभी दुनिया रहने लायक होगी। क्या हम कुछ ऐसा सोचते हैं दोस्तों?

मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप हैं जाबुआ के अपने रेडियो स्टेशन रेडियो टांटियाबुई 90.8 एफएम पर और आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ प्रेरणादायक गीत।

चलिए दोस्तों, आज आपको मिलवाते हैं भावेश चौधरी जी से, जो एक किसान हैं और एक बिजनेसमैन भी। दोस्तों, हिंदुस्तान नौजवानों का देश है। इसकी 65% से ज्यादा आबादी की उम्र 35 साल से कम है। ऐसे में रोजगार देश का सबसे अहम मुद्दा होना चाहिए, और यूं देखें तो है भी। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी यानी कि CSDS ने अपने अभी के सर्वे में इस बात को बताया। इस समस्या से जुड़ी हुई एक हकीकत यह भी है कि देखिए, कोई भी सरकार इतनी विशाल युवा आबादी के लिए सरकारी नौकरियां नहीं रख सकती। हालांकि उनकी आजीविका के उपाय करने का दायित्व उन्हीं का है, फिर भी। लेकिन इस समस्या के हल का एक ठोस रास्ता भावेश चौधरी जैसे युवा दिखा रहे हैं, जो न सिर्फ तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद एक सफल बिजनेसमैन है, उद्यमी है, बल्कि उन्होंने अपने आसपास के 150 से ज्यादा किसानों की जिंदगी पर भी सकारात्मक असर डाला है। राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक तहसील है सूरजगढ़। इसी के बरेला आसलवास गांव में आज से करीब 25 साल पहले भावेश पैदा हुए। पिता शेर सिंह चौधरी सीमा सुरक्षा बल में जवान थे और गांव में अपनी खेतीबाड़ी भी थी, इसलिए भावेश का बचपन कभी किसी अभाव में गुजरा नहीं। गांव के तमाम बच्चों की तरह स्थानीय स्कूल में ही पढ़ाई लिखाई हुई, पर स्कूल में कभी उनका दिल लगा नहीं। चार भाई बहनों में दूसरे भावेश यही देखते हुए सयाने हुए कि उनके गांव के लड़के, बल्कि अब तो लड़कियां भी, एक ही लक्ष्य रखते थे, फौज या पुलिस में कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। पिता शेर सिंह कभी कभी बेटे को अपनी पोस्टिंग वाली जगह पर ले जाते थे, जहां उनको तरह तरह के आदेशों का पालन करते देखकर, काफी तनाव में भी ड्यूटी निभाते देखकर भावेश का बालक मन नौकरी से तो हट गया। हालांकि परिवार और खुद पिता की यही इच्छा थी कि वो गांव के दूसरे बच्चों की तरह फौज में जाएं या पुलिस में जाएं, लेकिन भावेश ने कोई लक्ष्य नहीं बनाया। वो बस कक्षाएं पास करते रहे और बढ़ते रहे। 12वीं का इम्तिहान पास करने के बाद पहली बार लक्ष्य संबंधी सवाल ने उन्हें परेशान किया कि अब क्या करोगे। जाहिर है, जब शहरी इलाकों में ही किशोरों की अभिरुचि जांचने परखने और उन्हें उनकी पसंद के क्षेत्र में दक्ष बनाने के सारी कोशिशें बेकार हो रही थीं, तो बरेला आसलवास के युवाओं की भला कौन सुध लेता। आगे पढ़ने की इच्छा बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन परिवार के दबाव में उन्होंने BSc में दाखिला ले लिया। पढ़ाई करते हुए सरकारी नौकरियों की कई परीक्षाएं दी, लेकिन किसी में कामयाबी नहीं मिली। उस दौरान उनके कई दोस्त सरकारी मुलाजिम हो गए। परिजनों और पड़ोसियों के व्यंग का सिलसिला शुरू हो गया, मगर भावेश के दिमाग में ये बात साफ हो चुकी थी कि दूसरों के हुक्म मानने वाली नौकरी उनको नहीं करनी है, और आदेश देने वाली कोई नौकरी उनको मिलने से रही। तो उन्होंने कॉलेज के सेकेंड ईयर में ही पढ़ाई छोड़ दी और परिवार को ऐलान कर दिया कि वो अपना कोई काम करेंगे। परिवार वालों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। पिता तो खैर नाराज थे ही। भावेश को अब अक्सर सुनना पड़ता, ये किसी काम का नहीं है, इसे जायदाद से बेदखल कर दो, वरना घर जमीन सब बेचकर खा जाएगा, ऐसे निठल्ले को कौन अपनी बेटी देगा। हरियाणा राजस्थान के इस इलाके की एक निर्मम सच्चाई ये भी है कि जिन युवाओं के पास सरकारी या मोटी पगार वाली निजी नौकरी नहीं है, जिनके पास जमा जमाया कारोबार नहीं है, उनकी शादियां ही नहीं होती। पिता के दबाव के आगे घुटने टेकते हुए भावेश ने पड़ोस के शहर लोहारू में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला तो ले लिया, मगर उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो अंग्रेजी माध्यम में थी और भावेश को अब तक पूरी पढ़ाई हिंदी में ही करनी हुई थी। एक महीने में ही उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ दिया। सवाल था, अब क्या करें? अब जो कुछ भी करना था अपने भरोसे करना था। भावेश को याद आया कि जब वो हॉस्टल में रहते थे, तब उनके शहरी सहपाठी और कॉलेज शिक्षक उनसे मां के हाथों बना देसी घी लाने की फरमाइश किया करते थे, और जब वो घी लेकर जाते
तो वो सभी स्थानीय भाव के अनुसार उन्हें पैसे दे देते थे। भावेश ने देसी घी का अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला ले लिया। साल 2019 की बात है। अपने दो तीन दोस्तों से उन्होंने कर्ज के तौर पर 30,000 रुपए जुटाए और इस रकम से एक वेबसाइट बनाई, मगर इस पर किस तरह की मार्केटिंग करनी है यह उन्हें आता नहीं था। उनका सारा निवेश बेकार चला गया। भावेश को थोड़ी निराशा हुई, पर उन्होंने हार नहीं मानी। YouTube पर देसी घी खाने के फायदे के बारे में वीडियोस देखे। उनमें नीचे टिप्पणी करने वालों से उन्होंने बातचीत करनी शुरू की और फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए मां से मिले 3,000 रुपए से नई शुरुआत की। सितंबर 2019 में वो मुबारक दिन आया जब बिहार के भागलपुर से उन्हें पहला ऑर्डर मिला। 1,125 रुपए का ये भुगतान भावेश जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। काम बढ़ा, कमाई बढ़ी, तो अपनों का भरोसा भी आ गया। फिर पिता के सहयोग से गायों की तादाद भी बढ़ा ली, गौशाला का विकास हो गया। फिर उन्होंने आसपास के छोटे छोटे 150 देसी गाय पालकों और दूध उत्पादकों को भी अपने साथ जोड़ लिया। भावेश आज सालाना करीब 8 करोड़ रुपए का देसी घी का कारोबार कर रहे हैं। अपनी सरकारी मुलाजिम दोनों बहनों को वो मजाक में छेड़ते हैं, सरकार तुमको जितनी तनख्वाहें देती है ना, उससे ज्यादा तो हम GST चुकाते हैं। बकौल भावेश, बेरोजगारी का हल सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है, ये बात परिवारों को भी समझने की जरूरत है।

रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम आपके झाबुआ की आवाज पर। आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ प्रेरणादायक गीत।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: टीचर ने कहा, होमवर्क क्यों नहीं किया? स्टूडेंट, सर लाइट नहीं थी। टीचर ने कहा, तो मोमबत्ती जला लेते। स्टूडेंट, सर माचिस नहीं थी। टीचर ने कहा, अबे माचिस क्यों नहीं थी? स्टूडेंट, पूजा घर में रखी थी। टीचर, तो वहां से ले आते। स्टूडेंट, नहाया हुआ नहीं था ना। टीचर, नहाए हुए क्यों नहीं थे? स्टूडेंट, पानी नहीं था ना सर। टीचर, पानी क्यों नहीं था? स्टूडेंट, सर मोटर नहीं चल रही थी। टीचर, अब मोटर क्यों नहीं चल रही थी? स्टूडेंट, बताया तो सर, लाइट नहीं थी ना।
2: वो समय बच्चों को अच्छी अच्छी जगहों पर ले जाने, कुछ नया दिखाने और सिखाने का दौर था। मौका मिलते ही बच्चों को साथ लेकर किसी मॉल में दिखावे का चलन नहीं था। ज्यादातर पिता बच्चों को किसी ऐसी जगह ले जाते थे जहां बच्चों का मन सकारात्मक विकसित हो। तो इसी मकसद से ऑस्ट्रेलिया के वो पिता भी अपने 13 साल के छोटे पुत्र को लेकर सिडनी पहुंचे। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, एक बेहतरीन मैदान, क्रिकेट का अद्भुत सुंदर गढ़। 25 फरवरी का ही दिन था। गुनगुनी धूप में गुलाबी ठंड लिए हवा बार बार सहलाए जा रही थी। प्रसिद्ध एशेज श्रृंखला का 5वां टेस्ट खेला जा रहा था। इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी कर रही थी और मैदान में ऑस्ट्रेलियाई टीम के तमाम दिग्गज क्षेत्र रक्षण करते हुए नजर आ रहे थे। वो बच्चा अचंभित था। वहां क्रिकेट के साथ बहुत कुछ था। कहीं ठहाके, कहीं शोर, कहीं अपने प्यारे खिलाड़ियों से सीधे संवाद की कोशिश, कभी नारे, कभी जय जयकार। कोई गेंदबाजों से विकेट गिराने की मांग कर रहा था, तो कोई चौके की तमन्ना लिए बल्लेबाजों को ललकार रहा था। कहीं से संगीत की लहरियां उठ रही थीं, तो कहीं से पकवानों की खुशबुएं। स्थानीय टीम अच्छा खेल रही थी, तो सबके चेहरे खिले हुए थे। पहले विश्व युद्ध के बाद का वो माहौल ऐसा था मानो विशाल महोत्सव चल रहा हो। वैसे उस सजग बच्चे को एहसास था कि ये पूरा मेला मजमा अच्छी क्रिकेट देखने के लिए ही लगा है। अच्छी क्रिकेट मतलब अच्छे खिलाड़ी, जिनका नाम सुनकर लोग दूर दूर से चले आते हैं। दूसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ, तब उस लड़के के सबसे प्रिय खिलाड़ी जॉन टेलर बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि टेलर ज्यादा नहीं चले, मगर दूसरी छोर पर चार्ल्स मैकार्टनी को रोकना मुश्किल था। अंग्रेज गेंदबाजों की तो खैर नहीं थी। मैकार्टनी ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे कि लोगों को बाकी नजारे देखने का मौका ही नहीं मिल रहा था। उस लड़के ने महसूस किया कि अच्छा खेलना कितना जरूरी है। जब कोई अच्छा खेलता है तो तमाम लोगों की नजरें उसी पर टिक जाती हैं। मैकार्टनी ने 50 रन पूरे किए, 100 रन पूरे किए, 150 रन भी पार कर गए। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। सबकी जबान पर एक ही नाम था, मैकार्टनी। खैर, जब मैकार्टनी का विकेट गिरा, तब उनके खाते में 170 रन जुड़ चुके थे, जिसमें 20 तो चौके थे। तब छक्कों का जमाना नहीं था। खिलाड़ी बहुत ही अनुशासन के साथ जमीनी खेल में विश्वास रखते थे और मैकार्टनी का खेल इस विश्वास का भरपूर झलक था। उस दिन का खेल जब खत्म हुआ तो उस लड़के का मन ना हुआ लौटने का। पिता खड़े हो गए कि चलो आज घर लौटना है, हम 25 और 26 फरवरी का मैच देखने के लिए ही आए थे, कल 27 को मैच का रेस्ट डे है। पर स्टेडियम से लौटने का मन ही नहीं कर रहा था उसका। पता नहीं फिर कब ऐसा मैदान और शानदार खेल देखने को मिलेगा। फिर मन में आया कि काश ऐसे मैदान में खेलने का मौका मिल जाए, लोग देखने आते, तालियां बजाते। लड़के ने पूरी दृढ़ता के साथ पिता को कहा, पापा एक दिन जरूर मैं इस मैदान में खेलूंगा। हंसमुख पिता मुस्कुरा कर रह गए। वो अपने लड़के को जानते थे, जो अच्छी टेनिस रग्बी खेलता था और कभी कभी क्रिकेट भी। खैर, सिडनी से लौटकर वो बच्चा घर पर एक जगह दीवार के सहारे अकेले घंटों अभ्यास करने लगा। हाथ में बल्ले की जगह विकेट का एक डंडा होता था और टेनिस बॉल सामने दीवार पर टकराकर बार बार कूदती आती थी और तब एक डंडा ही बल्ला बन जाता था। उस दिन मैकार्टनी का खेल देखकर ही मन में ये बात बैठ गई थी कि खेलो तो ऐसा तेज खेलो कि लोग लगातार निहारते सहारते ही रह जाएं। लड़के ने अपना पूरा ध्यान क्रिकेट पर लगा दिया कि एक दिन सिडनी के मैदान पर खेलना है। बस 6 साल लग गए और वो राष्ट्रीय टीम में शामिल कर लिया गया। बस एक पहला मैच अच्छा नहीं बीता, पर उसके बाद तो दुनिया जान गई कि डॉन ब्रैडमैन नाम के एक बल्लेबाज ने दुनिया के तमाम गेंदबाजों के लिए काल की तरह अवतार लिया है। ब्रैडमैन 1908 से 2001 तक अपने बल्लों से रनों के जो पहाड़ बनाते गए, उनमें से कुछ पर पता नहीं कोई चढ़ पाएगा या नहीं। वो 25 फरवरी को ही दुनिया से विदा हुए थे। वो बार बार प्रेरित करते थे कि जब ठान लो तो करके दिखाओ, लगन और मेहनत से सब संभव है। वो कहते थे कि मैं कभी भी प्रशिक्षित नहीं हुआ हूं और ना ही मुझे कभी बताया गया कि बल्ला कैसे थामा जाता है। तो दोस्तों, ये हुई प्रतिभा डॉन ब्रैडमैन की।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी।

आधुनिक व्यवस्था में यानी कि मॉडर्न सोसाइटी में ये कहा जाता है कि बच्चों का ध्यान बड़ी आराम से बड़ी सरलता से थक जाता है और उन्हें एक ही विषय को लंबे समय तक पढ़ने के लिए नहीं कहना चाहिए। विषय बदलते रहने से उनके दिमाग को आराम मिलता है, ऐसा माना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मॉडर्न सोसाइटी या आधुनिक युग, इसके बच्चे पुराने लोगों से अलग हो चले हैं क्या? और यदि ऐसा हो गया है तो लंबे समय तक ध्यान केंद्रित रखने के लिए हमने ही शायद उन्हें निराश कर दिया है। क्यों? हम बच्चों के पाठों को, उनके सब्जेक्ट्स को, उनके लेसन्स को बहुत बोरिंग, बहुत नीरस बना देते हैं और जब बच्चा उनसे भागता है तो जबरदस्ती उसे पढ़ाने बैठा देते हैं और फिर कहते हैं कि जी ध्यान नहीं दे पा रहा है, इसकी शिकायतें करने लगते हैं। कदम ब कदम उसे आगे बढ़ाते चलना और जैसे जैसे अगला कदम आए उसमें उसकी रुचि उत्पन्न करना और उसे कॉन्फिडेंस देना, उसे आत्मविश्वास देना, जब तक कि अपने विषय में उसे दक्षता हासिल ना हो जाए, यही तो तरीका है ना शिक्षा देने का। यूं देखा जाए तो मातृभाषा ही शिक्षा का सबसे उचित माध्यम है। मातृभाषा मतलब जिसमें हम बोलते हैं, इसलिए बच्चे को प्राथमिक शक्तियां इसी माध्यम में पूरी दक्षता पाने की ओर लगानी चाहिए। अक्सर हर बच्चे में एक कल्पना होती है, शब्दों के लिए, वाक्यों के लिए, बातचीत के लिए एक सहज व्यवहार होता है।

वाली होनी चाहिए। इसी समय इतिहास, विज्ञान, दर्शन और कला के अध्ययन की नींव भी डालनी चाहिए, लेकिन जबरदस्ती नहीं और औपचारिक तरीके से नहीं। यहां एक विचार मेरे मन में आ रहा है। आजकल ज्यादा से ज्यादा बच्चे कंप्यूटर साइंसेज और टेक्निकल पढ़ाइयों में ही लगे हैं, जैसे सारा विश्व बस इन्हीं से चलता है, इन्हीं से चलने वाला है। जब कंप्यूटर साइंसेज और इस तरह की टेक्निकल शिक्षाओं के चलते लोग अपने आप से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से आपस में मिलना जुलना ही बंद कर देंगे, तो ऐसे संसार का करेंगे क्या? मेरा सुझाव है, मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी टेक्निकल पढ़ाइयों के साथ साथ एक विषय, एक सब्जेक्ट ऐसा भी होना चाहिए जो आपस में एक दूसरे के प्रति संभाव को भी सिखाए। एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे के प्रति मानवीय व्यवहार सिखाए। कोई भी एक सब्जेक्ट, इतिहास, कला, दर्शन से संबंधित हर कोर्स में जरूरी होना चाहिए। सिर्फ पास करने के लिए नहीं, सिर्फ क्वालिफाई होने के लिए नहीं, बल्कि सचमुच पढ़ने के लिए। तब मेरा मानना है कि बच्चे का या किसी भी विद्यार्थी का पूरा विकास तभी होगा।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
2: नमस्कार साथियों,
3: मेरा भी नमस्कार।
2: साथियों, राजस्थान की भूमि रण बांकुरों की भूमि है। यहाँ की माटी ने बहुत से वीरों, वीरांगनाओं और शहीदों को जन्म दिया है। आज हम सुनने जा रहे हैं इसी राजस्थान की भूमि की एक वीर गाथा।
3: तो आइए चलते हैं सन 1947 के पहले के राजस्थान के डूंगरपुर जिले में और पलटते हैं वहाँ के समृद्ध इतिहास के गौरवशाली पन्नों को।
2: और जब उन पन्नों को हम पलटते चले जाएंगे तो हमारी उंगलियाँ ठहर जाएंगी बहुत से सुनहरे पन्नों के बीच एक ऐसे पन्ने पर जिस पर लिखी है एक बालिका के रक्त रंजित जीवन उत्सर्ग और बलिदान की गौरव गाथा।
3: आप पूछेंगे कौन थी ये बालिका, क्या है इसका परिचय, ऐसा क्या किया था इसने कि आज पूरा राष्ट्र उसे सम्मान के साथ याद करता है, क्या है इसका नाम जिसकी कीर्ति में आज अरावली की पहाड़ियों में लोग गीत गूंजते हैं और कृतज्ञ राष्ट्र उसे श्रद्धा के साथ नमन करता है।
2: तो चलिए हम बताए देते हैं, वह बालिका थी कालीबाई कलसुआ जिसकी उम्र थी 13 वर्ष। कालीबाई कलसुआ भील जनजाति की बालिका थी।
3: आदिवासियों का गढ़ है दक्षिणी राजस्थान। इस क्षेत्र का एक जिला है डूंगरपुर। इस जिले का एक गांव है रास्तापाल। भारत की आजादी के पहले तक यहां कोई सरकारी स्कूल नहीं था, लेकिन एक सामुदायिक स्कूल जरूर था जिसे

0: स्थानीय प्रजामंडल चलाता था।
1: इस पाठशाला में आदिवासियों के बालक भी पढ़ते थे और बालिकाएं भी, और इन्हीं बालिकाओं में से एक थी कालीबाई कलसुआ। इस पाठशाला के संरक्षक थे श्री नाना भाई खाट, जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे।
0: इसी पाठशाला में एक शिक्षक थे श्री सेंगा भाई रोत, जो पूरी निष्ठा से बच्चों को पढ़ाते थे। शिक्षक सेंगा भाई बालकों को कभी अंग्रेजों के शोषण और अत्याचारों के बारे में बताते थे, तो कभी उन अंग्रेजों के चाटुकार अत्याचारी सामंतों की कहानी सुनाते थे।
1: ये बात उन दिनों की है जब पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था।
2: अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो,
3: भारत माता की जय,
2: भारत माता की जय।
1: आजादी की उत्कंठा सारे देश में हिलोरें ले रही थी, तो भला राजस्थान इसमें पीछे क्यों रहता। डूंगरपुर का प्रजामंडल इन पाठशालाओं की मदद से आजादी का विचार जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा था। शिक्षक श्री सेंगा भाई रोत बच्चों में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर रहे थे।
0: कालीबाई इन कहानियों को ध्यान से सुनती थी, सुनते सुनते उसका खून खौल उठता था। सेंगा भाई उनके लिए परम आदरणीय थे। कालीबाई अपने गुरु की परम भक्त थी। जैसा कि हमने सुना था कि इस विद्यालय का संचालन प्रजामंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता था, प्रजामंडल के सदस्य नहीं चाहते थे कि इस विद्यालय में अंग्रेजों के विरुद्ध बात हो और देश प्रेम की चर्चा हो।
1: प्रजामंडल के सदस्य चाहते थे कि इस विद्यालय को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इस विद्यालय में देश प्रेम की चर्चा होती थी। प्रजामंडल के लोगों ने पाठशाला बंद करवाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने गांव के लोगों की एक बैठक बुलाई। उस बैठक में पाठशाला के संरक्षक नाना भाई भी उपस्थित थे। नाना भाई ने इस बैठक में प्रण किया कि मैं किसी भी हाल में अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला को बंद नहीं होने दूंगा।
0: वास्तव में वे चाहते थे कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर बच्चे के मन में देशभक्ति की भावना जगे। परंतु ये बात रास्तापाल के जागीरदार को नहीं पची। वो नहीं चाहता था कि गांव के लोगों में शिक्षा का प्रचार हो।
1: नाना भाई ने घर घर जाकर लोगों को समझाया, और समझाने के परिणाम स्वरूप एक भी व्यक्ति ने उस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। गाँव के लोग जब बैठक में नहीं आए तो वो जागीरदार झल्ला उठा। उसने सारी घटना नमक मिर्च लगाकर सामंत को कह डाली।
0: और जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल गांव की पाठशाला बंद नहीं की गई, तो पुलिस सुपरिटेंडेंट और मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने के लिए वहां आ पहुंचे।
1: वो दिन था 19 जून 1947 का। रास्तापाल की पाठशाला के बाहर एक ट्रक आकर रुका। कालीबाई उस समय खेत में गई हुई थी।
0: पाठशाला में उस समय नाना भाई और सेंगा भाई दोनों उपस्थित थे। जिला न्यायाधीश ने नाना भाई और सेंगा भाई से कहा, पाठशाला बंद करो और चाबी हमको दे दो। इस पर सेंगा भाई ने बड़ी नम्रता के साथ कहा,
4: न्यायाधीश महोदय, आप तो न्याय करते हैं। बच्चों को शिक्षा देना तो राज्य का काम है, आप उसे भी बंद करवाना चाहते हैं? यह तो बच्चों के साथ अन्याय है।
0: जिला न्यायाधीश ये बात सुनकर आग बबूला हो गए और बोले,
4: तुम मुझे न्याय की सीख दे रहे हो? अपनी औकात पहले देखो। अभी बताता हूँ तुमको, सिपाहियों इसे ट्रक से बांध कर घसीटो।
0: इस पर नाना भाई हाथ जोड़कर बोले,
1: साहब ये पाठशाला तो प्रजामंडल के आदेश से ही तो चल रही है, आपके आदेश से नहीं। हमें पाठशाला चलाने दीजिए, इससे बच्चों का ही भला होगा।
0: पुलिस अधिकारी ऐसा उत्तर भला कैसे सहन कर पाता। वो क्रोध से आग बबूला हो गया। फिर क्या था, उसका संकेत पाते ही सिपाही नाना भाई पर टूट पड़े और उन्होंने नाना भाई की जमकर पिटाई की।
1: इससे वे बुरी तरह घायल हो गए और इसी बीच सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जाने लगा। नाना भाई से यह देखा नहीं गया, वे सेंगा भाई को बचाना चाहते थे।
0: किसी तरह नाना भाई उठे और सेंगा भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की,
1: लेकिन तभी उन पर एक सिपाही ने जोर से बंदूक का कुंदा दे मारा। नाना भाई निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े और फिर कभी नहीं उठे।
0: उनके प्राण पखेरु उड़ गए।
1: उधर सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जा रहा था।
0: धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव और आसपास के गांवों में फैल गई।
1: पाठशाला के बाहर गांव के स्त्री पुरुषों की भीड़ जमा हो गई। लेकिन हर कोई बेबस था, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर सेंगा भाई को बचा सके।
0: कालीबाई उस समय खेत से पशु चारा के लिए घास काट कर आ रही थी। उसके सिर पर घास का गट्ठर था, उसके हाथ में हसिया था।
1: जब उसने अपने गुरुजी सेंगा भाई को ट्रक द्वारा घसीटे जाते देखा तो उससे ऐसा देखा नहीं गया। उसने आओ देखा ना ताओ घास का गट्ठर वहीं जमीन पर डालकर उसने ललकार कर कहा,
0: ठहरो, मेरे गुरुजी को इस तरह घसीट कर कहां ले जा रहे हो।
1: ये कहते हुए कालीबाई बिजली की गति से उस ट्रक की तरफ लपकी। उसने ट्रक से बंधी रस्सी को हसिये से एक झटके से काट दिया।
0: सेंगा भाई मौत के मुंह में जाने से बच गए, किंतु अफसोस सिपाहियों ने कालीबाई को उसी समय गोलियों से भून दिया।
1: उसे बचाने के लिए कुछ औरतें भाग कर आई, उन पर भी निर्मम पुलिस ने लाठियां बरसाई।
0: एक तरफ नाना भाई का शव पड़ा था और दूसरी तरफ लहू से लथपथ कालीबाई।
1: थोड़ी देर में अरावली की पहाड़ियों में भील जनजाति के लोगों द्वारा शोक प्रकट करने का मारू ढोल गूंज उठा। भारी भीड़ जमा होने लगी, लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा, मरो या मारो वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। इस विकट स्थिति को समझकर कातिल वहां से भाग खड़े हुए
0: और बेहद जख्मी हालत में कालीबाई को डूंगरपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
1: लगभग 40 घंटे बेहोश रहने के बाद 20 जून 1947 को राजस्थान की इस वीर बाला ने दम तोड़ दिया। कालीबाई तो शहीद हो गई, लेकिन अपने गुरुजी को बचाकर उसने अपनी अखंड गुरु भक्ति का परिचय तो दिया ही,
0: साथ ही उसने जनजातीय लोगों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में आजादी की मशाल जला दी।
1: आज भी रास्तापाल गांव में कालीबाई की स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है और वहीं के एक पार्क में कालीबाई की मूर्ति भी लगी हुई है।
0: राष्ट्र इस त्याग की प्रतिमूर्ति नन्ही आदिवासी वीरांगना कालीबाई को कृतज्ञ भाव से नमन करता है।
1: कालीबाई तुम्हें हमारा सलाम।
5: कालीबाई भारत की एक जनजातीय वीरांगना।
6: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
7: सीखने की प्रक्रिया में विराम नहीं होता।
8: ये कहानी है प्राचीन यूनान की, लेकिन आइए कहानी सुनने से पहले थोड़ी सी जानकारी लेते हैं यूनान की। आपको बता दें कि यूनान दक्षिण पश्चिम यूरोप में स्थित एक देश है। अंग्रेजी में इसे ग्रीस भी कहते हैं।
9: देश भूमध्य सागर में स्थित बहुत से द्वीपों का समूह है। यहाँ के निवासियों को यवन या यूनानी कहते हैं। यहाँ की राजभाषा यूनानी है, अंग्रेजी में इसे ग्रीक कहेंगे। ग्रीक भाषा बहुत ही समृद्ध भाषा है और यूरोप की लगभग सभी भाषाओं को इसने बहुत से शब्द दिए हैं। यहाँ की मुद्रा या करेंसी है यूरो। तो साथियों, लगभग सभी राष्ट्रों का कोई ना कोई राष्ट्र वाक्य होता है, जैसे हमारे देश का राष्ट्र वाक्य है सत्यमेव जयते। वैसे ही यूनान का राष्ट्र वाक्य है एलेफ्थेरिया थानाटोस, जिसका अर्थ है या तो स्वतंत्रता या मृत्यु, अन्य कोई विकल्प स्वीकार्य नहीं है।
8: यूनान की राजधानी है एथेंस, जहां से ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हुआ। उन दिनों आज की तरह ओलंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक नहीं हुआ करते थे।
9: प्राचीन ओलंपिक खेलों में उन दिनों प्रथम आने वाले विजेता को जैतून की पत्तियों का मुकुट, द्वितीय आने वाले को जैतून के फलों की माला और तृतीय स्थान पर आने वाले खिलाड़ी को जैतून के पत्तों की माला पहनाई जाती थी। तो साथियों, आइए अब सुनते हैं प्राचीन यूनान की ही एक बहुत ही प्यारी और प्रेरक कहानी। ये कहानी है प्राचीन यूनान के एक बहुत अच्छे चित्रकार की। उसके बनाए गए चित्रों की हर जगह बड़ी धूम थी।
8: एक बार की बात है, उसने एक नर्तकी का आदमकद चित्र बनाया। वो बेहद खूबसूरत चित्र था। जब इस चित्र की प्रदर्शनी की गई तो समझिए कि तहलका मच गया। यूनान में हर जगह उस चित्र की चर्चा होने
10: लगी।
8: भीड़ की भीड़ उस चित्र को देखने के लिए आने लगी। ये इतना सुंदर और जीवंत चित्र था कि लगता था कि नर्तकी बस अभी बोल पड़ेगी।
9: नर्तकी का पूरा सौंदर्य इस पेंटिंग में मानो सजीव हो गया था। इस पेंटिंग की चर्चा उस देश के राजा के कानों में पड़ी। राजा भी ये प्रदर्शनी देखने आया और इस चित्र को देखकर वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने चित्रकार को बहुत से उपहार दिए।
8: इतना ही नहीं, राजा ने उस चित्रकार को शाही चित्रकार घोषित कर दिया। इस चित्र ने उस चित्रकार को रातों रात बहुत लोकप्रिय बना दिया। वो स्टार बन गया। इस चित्र की चर्चा बहुत दूर दूर तक फैल गई। अब वो बेनाम चित्रकार बहुत प्रसिद्ध हो गया था।
9: जहां भी वो जाता, लोग सम्मान से खड़े हो जाते, उसका अभिनंदन करते और उसकी प्रशंसा के पुल बांध देते थे।
8: कहते हैं कि सफलता का भूत कई बार सिर चढ़कर बोलता है। व्यक्ति के मन में अहंकार पैदा हो जाता है और वो अपने अलावा, अपने कौशल के अलावा कुछ और नहीं सोचता।
9: यही उस चित्रकार के साथ भी हुआ। अपनी कला से वो इतना प्रभावित हुआ कि अब वो दिन भर उस चित्र के सामने बैठा रहता था और उसे ही निहारता रहता था। वो बेसुध सा हो गया था। वो सबको यही बताता कि देखो, मैंने कितना महान काम किया है और मेरी बराबरी का और कोई कलाकार है ही नहीं।
11: क्या बात है, वाह वाह है मेरी कला, क्या सुंदर चित्र बना है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा चित्र कोई और कभी बना सकता है। शायद ऐसा चित्र कभी किसी ने नहीं बनाया है। वाह, कितनी महान कला है मेरे अंदर।
8: जी हाँ साथियों, इस मनोदशा में इंसान अपने आप से इतना प्रभावित हो जाता है कि उसे अपने सिवाय कुछ नहीं सोचता। अब तो ये होने लगा कि वो उस चित्र से उठते बैठते बात करता था। उसकी दीवानगी इतनी हद तक बढ़ गई कि वो अक्सर रातों को भी उठ जाता था और उस चित्र से बातें करने लगता था।
11: आइए आइए, देखने आइए। क्यों नहीं, देखिए देखिए, है ना कमाल का चित्र।
10: बिल्कुल,
11: कितना सुंदर चित्र है ये। मैं जब जब इसे देखता हूं मुझे ऐसा लगता है ये और सुंदर होता जा रहा है। वाह, अथा सुंदर।
8: और सुबह जो भी उसे मिलता सबको यही बताता कि देखो मैंने कैसा महान कार्य कर दिखाया।
4: लोगों को शुरू में ये बात अजीब नहीं लगी, लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि ये तो असामान्य बात है। महीने बीत गए, अब उस चित्रकार ने दूसरी पेंटिंग्स बनाना भी छोड़ दिया था। वो बस अपने उसी चित्र को देखता रहता था।
8: एक दिन की बात है, वो सवेरे उठा और हर रोज की तरह अपनी उसी पेंटिंग को देखने चल दिया। उसे बहुत गहरा झटका लगा जब उसने देखा कि उसकी पेंटिंग पर किसी ने ढेर सारा रंग उड़ेल दिया है और किसी तेज चाकू से उस पेंटिंग को जहां तहां से काट दिया है। ये देखकर उस चित्रकार को मानो पागलपन का दौरा पड़ गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा।
10: ये क्या हो गया, किसने किया है ये काम, किसने किया ये?
8: वो पूरे म्यूजियम में शोर मचाने लगा।
10: किसने किया, किसने किया ये?
8: सब सहम गए थे। अचानक पीछे से गंभीर आवाज आई।
12: मैंने किया है।
8: वो चित्रकार पीछे मुड़ा तो चौंक गया। पीछे उसके गुरुजी खड़े थे।
11: गुरुजी, आप? क्या ये आपने किया है?
12: हाँ, मैंने किया है ये काम।
11: लेकिन क्यों?
12: इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अपने आप को सीमित कर लिया है। तुम अपनी कला से संतुष्ट हो गए हो।
11: लेकिन गुरुजी, वो मेरी सर्वोत्तम रचना थी। इससे अच्छा तो कुछ बन ही नहीं सकता।
12: नहीं, तुम्हारा ऐसा सोचना गलत है। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं बनाया गया जिसे संपूर्ण कहा जा सके।
11: गुरुजी,
12: अब तुमने अभ्यास करना, कुछ नया बनाना सब छोड़ दिया है। अब तुम्हें लगता है कि जो कुछ तुमने बनाया उससे अच्छा कुछ बन ही नहीं सकता। ये बात गलत है।
11: लेकिन गुरुजी, मैं जानता हूं कि अब मैं इस पेंटिंग से बेहतर कुछ बना ही नहीं सकता।
12: तुम्हारी यही सोच गलत है। तुम प्रसिद्ध तो हो गए हो, लेकिन अभी तक सिद्ध नहीं हुए। उठो, पेंट ब्रश लेकर अब फिर से शुरू हो जाओ। कुछ नया और बनाओ जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं।
8: दोस्तों, उस चित्रकार को बहुत पश्चाताप हुआ और फिर जब उसने दोबारा पेंट ब्रश उठाया तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने एक से एक ऐसी बहुमूल्य पेंटिंग्स बनाई जो आज यूनानी संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। साथियों, सीखने का कोई अंत नहीं है।
11: जी हाँ, सीखते रहिए, प्रश्न करते रहिए, अवलोकन करते रहिए।
8: इस बात से संतुष्ट मत हो जाइए कि प्रकृति में या आसपास कुछ होता है। आप तब तक संतुष्ट न होइए जब तक ये न जान लें कि ऐसा क्यों होता है।
11: यदि आपने कोई काम बहुत अच्छे तरीके से किया है, किसी विषय में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, संगीत के अभ्यास से बहुत निपुणता प्राप्त कर ली है, तो अब इतने में ही संतुष्ट ना हो जाइए कि अब और कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है।
8: सीखते रहिए। किसी ने बहुत खूब कहा है, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग।
11: यानी

0: सीखना कभी मत छोड़िए, क्योंकि जिंदगी कभी सिखाना नहीं छोड़ती।
1: सीखने की प्रक्रिया में विराम नहीं होता।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
3: साथ है तो संभव है।
4: ये बात बहुत पुरानी है। एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहा करते थे। उन सब में गहरी मित्रता थी। वे सभी बड़े मेल प्रेम से रहते थे। जंगल में बड़े बड़े तालाब थे, जहां बहुत से जल जंतु भी रहा करते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक ऊंचा घना पेड़ था। उसकी बड़ी बड़ी शाखाएं थीं, जिस पर बहुत से जंगली हंस बसेरा करते थे। वे हंस सुबह दाना पानी लेने के लिए उड़ जाते और शाम को उसी पेड़ पर वापस आ जाते। पेड़ के पास ही एक झील थी। उसके शीतल जल में वे खूब नहाते और किलोल करते। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था।
5: एक दिन की बात है, जब पक्षी शाम को वापस आए तो उन्होंने देखा कि पेड़ के पास एक छोटा सा पौधा उगाया है। उस पौधे में एक छोटी सी कोमल लता थी, जो पेड़ के तने से चिपकी हुई थी। उसे जब हंसों ने देखा तो आपस में बातें करने लगे। उनमें से एक हंस, जो आयु में दूसरे हंसों से बड़ा था और बुद्धिमान भी, उसने कहा,
6: क्या तुम उस छोटे पौधे को देख रहे हो जिससे लता निकल रही है?
7: हाँ, देख तो रहे हैं, लेकिन इसमें कौन सी नई बात है?
8: ऐसे तो बहुत से पौधे निकलते रहते हैं।
9: ये तो कोई बड़ी बात नहीं है।
7: हाँ, बेकार ही ऐसी छोटी छोटी बातों की चिंता करते रहते हैं।
6: लेकिन साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि
8: अरे छोड़िए भी, हमारे पास बातें करने के लिए क्या अब यही बचा है?
7: हाँ, और कोई बात हो तो कहिए, वरना चुप रहिए।
9: मानते हैं कि आप हम सबसे बड़े हैं,
8: लेकिन हम भी कोई कम समझदार नहीं हैं।
7: हाँ।
4: सभी हंसों ने उस बुद्धिमान हंस की बात काट दी और उसका मजाक भी उड़ाया। खैर, दिन बीतते गए। धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होने लगा और उसकी लता पेड़ के तने का सहारा लेकर बड़ी होने लगी। अब वो लता इतनी बड़ी हो गई कि वो लगभग पेड़ की आधी ऊंचाई तक पहुंच गई।
5: उस पेड़ पर बसेरा करने वाले जंगली हंसों का झुंड रोज सुबह भोजन की तलाश में निकल जाता और शाम को हमेशा की तरह वापस आ जाता था। उन्हें वो पेड़ बहुत सुरक्षित लगता था, क्योंकि वो ऊंचा था और उसका तना इतना चिकना और सीधा था कि कोई भी इस पेड़ पर आसानी से चढ़ नहीं सकता था। दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन की बात है, शाम को जब सारे हंस वापस आ गए तो बुद्धिमान हंस ने सबको बुलाया और कहा,
6: साथियों, आज मैंने एक बार फिर से उसी विषय पर बात करने के लिए आप सबको बुलाया है।
7: उसी विषय पर? अरे किस विषय पर?
6: उसी पौधे के बारे में जिस पर हमने एक दिन चर्चा की थी, लेकिन आप सब ने उसे टाल दिया था।
8: उफ हो, फिर वही बात? अरे ऐसा तो सारे जंगल में होता रहता है।
7: हाँ, पौधे उगते हैं, बड़े हो जाते हैं। आपको क्यों बेकार की चिंता हो रही है?
6: साथियों, मेरी चिंता व्यर्थ नहीं है।
7: ओहो,
6: ध्यान से देखो।
7: अरे देख तो रहे हैं।
6: वो लता पहले बहुत छोटी थी, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़कर वो इतनी ऊंची हो गई है कि हमारे पेड़ की डालियों तक पहुँच गई है।
4: बात आई गई हो गई। इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। वो लता धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी और अब उसने एक मोटी रस्सी का रूप धारण कर लिया था। वो लता अब लगभग पेड़ की सभी शाखाओं तक पहुंच गई थी।
5: और वही हुआ जिसका डर था। एक सुबह जब सभी पक्षी भोजन की तलाश में निकल गए, एक बहेलिया वहां आया। उसने चुपके से कई बार देखा था कि उस पेड़ पर बहुत से जंगली हंस रहते हैं।
10: ये जगह ठीक है, यहाँ जाल बिछाता हूँ, यहाँ बहुत सारे पंछी फंस जाएंगे।
5: बहेलिया उस मजबूत लता की मदद से पेड़ पर चढ़ गया और अपना जाल बिछा दिया।
4: जाल बिछाकर वो चला गया। उसे पता था कि पक्षी अब शाम को ही आएंगे। शाम को पक्षी वापस आए। बहेलिये के बिछाए जाल पर उनकी नजर नहीं गई और जैसे ही वो डालियों पर बैठे, वे सब के सब उस जाल में फंस गए।
9: अरे कोई है, हमारी सहायता करो।
11: अरे हमें छुड़ाओ भाई, हमारी सहायता करो भाई।
6: अरे ये क्या हो गया?
11: फंस गए भाई,
8: हम सब जाल में फंस गए।
6: अरे ये कैसे हुआ? तुम लोग भी मेरी बात नहीं मानते हो ना? मैंने कहा था
11: ऐसे फंस गए हम।
6: अरे क्या हो गया? मैंने तो पहले ही कहा था, पर तुम लोग सुनते कहाँ हो?
5: वे सभी चिल्लाते रहे, पंख फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन सब बेकार। संघर्ष करते करते वो थक गए। उन्होंने बुद्धिमान हंस से कहा,
11: हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने आपकी बात नहीं मानी।
8: काश हमने आपकी बात मानी होती तो आज का दिन हमें देखना ही नहीं पड़ता।
11: अब आप ही कुछ कर सकते हैं। कोई उपाय बताइए।
6: शांत हो जाओ। मैंने बहुत पहले ही तुम सबको चेतावनी दी थी, लेकिन तुम सबने नहीं सुना। संकट के समय अब हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। ध्यान से सुनो, कल सुबह जब वो बहेलिया आएगा तो हम सबको ऐसा अभिनय करना होगा मानो कि हम मर चुके हैं।
11: भला इससे क्या होगा?
6: कोई भी बहेलिया मरा हुआ पक्षी नहीं चाहेगा। वो एक एक करके हमें जाल से निकालकर भूमि पर फेंक देगा। जैसे ही वो आखिरी पक्षी को नीचे फेंकेगा और पेड़ से नीचे उतरेगा, इसी बीच हम सब एक साथ उड़ जाएंगे।
11: हाँ ये ठीक है,
9: उड़ जाएंगे हम सब।
4: और ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन सुबह बहेलिया वहां आया। वो मन ही मन खुश हो रहा था कि बहुत से पक्षी उसके जाल में फंस गए हैं, उसे बड़ा लाभ होने वाला है। वो तेजी से पेड़ पर चढ़ा और जाल के पास जा पहुंचा। लेकिन ये क्या,
5: बहुत से पक्षी फंसे हुए थे, लेकिन वो निश्चल पड़े हुए थे। उनकी गर्दनें ढलकी पड़ी थी और कोई हरकत नहीं थी। उसने जाल को हिलाया भी, लेकिन किसी पक्षी ने कोई हरकत नहीं की। बहेलिया बड़बड़ाने लगा,
10: अरे ये क्या, ये सब तो मरे पड़े हैं। हो सकता है इन्होंने कोई विषैला बीज खा लिया, पर अब तो कोई लाभ नहीं। अब क्या करूं? इन्हें नीचे फेंक देता हूँ, फिर जाल लेकर उतरना भी आसान हो जाएगा। हाँ ऐसा ही करता हूँ।
4: तो इस तरह बहेलिये ने एक एक करके पक्षियों को जाल से निकालना शुरू किया और वो उन्हें नीचे जमीन पर फेंकता चला गया। अब अंतिम पक्षी भी भूमि पर फेंका जा चुका था।
5: जैसे ही आखिरी पक्षी जमीन पर गिरा, योजना के अनुसार सभी उठे, अपने पंख फड़फड़ाए और पलक झपकते ही आकाश की ऊंचाइयों में उड़ गए। बहेलिया हाथ मलता हुआ आश्चर्यचकित और ठगा सा उन्हें देखता रह गया।
4: साथियों, प्रसिद्ध मोटर व्यवसायी हेनरी फोर्ड ने कहा था, यूनाइटेड वी स्टैंड बट डिवाइडेड वी फॉल। इसका भाव ये है, संगठित होकर हम सशक्त बनते हैं और विभाजित रहकर निर्बल। यानी
12: साथ है तो संभव है।
13: नमस्कार,
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज।
4: वो आखिरी पत्ता।
5: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
4: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे,
5: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
4: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
6: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
7: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
6: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
5: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
4: उसकी मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
5: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
10: सू
6: जी,
10: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
6: जी हाँ
10: भाई, मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही। जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
6: जी डॉक्टर साहब।
10: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
6: मैं पूछती हूँ।
4: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
5: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
13: 15, 40
6: क्या?
4: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
13: 13, 12, 11 ओह
6: जॉन्सी,
13: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
5: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
13: क्या गिन रही हो? 11, 10, 9. ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन 100 अब वो बहुत कम हो गए.
6: क्या कम हो गए हैं?
13: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ. सू,
4: सू ने फिर से बाहर देखा. खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था, जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा. बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी. सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
6: जॉनसे, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
13: 6, now it's 6, 5, 4, oh!
6: जॉनसी, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है. खिड़की में तो कुछ नहीं है. तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉनसी.
13: Only 4.
6: मेरी तरफ देखो.
13: सू, only 4. ओह, अब सिर्फ 3 बचे हैं.
6: क्या 3 बचे हैं? What's 3, dear?
13: 3 पत्तियां.
6: पत्तियां?
13: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
6: हाँ, हाँ.
13: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ. मुझे लगता है.
6: क्या लगता है?
13: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
6: क्या जॉनसी?
13: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू.
6: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉनसी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है.
13: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी. सू,
6: हाँ
13: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं. ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू.
6: जॉनसी,
4: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया. उसी दिन डॉक्टर भी आ गए. डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉनसी मानने को तैयार नहीं थी.
5: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ. एक बूढ़ा व्यक्ति जॉनसी को देखने आया. सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे.
4: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन. वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे.
5: वो चित्रकार थे. बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था. वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
14: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर.
4: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे. लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुढ़ा आ रहा है. जब वो जॉनसी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है.
5: इतने में जॉनसी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
13: अब सिर्फ 2 पत्तियां ही बची हैं.
4: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
14: जॉनसी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा. मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा.
4: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए.
5: अब मात्र 2 पत्तियां ही बची थी. दूसरे दिन की शाम 1 पत्ता और गिर गया. सुबह हुई तो जॉनसी ने देखा अब सिर्फ एक ही

0: छोटा बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
1: आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
2: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
0: जैसे ही सुबह हुई, जॉन्सी ने सू से कहा,
1: सू, मेरी दोस्त।
3: हाँ जॉन्सी।
1: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
2: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। फिर अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
3: सू।
1: हाँ जॉन्सी।
3: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
1: हाँ बिल्कुल,
3: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
1: बिल्कुल जॉन्सी।
3: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
1: पत्ता?
3: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
1: हाँ, हाँ, मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
3: देखो, अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
1: हाँ जॉन्सी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
3: हाँ, हाँ।
0: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
4: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
0: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
1: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
3: बेहतर।
1: ये लो कॉफी पियो।
3: थैंक यू
1: जॉन्सी। एक बुरी खबर भी है।
3: क्या हुआ?
1: वो मिस्टर बेरमैन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
3: कौन बेरमैन? वही बुरे कलाकार?
1: हाँ।
3: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे? हाँ वही, ओ जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
5: हाँ वही मिस्टर बेयरमैन।
3: ओ गॉड,
5: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉनसन, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
3: क्या?
5: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
3: क्यों नहीं गिरा?
5: हाँ
3: क्यों नहीं गिरा?

0: बस बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
1: पेंटिंग?
0: हाँ।
1: कैसी पेंटिंग?
0: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
1: ओह, तो वो पेंटिंग है?
0: हाँ।
1: असली पत्ता नहीं है?
0: नहीं।
1: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
0: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना मास्टरपीस?
1: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सू, उन्होंने बना दिया।
0: हाँ जॉन्सी,
1: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस सू।
0: हाँ, उन्होंने बना दिया,
1: उन्होंने बचा दिया मुझे।

0: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
1: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हों।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए कार्यक्रम बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत, शीर्षक है पशु पक्षियों पर आधारित प्यारे प्यारे बाल गीत।

बाल गीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। लेखक प्रोफेसर के जी रस्तोगी, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी, कार्यक्रम निर्माण रमेश रानी शर्मा। ये बाल गीत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए।

0: इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे किसान साथियों के लिए हम बहुत ही लाभदायक जानकारी लेकर आते हैं कि हमारे किसान साथी कैसे खेती कर सकते हैं और कैसे खेती करके अपना ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही साथ श्रोताओं, हम इस कार्यक्रम में ये भी बताते हैं कि इस मौसम में हमारे किसान साथी कैसे अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, क्योंकि धूप आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा हो रही है। तो ऐसे में हमारे किसान साथी जब भी खेतों में जाते हैं तो अपने सर को ढक कर रखें, तौलिए से, गमछे से या फिर किसी और चीज से, या टोपी भी आप लगा सकते हैं। खेतों में काम करते वक्त साथियों हमें ध्यान देना है कि पानी की मात्रा कम नहीं होने देना है, अपने शरीर को पानी बार बार दें यानी कि पीते रहें तो आपके लिए अच्छा होगा, तभी हम खेती का काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम खेती बाड़ी में श्रोताओं हम बात करने वाले हैं कि टिकाऊ खेती।
1: बिल्कुल श्रोता साथियों, कि टिकाऊ खेती आखिरकार है क्या, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि टिकाऊ खेती किसे कहते हैं, टिकाऊ खेती में किस तरीके से नई पद्धति से हमारे किसान साथी खेती कर सकते हैं, क्योंकि अब जमाना नई पद्धति का आ गया है कि कैसे किसान साथी नई पद्धति से और नई नई योजनाओं के साथ लाभ लेकर हमारे किसान साथी आगे बढ़ सकें, उनकी आजीविका को बढ़ाया जा सके। इसलिए हम कार्यक्रम खेतीबाड़ी के माध्यम से हम अपने किसान साथियों को नई नई पद्धति के बारे में खास तौर पर बता रहे हैं, और कुछ ऐसी बातों को भी ध्यान में रखना होगा किसान साथियों को, क्योंकि अगर झाबुआ जिले की बात करें तो वहां पर पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। पानी की किल्लत को देखते हुए हमारे किसान साथी कम पानी वाली फसलों पर जा सकते हैं, लगा सकते हैं। अब उसके लिए बीजों का चयन होता है, तो बीजों के चयन के लिए हमारे किसान साथी केवीके में जाकर या कृषि विभाग में जाकर संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ में किसान साथियों को बता देना चाहते हैं कि रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM के माध्यम से जो हम कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं वो हमारे किसान साथियों के लिए बड़े महत्वपूर्ण बातचीत हम लेकर आते हैं। और जैसा कि टिकाऊ खेती की अगर बात करें तो अभी हमारे किसान साथी, चूंकि गर्मी का सीजन चल रहा है और ऐसे में हमारे किसान साथी क्या करें, तो उनको यदि पथरीला इलाका है तो छोटी छोटी जमीन भी हमारे किसान साथियों के पास, तो वो क्या कर सकते हैं, पॉली हाउस एक माध्यम हो सकता है, ग्रीन हाउस जिसे कहा जाता है, उसमें नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं, पौधे भी उसमें लगा सकते हैं, उसमें भी खेती कर सकते हैं। तो किस तरीके से खेती करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस पर आज हम एक लघु नाटिका भी प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम के माध्यम से। साथ साथ में कुछ किसान अपने जो सफल हुए हैं और वो अपने अनुभव साझा करेंगे, तो हम देर नहीं करते हैं, हम अपने किसानों के पास हमारे श्रोता साथियों को ले चलते हैं, उनके अनुभवों को हम जानते हैं, वो नई पद्धति से किस तरीके से खेती करते हैं, क्या अनुभव उनका रहा है। तो आइए हम अपने किसान साथियों की आवाज में इस उनकी कहानी को हम सुनते हैं।
2: मैं विवेक यादव, मैं एक मध्यवर्गीय सुभाष नगर किसान हूँ। भैया, अगर हम अपनी नई तकनीकों को आज हम अपने खेतों में लगाते हैं तो भैया लागत आती है, पर यह लागत एक बार की है, जिससे हम भविष्य में काफी समय तक इससे लाभ ले सकते हैं। कह सकते हैं कि भैया लगाओ एक बार और काटो बार बार।
3: मैं सुंदरदास, जगदीशपुर का किसान। हमारे ख्याल से आज स्थिति को देखते हुए नई तकनीकों का प्रयोग हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सब लोग पिछड़ जाएंगे और सारा काम खराब हो जाएगा। हाँ, नई तकनीकों को अपनाना थोड़ा महंगा जरूर है।
4: मैं जवाहर नगर का एक छोटा सा किसान हूँ, मेरा नाम अभिषेक है। भैया, यह बात तो सही है कि खेती में अगर हम वैज्ञानिक तकनीक लगाएं तो इससे थोड़ा खर्चा तो आता है, पर इससे आने वाले समय में बहुत से काम हो जाते हैं। जैसे मैंने 2 साल पहले पंप सेट लगाया था और मैं अभी तक उससे सिंचाई कर रहा हूँ।
5: किसान भाइयों की बात को ध्यान से सुनते हुए मुझे एक धारणा का पता चला भाइयों, कि हमारे सभी किसान भाई सोचते हैं कि भाई अगर हम उन्नतशील खेती करना चाह रहे हैं और नई नई जो तकनीकें हमें जो विशेषज्ञ बताते हैं उनको अपनाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए निवेश करना बड़ा जरूरी है, और निवेश भी मामूली नहीं, बड़ा निवेश है किसान भाइयों। तो इस निवेश को किसान कैसे देखे, क्या खर्चा है उसके लिए या कि एक कमाई का नया साधन, और इसी बात से एक विषय जो सामने आया है कि निवेश एक बार, लाभ बार बार।

0: यानी एक बार निवेश करने के बाद आप लाभ बार बार कैसे लें, आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं। लेकिन किसान भाइयों की धारणा को और मजबूती से समझते हैं और चलते हैं बातों बातों में, जो कि है एक लघु नाटिका।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: जय दिवाकी, जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार।
1: हाँ दिशान में पकड़ो, उधर से पकड़ो, चलो। हाँ नहीं, रुको रुको रुको रुको, तुम रुको रुको, मैं पहले उतरता हूँ। हाँ हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक,
2: आराम से आराम से।
3: अरे घर में शादी है क्या? राम राम
1: राम राम, तुम हटो यार जरा,
2: एक
1: बार एक। हाँ
2: क्या कह रहे हो कल्लू भैया?
3: घर, मैंने कहा घर में किसी की शादी है क्या भैया?
1: शादी से तुम्हारा मतलब?
3: अरे इतना सारा सामान लेकर आए हो, शादी का ही लग रहा है।
2: शादी का? अरे कल्लू, ये जो पाइप है ये सामियाना का पाइप थोड़े ना है। ऊपर से ये बताओ, जो सामियाना कहीं पन्नी का लगता है क्या? है
3: ये तो बात सही कह रहे हो भैया, लेकिन है क्या ये बवाल?
1: अरे भाई कल्लू, कुछ नहीं, तुम्हें पता नहीं क्या, हम लोग अच्छी खेती चाहते हैं, इसके लिए पाली हाउस लगा रहे हैं।
2: हाँ, और तुम्हें पिछली बार की बात याद है? संगम भैया कह रहे थे कि हम लोगों को टिकाऊ खेती करनी चाहिए, और टिकाऊ खेती के लिए अगर हम पॉली हाउस में खेती करेंगे तो हमारी इनकम भी अच्छी होगी और उत्पादन भी अच्छा होगा।
3: इसके लिए पैसा तो बहुत खर्च किया दिलशान भैया।
1: हाँ थोड़ा सा खर्चा हुआ है, लेकिन अब भाई वो सब बराबर हो जाएगा, क्यों दिलशान भाई?
2: बिल्कुल भाई, आज हम पैसा लगा रहे हैं, कल पैसा फिर आएगा और परसों फिर आएगा।
3: इससे अच्छा तो आप अपने पान की दुकान खोल लेते, उससे तो रोज रोज आमदनी आती।
1: तुम भी यार कल्लू, हद है
2: भैया। हम लोग हैं किसान, हम लोग खेती करेंगे तभी हम अच्छी तरह से कर पाएंगे। पान और बीड़ी सुरती बेच के कुछ नहीं होने का है।
1: और वैसे भी कल्लू, छोटा बिजनेस नहीं बड़ा बिजनेस करो,
2: और आज की नहीं आगे की सोचो
4: भाई। पॉली हाउस में लगाओ लागत एक बार और कमाओ बार बार।
2: संगम भैया राम
4: राम, राम भैया राम राम।
1: संगम भैया कैसे हैं?
4: मैं तो भैया आप ही जैसा हूँ, एकदम टकाटक।
1: संगम भैया, यहाँ मैं और दिलशान भाई पाली हाउस के लिए जो सामान था ले आए हैं, आप जरा देख लीजिए कि ये सारी चीजें सही है कि नहीं। क्यों दिलशान भाई?
2: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। संगम भैया, जिस दुकान पे आपने कहा था हमने सामान वहीं से लिया, इससे और दुकान से थोड़ा सस्ता ही पड़ा है।
3: संगम भैया, कितना भी सस्ता पड़ा हो लेकिन है तो महंगा ही।
4: अरे कल्लू भैया, आप कह तो सही रहे हो, लेकिन आज तो जरूर ये महंगा लग रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में यही तो आपको बरकत दे के जाएगा, तब आपका जो पान का खोका है ज्यादा महंगा महसूस होगा और ये पॉली हाउस बहुत ही सस्ता लगेगा।
2: बिल्कुल सही कह रहे हो संगम भैया। कल्लू भैया, आज हम ये पॉली हाउस लगा रहे हैं तो ऐसा थोड़ा है कि अगली बार इसको उखाड़ के बेचना पड़ेगा, एक बार ये लग गया तो सालों साल चलता है।
1: अरे दिलशान मिया, किसे समझा रहे हो? तुम तो जाओ कल्लू अपनी पान की दुकान खोलो, और हम भी तुम्हारे वहाँ आएंगे 10 साल बाद पान खाने।
3: चलो पान वान भैया छोड़ो, ये बताओ इस पॉली हाउस जो लगा रहे हो उससे क्या क्या फायदे होंगे?
4: अरे भैया, पॉली हाउस में ऐसी फसलों का उत्पादन हो सकता है जो उस मौसम में बाजार में नहीं मिलती, और जो फसलें बाजार में नहीं उपलब्ध हों और वो फसलें तुम बाजार में ले जाओगे तो बताओ कितना मुनाफा होगा, यानी 40 पैसे का बैंगन 40 रुपये में मिलेगा।
3: अरे भैया ये तो मुनाफे वाली बात है, तो क्या मैं इसमें आपकी सहभागिता ले सकता हूँ?
1: क्यों नहीं?
2: लेकिन भैया जितना खर्चा हुआ है उतने के बराबर ही खर्चा देना पड़ेगा।
3: चलो ठीक है, मेरा भी एक हिस्सा जोड़ लो।
4: अरे ये हुई ना बात, तुम भी समय के साथ साथ चलने लगे हो, इसका मतलब थे बुद्धू और बन गए महात्मा बुद्ध।
5: कार्यक्रम खेती बाड़ी में एक बार फिर से सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सुन रहे हैं इस समय रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपनो रेडियो आपनी बातें। अभी हम सब मिलकर सुन रहे थे एक लघु नाटकिया जिसमें हम जान रहे थे कि किस तरह से पॉली हाउस होते हैं और हमारे किसान साथी कैसे उसमें नर्सरी लगाकर कुछ फायदा ले सकते हैं। चलिए श्रोताओं, अब हमारा वक्त हो चला है अगले सेगमेंट का। अगले सेगमेंट में हम जानेंगे कि हमारे जो एक्सपर्ट है वो नई पद्धति के बारे में हमें बता रहे हैं, तो कैसे हमारे किसान साथी उस नई पद्धति का फायदा ले सकते हैं। लेकिन श्रोताओं, उससे पहले हम यहां पर सुन लेते हैं एक गीत को।

0: माता की जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार।
1: सर्वप्रथम तो है कि पॉली हाउस बड़े काम की चीज है और खास तौर पे जो है बेमौसमी सब्जी उत्पादन जो किसान भाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे जो महत्वपूर्ण इसका अंग होता है कि इसमें आप 6 से लेकर 8 गुना तक ज्यादा उत्पादन इससे ले सकते हैं और उत्पादन के साथ साथ दूसरी भी महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होगी। जो भी आप सब्जी लेते हैं उसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होगी। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कि आप बिना सीजन के आप उगाते हैं तो हमारी जनसंख्या को देखते हुए भी है कि हम जो है सब्जी उत्पादन अपना जो है जितना हो रहा है उससे हम बढ़ा देते हैं तो हमें बहुत सारी जो है सब्जियां जो है बिना मौसम में खाने को लिए मिलती हैं, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है हमारे लिए। देखिए पॉली हाउस कई तरह के होते हैं और जैसे आपका लो कास्ट है, मीडियम कास्ट है, हाई कास्ट है, तो हमारे किसान भाई किस तरह का पॉली हाउस बनवाना चाहते हैं कास्ट उस पर निर्भर करता है। इसमें जो हम पॉली सीट यूज करते हैं उसमें भी बहुत तरह की पॉली सीट आती है कि एंटी डस्ट है, एंटी सल्फर है, एंटी फॉग है, तो ये लागत तो इस पर निर्भर करता है कि हमारे किसान भाई किस चीज का बनाते हैं। आप बांस का भी बना सकते हो साधारण पॉली हाउस, आप तो चाहे आप अब तो जीआई पाइप्स आती हैं उसका भी आप पॉली हाउस बना सकते हो। किस तरह का बनाते हैं ज्यादा करके किसान भाई जो हमारी हमारा प्रदेश है नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस हम लोग के लिए लाभकारी होता है। बनवाते समय इसमें एक ही बात का ध्यान रखते हैं कम से 60 से 70% इसमें वेंटिलेशन होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों को देखा है वेंटिलेशन अच्छा नहीं होगा तो बीमारियों वगैरह का प्रकोप बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है। बनवाते समय कुछ चीजों का और ध्यान रखेंगे, ऐसी जगह पॉली हाउस बिल्कुल आपका न हो जहां पे छाया आती हो या ऐसी जगह न हो जहां पे पता लगा बरसात के दिनों में पानी भर गया, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका फेंस वगैरह से थोड़ा घिरा हो तो भी बहुत अच्छा रहेगा, जानवर उसके पास कम से कम जा सके, पानी का स्रोत उसके आसपास होना चाहिए और बाजार से भी नजदीक हो तो बहुत ही अच्छा है। और ये सब चीजें हैं और एक महत्वपूर्ण है कि पॉली हाउस बना लेते हैं तो चूंकि हम ठंडी के दिनों में इसको इस्तेमाल करते हैं किसान भाई पॉली हाउस अगर बना ऐसा नहीं कि जब भी जो ये आता है और पॉली हाउस खोला और अंदर घुमाने के लिए चले गया, पॉली हाउस इसके लिए नहीं होता। पॉली हाउस को कम से कम खोला जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। बनाते समय एक और ध्यान रखिएगा कि दरवाजे जो हैं आपके बिल्कुल सामने की तरफ न खुले, थोड़ा सा घूम के आप दरवाजा बनाइए, इससे क्या होता है कि बहुत सारे कीट अंदर जाने जा नहीं पाते हैं, तो ये हमें काफी उससे लाभ रहता है। और जिन किसान भाइयों के जैसे पॉली हाउस बनवा चुके हैं 2-3 साल हो चुके हैं तो बरसात बीतने के बाद एक बार उसकी जो है पॉली सीट जो ऊपर होती है सर्फ से उसकी धुलाई जरूर कर दें क्योंकि बहुत लोगों की शिकायत होती है कि अब उत्पादन कम हो रहा है। उत्पादन इसलिए कम होता है कि बरसात के बाद पन्नी हमारी थोड़ी गंदी हो जाती है, थोड़ी काई जैसी जमने लगती है, तो आप धुलाई कर दोगे तो उत्पादन जो है एक बार फिर से आपको दोबारा अच्छे से प्रकार से मिलने लगेगा। और एक पॉली हाउस बनाते हैं तो आप पूर्व से पश्चिम की दिशा में बनाएं, कई सारे पॉली हाउस आपके लगे हुए हैं तो उत्तर से दक्षिण दिशा में बनने चाहिए, तो बहुत सारी चीजें हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि जो भी किसान भाई पॉली हाउस बनवाना चाहते हैं बिना तकनीकी जानकारी लिए हुए न बनवाएं तो बेहतर रहता है। एक बार आप जानकारी जरूर लें क्योंकि आपकी उपयोगिता क्या है, कौन सी सब्जी उगाना चाहते हैं, ये सब चीजों का जैसे उसमें मिस्ट सिस्टम लगता है, ड्रिप सिस्टम लगता है, तो हम सारी चीजों की जानकारी देते हैं कि आपकी आवश्यकता क्या है और कितना बड़ा पॉली हाउस आपके लिए ठीक रहेगा। जैसे कम से कम आपका होता है कि 100 वर्ग मीटर का तो होना ही चाहिए, तो 100 से लेकर 500 वर्ग मीटर का पॉली हाउस अच्छा माना जाता है। इन सब चीजों को बनाए और लगाने का होता है तो बीमारियों के लिए भी अच्छा, तो सावधानी के लिए भी आपको जो दवाएं हैं और जो डोज है बाहर से थोड़ा अलग होता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या लगाए हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं, तो आप किसी वैज्ञानिक से या संस्था से जुड़े रहें। बस ये है कि नहीं कि आप सब्जी का जैसे खेती से लगातार आय बढ़ाने का ये है कि खेत को हम कभी खाली ना छोड़ा जाए और पहले से सोच के डाइवर्सिफिकेशन की एक बात होती है कि ज्यादा तरह की फसलों का चुनाव किया जाए। बहुत सारी जैसे बीच में छोटा छोटा जैसे आपका गैप आता है, जैसे हमारे यहाँ भी लोबिया की बात होती है कि आपका गेहूं कटेगा और उसमें आप लोबिया थोड़े समय में 60 दिन में लगा के ज्यादा से ज्यादा जो धान कटने के बाद आप लगा के ले सकते हैं, गेहूं और उसके लगने के पहले जो है आप उससे ले सकते हैं। तो बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं कि जो आप थोड़े थोड़े समय में, जैसे मूली एक ऐसी सब्जी है आप इसको साल भर में 8 बार लगा सकते हैं, तो आपको लगता है कि 2 फसल के बीच में जो है हमारा थोड़ा गैप हो रहा है 25 दिन 40 दिन, तो आप ऐसी प्रजाति का चुनाव करिए, लगाइए और आमदनी ले लीजिए। बिल्कुल भी हमें जो अगर हम लगातार लगे रहें और सोच बनाए रखें खासतौर पर उन सब्जियों को भी, जैसे लगता है कि साल निर्भर आमदनी की बात है तो कुछ किसान भाइयों को पॉली हाउस वगैरह भी बनाना आवश्यक होगा, क्योंकि बिना मौसम में भी जो है सब्जी हम लगा के हम जो है ज्यादा से ज्यादा आमदनी ले सकते हैं। और लगाने सबसे महत्वपूर्ण है किसान भाई जैसे है कि दो चीज बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किस सब्जी को लगाने जा रहे हो उसमें लागत कितनी आएगी और उसका बाजार में उसकी मांग है कि नहीं है। तो जहां भी आप लगाना चाहो, ये नहीं कि हमने कह दिया कि कोई भी सब्जी आप साल भर उगाते रहिए, इन दोनों चीजों को देखने के बाद ही आप सब्जी उत्पादन शुरू करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अलावा बहुत कोई नई सब्जी आप जैसे एक्जोटिक आप लेट्यूस लगाना चाहते हैं, सेल्ली लगाना चाहते हैं, इस तरह की सब्जियों की अगर खेती करना चाहते हैं तो एक बार बात जरूर कर लीजिए आप, क्योंकि बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जैसे हमारे दिल्ली है वहां आपको मूल्य बहुत ज्यादा उसका मिलेगा। तो इस तरह की चीजों में लगने से पहले एक बार बाजार को देख ले, वैज्ञानिक सलाह जरूर ले ले। और मुझे लगता है कि ऐसी सब्जी है जैसे टमाटर तो पूरे साल भर, और किसान भाई देख रहे हैं कि हर एक सब्जी पूरे साल भर मिल रही है, मिल कहां से रही है, जब कोई किसान उगा रहा तभी तो मिल रही है आपको, तो दूसरा उगा सकता है हमारे देश के दूसरे भाग में उगा सकता है तो हम क्यों नहीं उगा सकते हैं। तो पूरा है कि सब्जी से अगर व्यवसाय में लगा जाए तो हम पूरे साल भर जो है उसमें लगे रहेंगे और हमें ज्यादा से ज्यादा आमदनी ले सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा हमें आधुनिकीकरण करना पड़ेगा कि हमें जो है पॉली हाउस है, मल्च है, ड्रिप इरिगेशन है, फर्टिगेशन है, कुछ नई चीजें जो आई है, नई प्रजातियां हैं, इनका हम समावेश करेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि साल भर जो है हमारा जो परिवार, हम खुद भी अच्छी सब्जी खाएंगे, दूसरे को भी अच्छा खिलाएंगे। तो ये जैसा कि है कि भाई जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो सब मिल के चले तो सभी अच्छा ही अच्छा।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ू रेडियो आपड़ी बातें।
3: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, अभी आपने सुना विषय विशेषज्ञ को, तो काफी सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी हमारे किसान साथियों के मन में, जो भी सवाल चल रहे थे इस खेती को लेकर और साथ में नई पद्धति को लेकर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे आसपास का क्लाइमेट एकदम से खराब होता चला जा रहा है, पानी की कमी हमें देखने में आ रही है। तो ऐसे में हमारे किसान साथी कौन से वे बीज हैं जिनका चयन करके हम अपने खेतों में लगा सकते हैं, जिससे हमें अच्छा खासा मुनाफा एक मिल सकता है। श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे हम बढ़ाते हैं और आइए इसी कार्यक्रम में हमारे साथ पशुपालन की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि पशुपालन भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। तो इस मौसम में हम कैसे पशुपालन पर ध्यान दे सकते हैं, क्या चीजें उनके लिए सही होती हैं, क्या हमें करना चाहिए पशुधन के साथ, तो आइए सुनते हैं इस चर्चा को।
4: खेती के साथ साथ किसान पशुपालन कर अतिरिक्त आय कमा रहे हैं। कम स्थान और कम व्यय पर छोटे पशुपालकों में सबसे ज्यादा बकरी पालन का प्रचलन है, क्योंकि इसके लिए ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती और इनकी संख्या में आसानी से इजाफा भी होता रहता है। बीते 5 सालों में बकरियों की संख्या में इजाफा देखा गया है। हर 5 साल में होने वाली पशु गणना के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2012 की तुलना में पशुधन में 4.6% की वृद्धि हुई है। ये संकेत पशुपालन में होने वाले मुनाफे की ओर इशारा करते हैं। बकरी पालन से और अधिक कमाई कैसे की जाए, आइए जानते हैं। पशुधन बढ़ता रहे और मुनाफा भी होता रहे, इसके लिए बकरियों के प्रजनन में कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक बकरी लगभग 1.5 साल की उम्र में प्रजनन करने लायक हो जाती है। एक बकरी 2 साल में 3 बच्चों को जन्म दे सकती है। इस तरह इनकी संख्या में वृद्धि होती रहती है। ब्लैक बंगाल बकरी का प्रजनन बीटल या सिरोही नस्ल के बकरों से कराना चाहिए। बीटल या सिरोही नस्ल से उत्पन्न संकर पाठी या बकरी का प्रजनन संकर बकरा से कराएं। इसके अलावा इनके आहार पर भी खास ध्यान रखें। गाभिन बकरियों को अंतिम 1.5 महीने में चराने के अलावा कम से कम 200 ग्राम दाना का मिश्रण अवश्य दें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि बकरियों के आवास में प्रति बकरी 10 से 12 वर्ग फीट की जगह दें और एक घर में एक साथ 20 बकरियों से ज्यादा ना रखें। बच्चा जन्म के समय बकरियों को साफ जगह पर रखें। जन्म के बाद नाभि को 3 इंच नीचे से ब्लेड की सहायता से काट दें, साथ ही टिंचर आयोडीन या वोकाडिन दवा लगाएं। बच्चों को रोगों से बचाने के लिए जरूरी टीकाकरण कराएं। बकरियों के अच्छे विकास में आहार की अहम भूमिका होती है, इसलिए बकरियों के पोषण के लिए प्रतिदिन दाने के साथ सूखा चारा दें। दाने में 57% मक्का, 20% मूंगफली की खली, 20% चोकर, 2% मिनरल मिक्सचर, 1% नमक। होना चाहिए। इसके अलावा सूखे चारे में गेहूं का भूसा, सूखी पत्ती, धान का भूसा, उड़द का भूसा या अरहर का भूसा होना चाहिए। इस तरह ध्यान देने से बकरी में मांस के साथ साथ दूध में भी वृद्धि हो सकेगी। बकरी पालन में जितना जरूरी बकरी का होना है उतना ही जरूरी सही जानकारी का भी होना है, और सही जानकारी के लिए किसान या पशुपालकों को प्रशिक्षण लेना चाहिए। साथ ही मौसम के हिसाब से छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर बड़े नुकसान की आशंका से बचा जा सकता है और पशुपालन से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। हो रहे बदलाव के साथ साथ युवा वर्ग की सोच भी बदल रही है। युवा अब हर वो कदम उठा रहे हैं जो प्रकृति और स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। यही वजह है कि युवा अपनी सोच को नया रूप देकर अपने बनाए उत्पादों को बाजार में ला रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही युवा उद्यमियों से मिलवाएंगे जो बेहतर स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक पहल कर रहे हैं। हरजोत की रुचि घर के बने उत्पादों में थी। छोटे रूप में वो घर में कुकीज और अन्य उत्पाद बनाया करती थी। अपने इस शौक को व्यावसायिक रूप देने के लिए उन्होंने PAU से प्रशिक्षण लिया। वो बताती है कि पहले उनके 20 से 100 ग्राहक ही थे, लेकिन प्रशिक्षण के दौरान उन्हें मार्केटिंग के तरीके भी सिखाए गए। इन तरीकों से हरजोत को अपने उत्पाद को विस्तार देने में मदद मिली। आज हरजोत के करीब 1000 ग्राहक हैं जो उनके उत्पाद ले रहे हैं। वो बताती हैं कि PAU से उन्हें करीब 16 लाख की ग्रांट भी मिली, जिससे उन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाने में काफी सहायता मिली। क्या है उनकी आगे की रणनीति, जानते हैं उन्हीं से।
5: मैंने पहले अपने प्रोडक्ट्स घर से बनाने शुरू किए। घर से मैंने अपनी डॉटर के लिए स्टार्ट किया था। उसके बाद मेरे को लगा कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो हम मार्केट से ले रहे हैं, ये केमिकल और फुल ऑफ प्रिजर्वेटिव्स हैं। तो मेरे को लगा कि आजकल जो नीड है वो विदाउट प्रिजर्वेटिव्स की है। तो उसके लिए मैंने ट्रेनिंग्स यहाँ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ली। उसके बाद मेरे को पता चला कि यहाँ पे RKVY रफ्तार प्रोग्राम है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर में है, जिसके लिए मैंने अप्लाई किया और वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई। तो सिलेक्ट होने के बाद जो मेरा प्रोडक्ट्स थे, जैसे मैं बना रही थी, तो जैसे मेरे 20 या 100 कस्टमर्स थे, उस इन्होंने यहाँ से मेरे को पैकेजिंग का कैसे मार्केटिंग करनी है सब कुछ बताया। तो उसी को मैंने फिर वही, मेरी प्रोडक्शन भी बढ़ गई, मेरे 1000 से ऊपर अब कस्टमर्स हैं, जिसके हिसाब से अब मेरे को गवर्नमेंट से ग्रांट भी मिली है। तो उसके साथ साथ मैंने अब जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो कुकीज़ हैं, मिलेट कुकीज़ हैं, ग्लूटेन एलर्जी वाले लोगों के लिए हैं, वीगन्स के लिए हैं, और ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में जा रहे हैं। अब हम अपनी आउटलेट भी खोलने जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये जो सारी प्रोडक्शन है, ये हम खाली ये नहीं कि मैं अपने तक सीमित रखना चाहती हूँ। अगर मैं काम शुरू कर रही हूँ तो मेरे कम से कम मेरे अंडर अब 20 से 25 जिन लोगों को जो अनएम्प्लॉय हैं, जिनको आगे गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती या और जिनके स्किल्स अभी इतने नहीं हुए, उनको दे रही हूँ। क्योंकि मैंने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो न्यू जनरेशन, जो कमिंग जनरेशन है, वो आ रही है, वो भी अपने जो उसका पैशन है उसको प्रोफेशन बनाए, ताकि हम किसी पे डिपेंड ना होए।
4: वहीं PAU के छात्र परमप्रीत का कहना है कि उन्होंने पढ़ाई के दौरान ही खुद का व्यवसाय शुरू किया। परमप्रीत का उद्देश्य लोगों को हेल्दी सलाह देने का है। इसके लिए उन्होंने एक किट तैयार की जिसमें शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व मौजूद हैं। परमप्रीत मानते हैं कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय का अभाव है। इस वजह से वो संतुलित और पोषण से भरपूर भोजन से दूर होते जा रहे हैं। इसी कमी को भरने के लिए परमप्रीत ने ये कदम उठाया है। वे बताते हैं कि इसके लिए उन्होंने प्रशिक्षण भी लिया, साथ ही PAU ने उन्हें वित्तीय सहायता भी दी।
6: मैंने अपनी शिक्षा के साथ साथ मैंने एक स्टार्टअप, मेरे एक पार्टनर है अनुपमा, वो उनके साथ मिलकर हमने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, वो है माइक्रोग्रीन्स और एक्जॉटिक वेजिटेबल्स का। तो हमने अपनी जो शिक्षा है उसके साथ साथ ही स्टार्ट किया था, लेकिन अब हम इसे कंपनी के रूप में अभी एक स्टार्टअप रजिस्टर करा दिया है। जो हमारा स्टार्टअप है वो इनक्यूबेट कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट सेंटर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर, जहाँ पे हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है कि हम कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे अपने प्रोडक्ट को शोकेस करना है, सारा का सारा हमें हेल्प करते हैं डॉक्टर रियाड सर, जो हमारे अभी प्रोग्राम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके अंडर हमें गवर्नमेंट फंडिंग भी मिली हुई है, उसके अंडर हमें 12 लाख की जो गवर्नमेंट फंडिंग मिली हुई है जिसमें हम इंडोर फार्मिंग का प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहा है। इंडोर फार्मिंग हम क्या कर रहे हैं, जैसे माइक्रोग्रीन्स का हमारा है, माइक्रोग्रीन्स क्या होते हैं कि जो छोटे फॉर्म के कह सकते हो 10 दिन की ग्रोथ है पौधे की बीज से उगने तक, वो उसे माइक्रोग्रीन कहते हैं, तो वो काफी न्यूट्रिशियस होते हैं और उसके साथ साथ हमारे काफी ऐसी वेजिटेबल्स भी हैं जैसे केल हो गया या स्विस चार्ड हो गया या मैस्को ब्रोकली हो गया, जो डिफरेंट टाइप्स की एक्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं जो काफी न्यूट्रिशियस होती हैं लेकिन हमारी मार्केट में नहीं मिलती हैं।
3: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे वर्षा
7: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष।
3: जी हां साथियों, अभी आप सुन रहे थे सफल किसान की कहानी को कि किस तरह से साथियों हम जब खेतों में चावल उगाते हैं और उसको सीधा ही हम मंडी पर बेच देते हैं जिससे हमें बहुत ही कम मुनाफा और सीमित मुनाफा मिलता है, लेकिन अगर हम उन्हीं चावलों का कोई और प्रोडक्ट बनाकर तैयार करें, उनकी पैकिंग कर अगर बेचें तो उससे 2 गुना फायदा हम कमा सकते हैं। बस जरूरत है तो हमें समझने की और एक प्लान करने की कि किस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। अगर आपके खेतों में दालें बहुत ज्यादा होती हैं, अगर आप किसी और सब्जी की बहुत ज्यादा पैदावार करते हैं, मान लीजिए आपका आलू बहुत ज्यादा होता है, तो आप आलू ऐसे ही बेचने की बजाय आप उनकी चिप्स बनाकर भी बेच सकते हैं बाजारों में, जो आपकी अच्छे दामों में चली जाएगी, जिसका अच्छा खासा मुनाफा हमारे किसान साथियों को सीधे पहुंच सकता है। तो साथियों ज्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि हमारा समय हो रहा है आज के इस कार्यक्रम से जाने का, तो आज का ये कार्यक्रम खेतीबाड़ी साथियों आप सभी को कैसा लगा हमें जरूर फोन के माध्यम से बताना ना भूलेगा और साथ में हमें सुझाव भी दीजिएगा, क्योंकि अगर ये कार्यक्रम आपके अनुसार यानी आपके लिए फायदेमंद है तब भी हमें बताइएगा और फायदेमंद अगर नहीं है तब भी हमें जरूर जरूर जरूर बताइएगा, जिसके लिए हमारा मोबाइल नंबर है
7: 9425416603। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और साथ साथ में यदि आपको खेतीबाड़ी से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी आप चाहते हैं तो हमें जरूर कॉल करके पूछ सकते हैं। साथ साथ में विषय विशेषज्ञ की सलाह भी अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, तो हम अपने विषय विशेषज्ञ से सलाह लेकर आपके सवालों का जवाब हम कार्यक्रम के माध्यम से दिलाएंगे। और हम साथियों कार्यक्रम में कोशिश कर रहे हैं वो

0: तो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। तो आपके रेडियो साथी मनीष
1: और आपके रेडियो साथी वर्षा को दीजिए जाने की अनुमति। फिर होगी हमारी और आपकी मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: दोस्तों, जिंदगी के रंग आपकी सेहत के संकेत प्यारे से प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा हम हमेशा कोशिश करते हैं, आपके स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी तरीके की परेशानियों से अगर आप जूझ रहे हो तो हम विशेषज्ञों को, एक्सपर्ट्स को, स्पेशलिस्ट्स को इस प्रोग्राम में लेकर आते हैं जिससे आपकी मदद हो सके। आप चाहें तो उन डॉक्टर से, उन स्पेशलिस्ट से, उन विशेषज्ञों से संपर्क भी कर सकते हैं, बट हम कोशिश करेंगे ज्यादातर इंफॉर्मेशन, ज्यादातर जानकारी आपको यहीं मिल जाए। तो आज हमारे साथ उड़ीसा से, भुवनेश्वर से डॉक्टर गाथा मोहंती मौजूद हैं। डॉक्टर गाथा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर गाथा आपसे कि अपना परिचय हमारे सुनने वालों को खुद दें। आपकी स्पेशलिटी क्या है, आप कौन से विशेषज्ञ हैं?
1: नमस्ते समीर जी, और श्रोताओं को, झाबुआ की आवाज सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर गाथा भुवनेश्वर उड़ीसा से हूँ, और मैं एक डेंटल सर्जन हूँ विद अ स्पेशलिटी ऑफ पेरियोडोंटिक्स एंड ओरल इम्प्लांटोलॉजी, मसूड़ों की स्पेशलिस्ट आप बोल सकते हैं। और मैं यहाँ से भुवनेश्वर में 20 साल से हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ। आई एम एसोसिएटेड एज एसोसिएट प्रोफेसर इन इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, शिक्षा और अनुसंधान यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर, जहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट करिकुलम। और मैं प्राइवेट प्रैक्टिस भी करती हूँ, मेरा खुद का क्लिनिक है डेंटल टच, जो कि 20 साल से है।
0: बहुत खूब डॉक्टर गाथा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। जाहिर सी बात है, आपकी जो नो हाउ है, आपकी जो स्पेशलिटी है, आपकी जो नॉलेज का लेवल है वो बहुत बहुत ऊपर है, क्योंकि आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहे हैं, तो आपके उस एक्सपर्टाइज की भी हम गुहार करेंगे, उसकी भी हम रिक्वेस्ट मांगेंगे। पर शुरू करते हैं बिल्कुल नॉर्मल रूटीन साधारण व्यक्ति के लिए, कि साधारण व्यक्ति डेंटल या डेंटल से संबंधित किसी भी चीज को क्या समझता है। कोई भी व्यक्ति समझता है दांत है साहब, मांझ लिए, ब्रश कर लिए तो ठीक, नहीं तो गड़बड़। और बड़ी मजेदार बात है कि हम बहुत ज्यादा तवज्जो अपने दांतों की स्वास्थ्य को लेकर देते भी नहीं, और जब परेशानी खड़ी होती है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, मुझे बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज की भाषा में बताइए, दांतों से संबंधित 1, 2, 3, 4, 5 नॉर्मल परेशानियां क्या होती हैं जिससे लोगों की जिंदगी दूभर हो जाती है?
1: जी जी जी, पहले तो मैं बताऊं कि लोग समझते हैं ना हमारे 32 दांत हैं
0: जी,
1: तो एक चला गया तो ठीक है ना, 30 है, 31 है, और 2 चले गए तो ठीक है, 5 चले गए तो भी ठीक है, 15 चले गए तो भी ठीक है, वी आर मैनेजिंग। बट वैसा होता नहीं है, और मैं बता दूं कि अगर एक दांत पे मिसिंग होता है तो उससे भी बहुत कुछ डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि अगर भगवान ने सोच समझ के हमको 32 दांत दिए हैं परमानेंट टीथ, वैसे तो देखा जाए एक नॉर्मल इंडिविजुअल के 52 पर दांत होते हैं, जिसमें कि 20 जो होते हैं वो मिल्क टूथ होते हैं, और जो कि गिरते हैं उसके बाद परमानेंट 32 दांत आते हैं, तो कुल मिला के 52 ही होते हैं। कुछ कुछ कभी कभी केसेस में अगर विजडम टीथ नहीं आता है तो 50 या 49 ऐसे होते हैं। तो 5 परेशानियां जो मैं बताऊंगी, पहला तो ये है कि दांत के ऊपर एक परख जम जाना, येलोइश दिखने लगेगा, तो वो एक है। मुंह से जो बास आने लगता है वो बहुत ज्यादा परेशान करता है। फिर ब्लीडिंग होता है जब मसूड़ों से, वो बहुत परेशान करता है। फिर झंझनाहट होती है, कुछ ठंडा खा लिया, कुछ मीठा खा लिया तो उससे भी झंझनाहट होती है, तो वो भी बहुत परेशान करता है। और फिफ्थ होता है पेन। और भी है 6, मतलब दांत हिलने लगेगा, फिर दांत घिस गया है और कुछ भी चबा नहीं पा रहे हैं। सो अल्टीमेटली इट्स ऑल कनेक्टेड, सब कुछ कनेक्टेड है जी।
0: बहुत बहुत बढ़िया बात कही डॉक्टर साहब। अब जब आपको लोग सुन रहे होंगे ना यहाँ पर, जब आपके जो आपने गिनती गिनाई कि इन इन तरीकों से हमें तकलीफ होती है दांतों की, तो लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि हाँ ये बात तो कहीं ना कहीं हमने महसूस की। जैसे बिल्कुल फॉर एग्जांपल डॉक्टर साहब मैं कहूं, मेरी इस उम्र में मेरे को गम रिसीडिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि जो मेरे मसूड़े हैं वो सिकुड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है एक उम्र पर ऐसा होता है, बहुत बहुत सारे लोगों को ये हो रहा होगा और लोग शायद अवेयर होंगे या ना भी हों। तो गम रिसीडिंग एक ऐसा इशू है जहां पर मसूड़ों के नीचे के दांत एक्सपोज हो जाते हैं और हमें वहां पर फिर ठंडा गर्म झंझनाहट शुरू हो जाता है। तो जिनको भी ये परेशानी हो रही होगी वो महसूस कर पा रहे होंगे। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा गम रिसीडिंग के बारे में बताइए ना।
1: जी जरूर जरूर, उसको जिंजिवल रिसीशन बोलते हैं, जिसमें कि आपका जो रूट पोर्शन है ना दांत के, एक दांत का, अगर दांत को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो क्राउन पोर्शन जो कि आपको दिखता है और रूट जो होता है, जैसे पेड़ों के रूट्स होते हैं जो दिखते नहीं है, वैसा ही है। तो रूट जो होता है वो मसूड़ों के अंदर रहता है, जिसको कि हमारा जो पेरियोडोंटल लिगामेंट सॉफ्ट टिश्यू और हड्डी जो होता है ना एल्वियोलर बोन, वो पकड़ के रखता है। तो गम रिसीशन में क्या होता है, जो हमारा हमारे जो मसूड़े होते हैं वो नीचे नीचे चलने खिसकने लगते हैं। सो अ पोर्शन ऑफ योर रूट इज विजिबल। तो वो बहुत मतलब क्यों क्यों किस तरह से होता है वो मैं बताती हूँ। कभी कभी क्या होता है, हमारी ब्रशिंग टेक्निक जो होती है वो फॉल्टी होती है, ठीक है। हमको जिस तरह से ब्रश करना चाहिए हम लोग उस तरह से नहीं ब्रश करते। हम लोग ऐसे ब्रश ले लिए और अपने आप आंख बंद करके ब्रश कर रहे हैं, प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक फॉलो नहीं कर रहे हैं, या तो कभी कभी ऐसा दंत मंजन यूज करते हैं जो कि पाउडर हो और काफी एब्रेसिव हो, उससे भी होता है। और भी होता है कि हम लोग जब एडवांस स्टेज ऑफ डिजीज होता है कि हमने नेग्लेक्ट किया, कभी कुछ किया नहीं, कभी डॉक्टर के पास गए नहीं, अभी पेन हुआ या मसूड़ों से ब्लीडिंग हुआ तो हम लोग नेग्लेक्ट कर लिए और कभी ट्रीटमेंट के लिए गए नहीं, तो एडवांस स्टेज होता है जिसको हम लोग पायरिया बोलते हैं, पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं, उसमें भी गम्स रिसीड होती हैं। अगर गम्स रिसीड हो रहे हैं तो उसमें घबराने वाली बात कोई है नहीं, तो हमें पहले तो उसका क्यों हो रहा है वो पता करना है। तो अगर हमें पता चल गया, वो आपके जो जैसे पेरियोडोंटिस्ट हूं मैं, तो हमें पता चल जाता है कि क्यों हो रहे हैं। तो अगर उसका पता चल जाता है तो हम लोग उसी हिसाब से प्लान करते हैं ट्रीटमेंट, आपकी ब्रशिंग टेक्निक्स चेंज करवाते हैं, आप जो टूथपेस्ट यूज करें उसको चेंज करवाते हैं, अगर कोई मसल पुल के वजह से वो हो रहा है, या तो कुछ लोकल डिपोजिट्स होते हैं जिसको प्लैक और कैलकुलस हम लोग बोलते हैं, पत्थर जम जाते हैं उनके वजह से हो रहा है, या तो आपका डिजीज प्रोग्रेशन हो रहा है किसी वजह से, शायद डायबिटीज हो या ब्लड प्रेशर हो या तो और कोई मॉडिफाइंग डिजीज कंडीशन हो उसके वजह से हो रहा है, तो भी हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और उसके ट्रीटमेंट को पेरियोप्लास्टिक सर्जरी हम लोग बोलते हैं, जिसमें कि हम गम्स को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, अगर वो हो सकता है उसमें, अगर हड्डी का लॉस नहीं हुआ हो, बोन सही जगह पे हो लेकिन खाली मसूड़े नीचे चले गए हैं, तो भी हम उसको प्लास्टिक सर्जरी, पेरियोडोंटल प्लास्टिक सर्जरी से ऊपर उठा सकते हैं।
0: जी जी, लेकिन डॉक्टर गाथा मैम, आफ्टर ऑल इस तरीके की प्लास्टिक सर्जरी से गम्स को ऊपर उठाना किस कंडीशन में जरूरी हो जाता है? अगर रिसीड हो गया है और कोई ऐसी बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है, फर्ज कीजिए आपने सजेस्ट किया कि आप टूथपेस्ट या टूथ पाउडर बदल दीजिए, अपनी ब्रश करने की टेक्निक चेंज कर दीजिए, और उससे पेशेंट को फायदा हो गया, फायदा मतलब उसकी झंझनाहट खत्म हो गई, उसको पेन खत्म हो गया, उसको ठंडा गर्म लगना कम हो गया, जीरो तो नहीं हो जाएगा, आई परफेक्टली अंडरस्टैंड, लेकिन कम हो गया, तो उस प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत नहीं होगी ना मैम?
1: नहीं, दो रीजन की वजह से हम लोग प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। एक तो एस्थेटिक्स, अगर सामने के दांत रिसीड, ऐसे गम्स रिसीड हो जाते हैं तो बहुत ही गंदे दिखते हैं, तो इसलिए एस्थेटिक्स इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। और दूसरा है जो आपने बताया, सेंसिटिविटी होती है ना, तो वो उसके वजह से भी होता है। और जब रूट पोर्शन एक्सपोज होता है तो बहुत प्रोन टू कैरीज होता है, कैविटीज हो जाती हैं उसमें, तो वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो उसके लिए ना वो जो सचेतनता वो जो होती है ना, तो लोगों को वो समझाना जरूरी है। मैं एज अ डॉक्टर मैं लोगों को समझाऊंगी कि ये सब हो सकती है आपको फ्यूचर में, तो इट इज बेटर टू गो फॉर पेरियोडोंटल प्लास्टिक सर्जरी। वो एक माइनर प्रोसीजर है और आराम से आप करवा सकते हो, आधा घंटा एक घंटा लगता है और वो आराम से कर सकते हो।
0: अमेजिंग, अब ये बिल्कुल एक नई इंफॉर्मेशन डॉक्टर गाथा मोहंती ने हमें दी है दोस्तों। ये एक ऐसी इश्यू है जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चुपके चुपके आप तकलीफ उठा रहे होंगे, लेकिन आज इस जानकारी के बाद आप गौर से देख सकते हैं कि अगर आपको ये इश्यू है तो आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो डॉक्टर गाथा से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस तरीके की छोटी सी ट्रीटमेंट है, चाहे सर्जरी की जरूरत पड़े तो बहुत छोटा सा है। हम इतना कुछ करवाते रहते हैं, अपने दांतों का तो ख्याल रख लें, मुस्कुराते हैं तो दांत सामने दिखाई देते हैं।
1: जब एक आदमी को आप मुस्कुराते हुए देखते हैं तो क्या दिखता है आप?
0: दांत ही
1: दिखते हैं। या तो चमकता हुआ मतलब आंखें दिखते हैं या तो दांत दिखते हैं।
0: जी जी जी जी।
1: तो क्यों ना वही दांतों को और मसूड़ों को हम लोग उतना सुंदर रखें और स्वस्थ रखें,
0: बिल्कुल,
1: कि वो हमेशा अच्छा ही दिखे।
0: एब्सोल्युटली करेक्ट, क्या बात कही, बहुत ही सुंदर। तो जाहिर से बात है दोस्तों, हम अपने कॉस्मेटिक लुक्स पर इतना कुछ खर्च करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, तमाम कॉस्मेटिक्स लगाते हैं, तो जो चीज बिल्कुल सामने दिख रही है यानी कि दांत, उनका ख्याल क्यों नहीं रख लेते हम? मुझे तो ये बड़ी आश्चर्यजनक बात लगती है। बहुत खूब। तो आज डॉक्टर गाथा के साथ बातचीत करके हमें ये पता चला है कि हम कितना कितना ख्याल इन चीजों का रख सकते हैं। बहुत खूब। तो डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं, दांतों के ही बारे में कुछ और जानकारी लेते हुए, आपने जैसे शुरू में कहा कि अगर एक दांत कम हो जाए, जो सबसे पीछे वाला दांत होता है, अगर मान लीजिए उसके अंदर छेद हो गया या कैविटी हो गई, तो कई बार ये भी होता है कि या तो कहते हैं उसके अंदर रूट कनाल कर लें और एक स्क्रू जैसा कुछ लगा दें, उसको रिटेन कर लें, या फिर कई डॉक्टर्स ये भी बोलते हैं कि अरे साहब बिल्कुल लास्ट वाला है, छेद हो गया है, बेहतर है निकलवा दीजिए, क्या करना है? तो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप?
1: जी जी जी, जो हमारे दांत है वो भगवान की देन है, और दांतों का जो प्रोप्रायोसेप्शन है, जो जब दांत जिसको आप चबाने से आपको जो टेस्ट आता है वो खाली टंग से नहीं आता है, वो दांतों के वजह से भी आता है, और जो

0: डाइजेशन भी होता है वो प्रॉपरली चबाने से ही होता है. सो हमारे जो मोलर्स होते हैं या तो प्रीमोलर्स होते हैं वो चबाने के लिए बहुत हेल्प करते हैं. बट क्या होता है ना, लोगों का एक माइंड सेट था पहले, पिछले दिनों में क्या होता था इन दी ओल्डर टाइम्स, लोग एक्सट्रैक्शन ही खाली करवाते थे, रूट कैनल थेरेपी नहीं होता था. तो दांत में प्रॉब्लम हुआ, चलो निकाल दिया, और एक दांत में प्रॉब्लम हुआ, चलो निकाल दिया, दांत हिलने लगा, थोड़ा सा भी हिलने लगा, चलो निकाल दिया. लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं अपने श्रोताओं को कि ऐसा नहीं होता है. अगर दांत में थोड़ा सा भी कैविटी है, एकदम काला सा एक धब्बा दिखने लगा, या तो थोड़ा सा खाना जमने लगा, तो आपको इमिडिएटली जाना चाहिए, क्योंकि वो जो क्या बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो वो प्रिवेंशन होता है, आपको पहले जाके दिखाना है. आपको यूएस में क्या होता है कि एवरी 2 months या 3 months दे हैव अ डेंटल चेकअप, उनका इंश्योरेंस होता है, तो वो लोग जाके डेंटल चेकअप करवा लेते हैं और जो जो डॉक्टर्स बोलते हैं तो उसी हिसाब से करवा लेते हैं. बट यहाँ पे तो वैसा सिस्टम है नहीं, हमारा डेंटल इंश्योरेंस है ना वो सब का. तो हम लोग जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, तभी डॉक्टर के पास जाते हैं. लेकिन यहाँ पे एक्चुअली ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा भी कैविटी हुआ, थोड़ा सा भी खाना फंसने लगा, तो हमें जाना चाहिए. और दांत निकालना इज द लास्ट ऑप्शन फॉर एनी डेंटिस्ट. मैं तो बोलती हूँ कि हम लोग आजकल दांत निकालते ही नहीं है, अंटिल अनलेस इट इज ग्रॉसली डिकेड, मतलब पूरा खराब हो गया हो दांत, कुछ हम रख ही नहीं सकते उसको, उसी स्टेज में हम लोग दांत निकालते हैं. लेकिन हम हमेशा बोलते हैं अगर आप एक भी दांत निकाल रहे हो तो उसको जरूर रिप्लेस करिएगा 3 महीने या 6 महीने बाद. क्योंकि क्या होता है, एक जगह पे अगर दांत निकाल दिया ना, तो जो साइड वाले दांत होते हैं या उसके ऊपर वाले दांत होते हैं वो उसी स्पेस को फिल करने शुरू मतलब लगने लगते हैं. जैसे एक दांत निकाल दिया, दो साइड के दो दांत उसी साइड स्पेस में आने लगते हैं, तो वो क्या होता है, गैप स्लोली स्लोली कम हो जाता है. आपको लगता है अरे चलो बढ़िया है, हमारा गैप क्लोज हो गया, अब हम आराम से चबा सकते हैं. बट उसमें क्या होता है, जो दूसरे दांतों के बीच गैप आना शुरू हो जाता है, सो जो टोटल आपका ऑक्लूजन जो होता है वो डिरेंज्ड हो जाता है. ठीक है, आप चबा रहे हैं, आप खा रहे हैं, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसमें जो होता है ना, उसमें मसूड़ों के भी ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है और टोटली फुल डेंटिशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है.
1: यू आर एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट. अब दोस्तों मैं एक बात अपनी तरफ से कहना चाहूंगा कि इस बारे में मैं पर्सनली खुद कभी सोचा नहीं. मुझे ये लगा, आज डॉक्टर साहब ने टेक्निकल बात बताई है कि बीच में से एक दांत निकल गया और अगल बगल के दांतों ने उस जगह को भरने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन दरअसल उन्होंने अपनी ओरिजिनल जगह छोड़ दी और उनके बगल में जगह बनने लग गई.
0: जी, सही
1: बताया. यू देखा जाए तो इसको अगर हम इसको सिमली की तरह से पेश करें, एनोमली की तरह से पेश करें, तो समझिए किसी बहुत बड़ी सी बिल्डिंग के नीचे की एक ईंट निकाल ली गई हो, तो बाकी की ईंटों ने खिसक खिसक के उस ईंट को जगह पर भरने की कोशिश की हो, तो आपको क्या लगता है बिल्डिंग स्टेबल रहेगी? पूरी की पूरी बिल्डिंग हिलने लग जाएगी, क्योंकि जगह बननी शुरू हो गई, गैप्स बनने शुरू हो गए, वहां पर गंदगी, प्लैक्स और भी जो कुछ भी हम खाते हैं वो जमा होना शुरू हो जाएगा, और पूरा का ओ माय गॉड, आई एम स्केयर्ड. मुझे तो डर लग गया. जाहिर सी बात है, इट इज वेरी वेरी सीरियस. और मजेदार बात यह है कि विदेशों में डेंटल इंश्योरेंसेस होते हैं, डेंटल क्लिनिक्स पर रेगुलर विजिट्स का एक रूटीन होता है, और हमारे यहां कोई कुछ करता ही नहीं. चलिए माना कि पुराने जमाने में हम लोग नीम का वो यूज करते थे और वी हैड सम वेरी गुड हैबिट्स, लेकिन अब जब जंक फूड इतना अवेलेबल है और शायद हमारे पास वक्त भी कम है, तो हम अपने दांतों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं. डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, जंक फूड की बात आई तो मुझे कनेक्ट हो रहा है, बड़ा पॉपुलर हो गया है ना फास्ट फूड. दरअसल शहरों में फट से एक बर्गर पकड़ा और मीटिंग के लिए चल दिए, एक पिज्जा खाया और मीटिंग रादर पिज्जा हट में ही मीटिंग कर ली, तो ये सब बड़ा फैशन में है, बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा हिप हॉप लगता है, लेकिन इसके चलते हमारे दांतों पर क्या अत्याचार होता है मैम, जरा वो बताइए.
0: जी मैं बताती हूँ, स्टिकी कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना वो सबसे खतरनाक है दांतों के लिए. तो हम तो सुबह ब्रश करते हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस लोग एक ही बार ब्रश करते हैं, बट हम लोग एज डेंटिस्ट वी एडवाइस कि आप 2 बार ब्रश करें, सोने से पहले तो जरूर ब्रश करें, क्योंकि जो स्टिकी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिस तरह से आपको बिस्किट्स हुए, और या तो मैगी हुआ, या तो बर्गर हुआ, पिज्जा हुआ, वो सब जाके, पराठे भी हुए, रोटी पराठे, सब जाके ना दांतों में जो पिट्स एंड फिशर्स होते हैं दांतों को चबाने के लिए, वो हर एक दांत में होता है, तो वो पिट्स एंड फिशर्स में लग जाते हैं। ठीक है, टंग का क्या, हमारा जो जीभ है और हमारा सलाइवा जो है उसका क्या काम है, वो वॉश करता है, लेकिन वो जब टिकी कार्बोहाइड्रेट्स है, मतलब एज इन दे स्टिक टू द टूथ सर्फेस, तो वो आसानी से निकलते नहीं है, तो वो बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं और उतना बैक्टीरिया को फूड प्रोड्यूस देते हैं कि वो ग्रो करे। और कैविटी क्या होता है, वो बैक्टीरियल ग्रोथ ही होता है, और बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करके दांतों में छेद क्रिएट करता है।
1: जी,
0: तो स्लोली स्लोली आप सो रहे हो लेकिन बैक्टीरिया अपना काम कर रहा है, स्टिकी कार्बोहाइड्रेट, तो वो अपना एसिड प्रोड्यूस कर रहा है और थोड़ा थोड़ा कैविटीज बना भी रहा है, तो आपको पता भी नहीं चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, जाके वहां पे बैठ के कॉफी पी लिए और बर्गर खा लिए, आप खाइए, मना नहीं है खाने के लिए, लेकिन उसके बाद मुंह जरूर धोना मत भूलिए, उसको स्विशिंग बोलते हैं। और पहले क्या होता था, हम लोग मुंह में उंगली डाल के मुंह दांत को साफ करते थे, वो बंद हो गया आजकल।
1: जी, जी, जी।
0: तो वो स्विशिंग द माउथ हैज टू बी रेगुलर और कॉन्स्टेंटली पानी पीना चाहिए, सो दैट माउथ जो हो वो ड्राई ना हो। ड्राइनेस के वजह से भी और ज्यादा प्लैक बढ़ता है और हमारे बैक्टीरिया बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं।
1: यू आर एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट। मैंने जानबूझ के दो क्वेश्चंस का दिमाग में रखते हुए ये आपसे रिक्वेस्ट की थी, एक तो जंक फूड के बारे में, तो अब लोगों को पता चल गया होगा। देखिए डॉक्टर गाथा भी और मैं भी जंक फूड के सख्त खिलाफ नहीं है, प्लीज ऐसा मत समझिए कि हम जंक फूड के खिलाफ झंडा उठा के चल रहे हैं। ठीक है, आज का समय ऐसा है कि हमको जरूरत पड़ सकती है उसकी, या चलिए हम थोड़ा बहुत इंजॉय भी कर सकते हैं, बट साथ ही साथ हमें यह ध्यान रखने की भी जरूरत है कि खा लीजिए, लेकिन उसके बाद जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें अपने मुंह को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से रिंस करने की जरूरत भी है, क्योंकि अगर कुछ भी टुकड़ा वहां लगा रह गया तो वो तो बैक्टीरिया अट्रैक्ट करेगा और धीरे धीरे दांतों को खाएगा। तो दोस्तों ख्याल रखिए कि रिंस कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, रादर अगर आप प्रॉपरली रिंस कर रहे होंगे तो शायद दूसरे लोगों के निगाह में आपकी रेस्पेक्ट बढ़ जाए कि आप बहुत हाइजीनिक हैं, क्योंकि जब आप रिंस कर लेंगे तो आपके मुंह से दुर्गंध भी नहीं आएगी, एंड देन व्हेन यू विल स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद पीपल, पीपल विल स्टार्ट फीलिंग हैप्पी अबाउट इट, तो इस बारे में भी विचार कीजिए। बहुत खूब
0: जी समीर जी, और एक बात है, एक्चुअली हमारे मुंह में ना मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज हैं
1: जी,
0: वो कुछ नहीं करते, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया अगर बॉडी में देखा जाए तो मुंह में मिलता है, तो लेकिन वो अपना रहते हैं, वो वैसे कुछ, जब हेल्दी कंडीशन हो आदमी का तो वो कुछ नहीं करते, लेकिन ऐसे मैंने जैसे बताया ना कि ड्राइनेस ऑफ द माउथ हुआ, या बहुत ज्यादा स्टिकी कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, या तो कोई और डिजीज कंडीशन हो आपका, जैसे डायबिटीज हुआ, आपका ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं, या तो कोई और हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, तभी वो बैक्टीरिया क्या होते हैं ना, वो काफी एक्टिव हो जाते हैं और तभी वो अपना पैरासाइटिक नेचर दिखाती है, तो उससे हमको बच के रहना चाहिए।
1: वाओ, वेरी वेरी प्रैक्टिकल एडवाइस दोस्तों, बहुत ही ज्यादा यूं कहना चाहिए कि अप्लाइड एक सजेशन, एक सलाह डॉक्टर साहब ने दी है कि इसके बारे में हम अवेयर भी अगर रह लें तो हम काफी कुछ तो इस जंग को जीत ही जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी अभी आपने एक टर्म यूज किया तो मुझे ख्याल आया, जितने भी डायबिटिक लोग हैं, क्योंकि डायबिटीज तो आजकल की डेट में नॉर्मल रूटीन वायरल फीवर जैसा हो गया है, हर दूसरा व्यक्ति डायबिटिक है, तो डायबिटिक जो लोग हैं वो दांतों की समस्याओं से कैसे घिरे हुए होते हैं, या वो ससेप्टेबल ज्यादा क्यों हैं?
0: समीर जी, डायबिटीज में तो आपको पता है कि लोग उनका शुगर बढ़ जाता है, तो जैसे हमारे टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज है, कुछ तो बचपन से भी कई लोगों को है, तो वो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, बट मोस्टली क्या होता है, अभी जो हमारे जो मसूड़ों का जो डिजीज है ना, पेरियोडोंटाइटिस, उसको 6th कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज बोलते हैं। जैसे डायबिटीज के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, जैसे आंखों पे आंखों के नर्व्स डैमेज होना, या तो जनरल न्यूरोपैथी होना, बॉडी के नर्व्स डैमेज हो जाना, या तो किडनी फेलियर हो जाता है, तो बहुत सारे वैसे डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन है, तो इसको जो हमारा जो पेरियोडोंटाइटिस है उसको सिक्स कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज बोलते हैं. जब डायबिटीज होता है तो बॉडी में शुगर होता है, तो वो जो बैक्टीरिया होता है ना उसको वो शुगर मिल जाता है
1: जी.
0: तो वो इतना ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट्स उसको बोलते हैं, तो वो बनता है, जिससे क्या होता है जो हमारा जो कोलेजन मेटाबॉलिज्म होता है, जो हीलिंग कैपेसिटी होता है बॉडी का, वो कम हो जाता है. वो नॉर्मली है, डायबिटीज में हीलिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, इसलिए अब लोग वो डायबिटीज फूट देखते हैं, या तो कोई घाव हो गया वो सूखता नहीं,
1: सूखता नहीं है.
0: सेम थिंग अप्लाइज टू द माउथ ऑल्सो. मुंह में जो मसूड़े हैं, कोई छोटा सा घाव हो गया या तो मसूड़ों की बीमारी शुरू हो रही है, तो वो डायबिटीज की वजह से वो कोलाजन जो फॉर्म करता है ना फिर से, जो हीलिंग करवाता है, वो उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है. तो आपकी हीलिंग कम हो जाती है तो डिजीज प्रोग्रेस करने लगता है, हड्डियां खा जाती हैं. सो द सिंपल केस ऑफ जिंजिवाइटिस गेट्स कन्वर्टेड टू मसूड़ों की सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीज, उसको पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं. और एब्सेसेस होने लगते हैं जिसमें पस जमा हो जाती है, और पेशेंट्स हमारे पास आ जाते हैं कि हमारा मसूड़े, हमारे मसूड़े गम रिसीड हो रहे हैं, हमारा हड्डी खत्म हो रहा है और पस जमने लग रहा है बार बार. सो ये सब कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज के. जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होती है उसके कॉम्प्लिकेशन है, प्लस दोज हु आर क्रॉनिक डायबिटिक्स उनके भी ये कॉम्प्लिकेशन हम लोग देख रहे हैं.
1: ओके ओके. तो दोस्तों आज आपको ये पता चला कि अगर जस्ट इन केस आप डायबिटिक हैं तो ऐसे कोई बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है. जाहिर सी बात है आपके जो फिजिशियन होंगे या जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होंगे जो आपको ट्रीट कर रहे होंगे, उन्होंने तो पहले ही बताया होगा कि आपको आपकी शुगर कंट्रोल रखनी है. तो अगर आपकी शुगर कंट्रोल रही तो दांतों के असर पर भी, दांतों के ऊपर भी असर आपका कम आएगा. लेकिन फिर भी अगर ऐसा आ जाता है तो डॉक्टर गाथा जैसे स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स हैं जो आपको सलाह दे सकते हैं, जो आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं. फिर भी जैसे डॉक्टर गाथा ने बताया, साफ सफाई का, हाइजीन का और अवेयरनेस की सख्त जरूरत है. अगर आपको जरा से भी तकलीफ है तो प्लीज जोर जोर से ब्रश मार के उसको साफ करने की कोशिश ना करें, तुरंत अपने एक्सपर्ट के पास जाएं. कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सपर्ट की सलाह, आफ्टर ऑल इन एक्सपर्ट्स ने, डॉक्टर गाथा जैसे एक्सपर्ट ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई है इसको समझने में, तो उनकी इस एक्सपर्टाइज का फायदा उठाइए. आप अपना दिमाग मत लगाइए, डॉक्टर गाथा के पास जाइए या डॉक्टर इस तरीके के स्पेशलिस्ट के पास जाइए और पूछिए उनसे कि हमें क्या करना है. इट्स सो ईजी. डॉक्टर गाथा थैंक यू सो मच. एक छोटा सा सवाल और, जो दरअसल मुझे ख्याल आ रहा है मेरी माँ को बहुत ज्यादा इस चीज की प्रॉब्लम है. उम्र हो जाती है तो जैसा आपने बताया कि दांत थोड़े से घिस भी जाते हैं, थोड़े से एब्रेशन होके, तो उनके दांत शार्प भी हो जाते हैं, मतलब एजेस आ जाते हैं, तो उनके गाल कटते बहुत हैं, मतलब उनके गाल वो दांतों के बीच में आ जाते हैं और कच्चे से ऐसे खा रही हो कुछ वो कट जाता है, तो ठीक है खून नहीं निकलता लेकिन बहुत दर्द होता है और फिर वो उस तरफ से खाना खा ही नहीं पाती. तो ये क्या चीज है डॉक्टर साहब और इसको इससे कैसे बच सकते हैं?
0: जी समीर जी, इसको एट्रिजन बोलते हैं. ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है. जैसे आप रास्ते पे जा रहे हो, रास्ते पे बहुत गाड़ी चल रही है और एक रास्ता है जहाँ पे कोई गाड़ी नहीं चल रही हो, तो वो रास्ता तो खराब ही होता है ना.
1: जी,
0: तो वैसा ही है, हम लोग जैसे दांत से चबाते हैं तो वही दांत चबाते चबाते घिस जाती है. और कुछ केसेस में ऐसा होता है, कुछ अब नॉर्मल ऑक्लूजन हुआ, जैसे एक दांत मिसिंग हो गया तो आप दूसरा दांत यूज कर रहे हो, तो यू आर कॉम्पेंसेटिंग फॉर दैट. सो उस दांत पे बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है, या तो आपके राइट साइड के कुछ दांत है नहीं, आप खाली लेफ्ट साइड से चबा रहे हो, तो उसको एट्रिजन बोलते हैं. उसमें क्या होता है ना, दांत शार्प हो जाते हैं और फिर ट्रॉमेटिक जो होता है वो ट्रॉमेटिक चिक बाइट होता है, या तो लिप बाइट हो जाता है, या तो आप टंग को चबा रहे हैं, या तो टंग घिसते घिसते वहां पे बार बार लग रहा हो, तो उसके वजह से कुछ एक छोटा सा अल्सर शुरू होता है, फिर आप खाने पीने में प्रॉब्लम हो जाती है. तो इन दोज केसेस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको सिलेक्टिव ग्राइंडिंग करवाते हैं. ग्राइंड करते हैं उसको, एक हमारा एरोटर बर है उसमें हम लोग उसको पॉलिश करके स्मूथ कर देते हैं. सो एज अ रिजल्ट क्या होता है ना, फिर आप नॉर्मली उस प्रोसेस में आप चबाने लगते हैं। कभी कभी ये होता है, ये बार बार होने लगता है, तो भी आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और उसको ग्राइंडिंग करवा लेना चाहिए, क्योंकि एक भी शार्प दांत रहा और अगर आपको ट्रॉमेटिक वैसा बाइट हो रहा है या कहीं पे ट्रॉमा हो रहा है, तो वो अगर लॉन्ग टर्म आप देखा जाए तो कभी कभी वो कैंसरस भी हो जाती है। तो हम लोग उनको एडवाइस करते हैं कि अगर इनिशियल स्टेज में है तो आप ग्राइंडिंग करवाइए, फिर कुछ ऑइंटमेंट डॉक्टर देते हैं उसको लगाइए तो वो ठीक हो जाता है, क्योंकि मुंह के जो घाव है वो बहुत जल्दी भरते हैं। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा निग्लेक्टेड हो, कुछ ना किया जाए, तो फिर वो कैंसरस भी हो सकती है।
1: ओह माय गॉड, आपने बिल्कुल सही बात कही, इस चीज पर भी मेरा बहुत ज्यादा फोकस नहीं था। देखिए दोस्तों, होता यही है, हम विचार ही नहीं करते, हमको लगता है एक छोटी सी प्रॉब्लम है, चलिए इसको रिजॉल्व कर लें। लेकिन वही वाली बात है कि बहुत ज्यादा विचार करके हम टेंशन में भी नहीं जाना चाहते, हम उसको अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, अगर बार बार बार बार गाल कट रहा है, इंजरी हो रही है, तो और वो हील नहीं हो रही, तो फिर वो गलत जगह भी चली जाएगी, कैंसरस भी हो सकती है। तो बहुत आसान सा है ना, हमारे एक्सपर्ट्स पे जाके थोड़ा सा दांत घिसना होगा। डॉक्टर साहब ने उसको टेक्निकल टर्म में बताया, लेकिन मैं बिल्कुल लेमैन में बता रहा हूं कि हमारे दांतों को थोड़ा सा घिस के चिकना बना दिया जाएगा, जिससे कि वो हमारे गालों को ना काटे। सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज है नहीं। बहुत बहुत
0: जी, बहुत जी। आप लोग आजकल बहुत टिश्यू अब्यूज करते हैं, जैसे टोबैको यूज होता है ना,
1: जी, जी, जी।
0: जो पान हुआ, गुटखा हुआ, खैनी हुआ, तंबाकू हुआ, उसके वजह से क्या होता है, बहुत लॉन्ग टर्म यूज जो होता है वो गाल में रखते हैं, वो एक जगह पे चबा नहीं रहे, एक जगह पे रख के बात कर रहे हैं, गालों में दबा के बात कर रहे हैं, तो उससे स्लोली स्लोली जो होता है, हमारी जो म्यूकोजा होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, तो वहां पे शुरू होता है प्री कैंसरस कंडीशन, ल्यूकोप्लेकिया हुआ, या तो मुंह जलने लगता है, तो उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। वो सब साइंस एंड सिम्टम्स होती हैं, जैसे मुंह छोटा हो रहा है, आप चबा नहीं पा रहे, मुंह को फुला नहीं पा रहे हो, तो वो सब थोड़े थोड़े जब अगर सिम्टम्स लगने लगे तो इमिडिएटली आपको जाके दिखाना पड़ेगा, उसको इग्नोर ना किया जाए, और इमिडिएटली जो आप भी टिश्यू अब्यूज कर रहे हो या तो टोबैको अब्यूज कर रहे हैं, उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा, वो जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इसीलिए टोबैको काउंसलिंग सेंटर्स भी है हमारे यहाँ, जहाँ पे हम लोग समझाते हैं लोगों को किस तरह से आपको टोबैको क्विट करना चाहिए और क्यों क्विट करना चाहिए, क्योंकि बॉडी सफिशिएंटली आपको टाइम देती है हील करने के लिए, अगर आप वही टाइम छोड़ देते हैं फिर आगे जाके वो कैंसरस हो जाता है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। ज्यादातर लोगों को, बल्कि मैं कहूँ करीब करीब सभी को ये बात तो पता है कि टबैको च्यूइंग से हम लोगों को, हमारी ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है इस तरीके की बीमारियों की तरफ, लेकिन चलिए ठीक है, वो एक ऐसा नशा है या नशे की जो भी बात है, उसके लिए हम ये प्लेटफॉर्म या ये बात उसके लिए नहीं है कि हम उनको कहें कि आप नशा छोड़िए, लेकिन ये है कि हम ये बता सकते हैं, डॉक्टर गाथा ये बता रही हैं कि इस तरीके की च्यूइंग से ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, ज़्यादा आप तकलीफ में आ सकते हैं। डॉक्टर गाथा थैंक यू सो मच। बस चलते चलते मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, एक जनरलाइज्ड वे में लोगों को अपने डेंटल हेल्थ के बारे में एक संदेश दीजिए प्लीज।
0: जी, मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप अपने दांतों को दो बार ब्रश करिए, हर 3 महीने में आप अपना टूथब्रश जो है उसको चेंज करिए, और टूथब्रश जब आप खरीद रहे हो तो आप देखिए वहां पे लिखा रहता है सॉफ्ट ब्रिसल्ड, मीडियम ब्रिसल्ड और हार्ड ब्रिसल्ड, सो आप सब हमेशा सॉफ्ट ब्रिसल्ड टूथब्रश खरीदेगा। और अपने बच्चों के लिए अगर खरीद रहे हैं जो कि दोज आर विद इन 10 ईयर्स, तो उनके लिए जो पेडियाट्रिक टूथपेस्ट आती हैं तो वो देके खरीद, ना कि उनको जो जनरल सबके लिए जो टूथपेस्ट होता है वो खरीदें, और हमेशा टूथपेस्ट ही खरीदिएगा, टूथ पाउडर मत यूज करिएगा, क्योंकि उसमें ज्यादा एब्रेसिव्स होती हैं। दिन में 2 बार ब्रश करिए, और ब्रश करना 2 मिनट, उससे ज्यादा नहीं, और एकदम सही जो टूथ ब्रशिंग मेथड है वो बास, मॉडिफाइड बास मेथड ऑफ टूथ ब्रशिंग है, वो गूगल में इजीली अवेलेबल है, वो आप वीडियो देख लीजिए, और वो नॉर्मल अगर आपके दांत हैं और मसूड़े हैं तो आप वो यूज करिए। अगर आपके मसूड़े रिसीडेड हैं, जो समीर जी ने मुझे बोला ना, पूछा, तो अगर वो रिसीडिंग गम्स हैं तो उसके लिए मॉडिफाइड स्टिलमेंट्स मेथड है। सो बहुत टाइप के ब्रशिंग मेथड्स हैं, वो फॉलो करिए। और अगर मुंह से थोड़ा सा भी बास आ रहा है तो फिर उसका रीजन क्या है वो पता करिए और अपने डेंटिस्ट से चेकअप करवाइए। या तो माउथ वॉशेस भी हैं, आप उसको भी यूज कर सकती हैं रेगुलरली। आप फ्लॉसिंग भी कर सकती हैं अगर दांत कर सकते हैं, अगर आपके दांतों के अंदर कुछ जम जाता है जो कि टूथब्रश क्लीन नहीं कर पाता, तो आप डेंटल फ्लॉस भी यूज करिए। लेकिन हर 6 महीने में आपको अपने दांतों और मसूड़ों का चेकअप करवा लेना चाहिए।
1: बहुत खूब, बहुत बहुत सुंदर बात डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच।

0: मच आपके वैल्यूबल टाइम के लिए। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है लोगों की आज कई सारी भ्रांतियां, कई मिथ्स, कई कंफ्यूजन्स दूर हुए होंगे। और बस चलते चलते डॉक्टर साहब ने एक बीच में बात कही, मुझे बड़ी अच्छी लगी, बड़ा मजा आया, तो मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। एक कोलगेट का एक टूथ ब्रश आता है विच इज कॉल्ड कार्बन, उसके ब्रिसल्स काले काले हैं, कंप्लीटली ब्लैक, और मैं काफी समय से वो ब्रश यूज कर रहा हूं क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट है। तो दिस इज नॉट एन एडवर्टीजमेंट, ऑलराइट, ये कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा, एक और छोटी सी चीज की, छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए छोटे छोटे ब्रशेस आते हैं, बड़े सॉफ्ट आते हैं। मुझे एक मेरे दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया, तो मैं जाके पर्सनली परचेज करके ले आके आया, और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं छोटा सा ब्रश, छोटे बच्चों वाला, छोटे छोटे ब्रिसल्स, सॉफ्ट सॉफ्ट, और मैं उनसे ब्रश करता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है। तो दोस्तों, इसी तरीके की क्यूट क्यूट चीजें आप इजाद कर सकते हैं, डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, दिल ऑल्सो ट्राई टू हेल्प यू आउट इन एनी वे पॉसिबल। एनीवेज डॉक्टर गाथा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनटू आवर प्रोग्राम, वी आर हाईली हाईली ऑब्लाइज्ड।
1: समीर जी, थैंक यू सो मच, समीर जी, थैंक यू, नमस्ते सभी,
0: नमस्ते मैम।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज। दुनिया में ज्यादातर इंसान मन हारे बैठे रहते हैं कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं तो छोटा आदमी हूं, क्या काम कर पाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ज्ञान नहीं है, क्या कर लूंगा। कई बार तो धनी और ज्ञानी लोग भी अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता जैसे मुहावरों के पीछे छिप जाते हैं। ये सुंदर युवती भी बस यही सोचती थी। दुनिया जब द्वितीय युद्ध लड़ने जा रही थी तब वो क्या कर सकती थी। उसके देश पोलैंड पर जर्मनी और रूस का कब्जा हो चुका था। वो युवती कभी नर्स का काम करती तो कभी नौकरानी। जुल्म के दिन थे, यहूदियों पर तो कहर टूट रहा था, हिटलर की हैवानियत चरम पर थी। ये युवती ईसाई थी पर अपने देश की आजादी की पक्षधर भी थी, तो उसे भी तरह तरह से सताया जाता था। वो बिचारी अपने परिवार से बिछड़ गई, चुपचाप नजरें झुकाए मुंह छिपाए घर से निकला करती थी कि पता नहीं कब कौन सी नई मुसीबत टूट पड़े। सामान्य कद की दुबली पतली मृदुभाषी नीली आंखें और घने सुनहरे बालों वाली यह युवती तमाम झमेलों से बचने के लिए इधर उधर फिरती थी। वो सोचती रहती थी कि ये सोचकर भी वो क्या कर लेगी, किसे बचा लेगी। अक्सर वो आंखें मूंद लेती जैसे ज्यादातर लोग करते हैं, पर एक दिन तो हद ही हो गई। अप्रैल का महीना था, साल 1942। बाजार में कोहराम मचा था, नाजी दरिंदे लोगों को मार रहे थे, एक छोटे से बच्चे को भी उन्होंने उसकी मां से छीन लिया। छीनते ही एक नाजी अफसर ने उसे हवा में उछाल दिया और जमीन पर गिरने से पहले ही गोली मार दी। हैवानियत के बेरहम मंजर में नाजी पागल जानवरों से भी ज्यादा खूंखार नजर आ रहे थे। उनकी रगों में सिर्फ नफरत का सैलाब था जिसमें इंसानियत का नामो निशान नहीं था। ये नाजी भी कभी बेबस शिशु रहे होंगे, उन्हें किसी ने मां की गोद से नहीं छीना होगा ना, उन्हें किसी ने हवा में नहीं फेंका होगा ना, उनके सीने को कोई गोली न पार कर गई होगी। न शिशु से मोह और न ममता की परवाह, न मानवता का लिहाज। क्या नफरत ही दुनिया का मूल स्वभाव है और बाकी धर्मपंथ उसके पीछे पीछे बस घिसटे जा रहे हैं? क्या ईश्वर भी धर्म देखकर बचाव के लिए आगे आता है कभी? क्या ईश्वर भी विधर्मियों को मौत का तमाशा दिखाता है? उस युवती का ईश्वर से यकीन उठने लगा। शायद कोई ईश्वर होता ही नहीं, खुद अपनी मदद के लिए इंसान को सजग रहना पड़ेगा। तब बहुत आसान था तमाशबीन बनकर रह जाना, पर उस युवती ने यह नहीं सोचा कि वो इन दिनों बेघर बेपरिवार नौकरानी है। उसने कहीं सुना था कि किसी इंसान की जान बचाना संसार को बचाने के बराबर है। काश वो भी किसी की जान बचा पाती। चारों तरफ लोग मर रहे थे, जो सिर्फ तमाशा देखने से तो काम नहीं चलेगा, न नींद आएगी न चैन मिलेगा। उन दिनों उस 19-20 बरस की युवती शहर से कुछ दूर एक बड़े से घर में काम करती थी। उसका मालिक एक नाजी अफसर ही था। एक दिन नौकरानी को पता चला कि पास के कारखाने में बंधुआ मजदूरी कर रहे 12 यहूदियों को किसी भी दिन मार दिया जाएगा, तो वो उन सभी को छपाकर साथ ले आई। सभी यहूदी मुंह पर ताले लगाए रात भर उस बड़े घर के तहखाने में छिपे रहते और तभी ऊपर घर में आते थे जब नाजी अफसर काम पर चला जाता था। दिन के समय सारे यहूदी रसोई से सफाई तक मिलकर घर का पूरा काम करते थे और शाम होने से पहले ही तहखाने में कैद हो जाते थे। महीनों बीत गए पर एक दिन भेद खुल गया। युवती नाजी अफसर के पैरों में गिर गई कि मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूं पर किसी की जान मत लो। तब जान बच गई पर कुछ ही दिन बाद सबको लेकर जंगल में छिपना पड़ा। खैर एक दिन युद्ध खत्म हुआ और वो युवती किसी तरह अमेरिका पहुंच गई।
वहां वो संकोची युवती जीवन के नए संघर्ष में खो गई। पर दुनिया में जब यहूदी कुछ संभले, तब उन्होंने अपने मददगारों को याद किया और मददगारों के इतिहास में युवती आइरीन गट ओपडाइक का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। 5 मई को जन्म लेने वाली आइरीन को यहूदियों के देश के सर्वोच्च सम्मान इज़राइल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। उनकी करुण दास्तान वाली पुस्तक इन माय हैंड्स मेमोरीज ऑफ अ होलोकॉस्ट रेस्क्यूअर की लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 30 वर्ष स्कूली बच्चों को अपनी कहानी सुनाते और देशाटन करते हुए बिताए। वो बार बार कहती थी कि राष्ट्रीयता धर्म रंग और पंथ की परवाह किए बिना सबसे लगाव रखिए, हम एक ही परिवार हैं, प्यार करना सीखिए और मौका मिलते ही एक दूसरे की मदद कीजिए, तभी दुनिया रहने लायक होगी। क्या हम कुछ ऐसा सोचते हैं दोस्तों?

मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप हैं जाबुआ के अपने रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर और आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ प्रेरणा

चलिए दोस्तों, आज आपको मिलवाते हैं भावेश चौधरी जी से, जो एक किसान हैं और एक बिजनेसमैन भी। दोस्तों, हिंदुस्तान नौजवानों का देश है। इसकी 65% से ज्यादा आबादी की उम्र 35 साल से कम है। ऐसे में रोजगार देश का सबसे अहम मुद्दा होना चाहिए, और यूं देखें तो है भी। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी यानी कि CSDS ने अपने अभी अभी के सर्वे में इस बात को बताया। इस समस्या से जुड़ी हुई एक हकीकत यह भी है कि देखिए, कोई भी सरकार इतनी विशाल युवा आबादी के लिए सरकारी नौकरियां नहीं रख सकती। हालांकि उनकी आजीविका के उपाय करने का दायित्व उन्हीं का है, फिर भी। लेकिन इस समस्या के हल का एक ठोस रास्ता भावेश चौधरी जैसे युवा दिखा रहे हैं, जो न सिर्फ तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद एक सफल बिजनेसमैन हैं, उद्यमी हैं, बल्कि उन्होंने अपने आसपास के 150 से ज्यादा किसानों की जिंदगी पर भी सकारात्मक असर डाला है। राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक तहसील है सूरजगढ़। इसी के बरेला आसलवास गांव में आज से करीब 25 साल पहले भावेश पैदा हुए। पिता शेर सिंह चौधरी सीमा सुरक्षा बल में जवान थे और गांव में अपनी खेतीबाड़ी भी थी, इसलिए भावेश का बचपन कभी किसी अभाव में गुजरा नहीं। गांव के तमाम बच्चों की तरह स्थानीय स्कूल में ही पढ़ाई लिखाई हुई, पर स्कूल में कभी उनका दिल लगा नहीं। चार भाई बहनों में दूसरे भावेश यही देखते हुए सयाने हुए कि उनके गांव के लड़के, बल्कि अब तो लड़कियां भी, एक ही लक्ष्य रखते थे, फौज या पुलिस में कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। पिता शेर सिंह कभी कभी बेटे को अपनी पोस्टिंग वाली जगह पर ले जाते थे, जहां उनको तरह तरह के आदेशों का पालन करते देखकर, काफी तनाव में भी ड्यूटी निभाते देखकर भावेश का बालक मन नौकरी से तो हट गया। हालांकि परिवार और खुद पिता की यही इच्छा थी कि वो गांव के दूसरे बच्चों की तरह फौज में जाएं या पुलिस में जाएं, लेकिन भावेश ने कोई लक्ष्य नहीं बनाया। वो बस कक्षाएं पास करते रहे और बढ़ते रहे। 12वीं का इम्तिहान पास करने के बाद पहली बार लक्ष्य संबंधी सवाल ने उन्हें परेशान किया कि अब क्या करोगे। जाहिर है, जब शहरी इलाकों में ही किशोरों की अभिरुचि जांचने परखने और उन्हें उनकी पसंद के क्षेत्र में दक्ष बनाने के सारी कोशिशें बेकार हो रही थीं, तो बरेला आसलवास के युवाओं की भला कौन सुध लेता। आगे पढ़ने की इच्छा बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन परिवार के दबाव में उन्होंने BSc में दाखिला ले लिया। पढ़ाई करते हुए सरकारी नौकरियों की कई परीक्षाएं दी, लेकिन किसी में कामयाबी नहीं मिली। उस दौरान उनके कई दोस्त सरकारी मुलाजिम हो गए, परिजनों और पड़ोसियों के व्यंग का सिलसिला शुरू हो गया। मगर भावेश के दिमाग में ये बात साफ हो चुकी थी कि दूसरों के हुक्म मानने वाली नौकरी उनको नहीं करनी है, और आदेश देने वाली कोई नौकरी उनको मिलने से रही तो उन्होंने कॉलेज के सेकेंड ईयर में ही पढ़ाई छोड़ दी और परिवार को ऐलान कर दिया कि वो अपना कोई काम करेंगे। परिवार वालों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। पिता तो खैर नाराज थे ही। भावेश को अब अक्सर सुनना पड़ता

ये किसी काम का नहीं है। इसे जायदाद से बेदखल कर दो, वरना घर जमीन सब बेचकर खा जाएगा। ऐसे निठल्ले को कौन अपनी बेटी देगा? हरियाणा राजस्थान के इस इलाके की एक निर्मम सच्चाई ये भी है कि जिन युवाओं के पास सरकारी या मोटी पगार वाली निजी नौकरी नहीं है, जिनके पास जमा जमाया कारोबार नहीं है, उनकी शादियां ही नहीं होती। पिता के दबाव के आगे घुटने टेकते हुए भावेश ने पड़ोस के शहर लोहारू में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला तो ले लिया, मगर उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो अंग्रेजी माध्यम में थी और भावेश को अब तक पूरी पढ़ाई हिंदी में ही करनी हुई थी। एक महीने में ही उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ दिया। सवाल था, अब क्या करें? अब जो कुछ भी करना था अपने भरोसे करना था। भावेश को याद आया कि जब वो हॉस्टल में रहते थे, तब उनके शहरी सहपाठी और कॉलेज शिक्षक उनसे मां के हाथों बना देसी घी लाने की फरमाइश किया करते थे, और जब वो घी लेकर जाते तो वो सभी स्थानीय भाव के अनुसार उन्हें पैसे दे देते थे। भावेश ने देसी घी का अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला ले लिया। साल 2019 की बात है। अपने दो तीन दोस्तों से उन्होंने कर्ज के तौर पर 30,000 रुपए जुटाए और इस रकम से एक वेबसाइट बनाई, मगर इस पर किस तरह की मार्केटिंग करनी है यह उन्हें आता नहीं था। उनका सारा निवेश बेकार चला गया। भावेश को थोड़ी निराशा हुई, पर उन्होंने हार नहीं मानी। YouTube पर देसी घी खाने के फायदे के बारे में वीडियोस देखे, उनमें नीचे टिप्पणी करने वालों से उन्होंने बातचीत करनी शुरू की, और फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए मां से मिले 3,000 रुपए से नई शुरुआत की। सितंबर 2019 में वो मुबारक दिन आया जब बिहार के भागलपुर से उन्हें पहला ऑर्डर मिला। 1,125 रुपए का ये भुगतान भावेश जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। काम बढ़ा, कमाई बढ़ी, तो अपनों का भरोसा भी आ गया। फिर पिता के सहयोग से गायों की तादाद भी बढ़ा ली, गौशाला का विकास हो गया। फिर उन्होंने आसपास के छोटे छोटे 150 देसी गाय पालकों और दूध उत्पादकों को भी अपने साथ जोड़ लिया। भावेश आज सालाना करीब 8 करोड़ रुपए का देसी घी का कारोबार कर रहे हैं। अपनी सरकारी मुलाजिम दोनों बहनों को वो मजाक में छेड़ते हैं, सरकार तुमको जितनी तनख्वाहें देती है ना, उससे ज्यादा तो हम GST चुकाते हैं। बकौल भावेश, बेरोजगारी का हल सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है, ये बात परिवारों को भी समझने की जरूरत है।

रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम आपके झाबुआ की आवाज पर। आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ प्रेरणादायक गीत।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: टीचर ने कहा, होमवर्क क्यों नहीं किया? स्टूडेंट, सर लाइट नहीं थी। टीचर ने कहा, तो मोमबत्ती जला लेते। स्टूडेंट, सर माचिस नहीं थी। टीचर ने कहा, अबे माचिस क्यों नहीं थी? स्टूडेंट, पूजा घर में रखी थी। टीचर, तो वहां से ले आते। स्टूडेंट, नहाया हुआ नहीं था ना। टीचर, नहाए हुए क्यों नहीं थे? स्टूडेंट, पानी नहीं था ना सर। टीचर, पानी क्यों नहीं था? स्टूडेंट, सर मोटर नहीं चल रही थी। टीचर, अब मोटर क्यों नहीं चल रही थी? स्टूडेंट, बताया तो सर लाइट नहीं थी ना।
2: वो समय बच्चों को अच्छी अच्छी जगहों पर ले जाने, कुछ नया दिखाने और सिखाने का दौर था। मौका मिलते ही बच्चों को साथ लेकर किसी मॉल में दिखावे का चलन नहीं था। ज्यादातर पिता बच्चों को किसी ऐसी जगह ले जाते थे जहां बच्चों का मन सकारात्मक विकसित हो। तो इसी मकसद से ऑस्ट्रेलिया के वो पिता भी अपने 13 साल के छोटे पुत्र को लेकर सिडनी पहुंचे। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, एक बेहतरीन मैदान, क्रिकेट का अद्भुत सुंदर गढ़। 25 फरवरी का ही दिन था। गुनगुनी धूप में गुलाबी ठंड लिए हवा बार बार सहलाए जा रही थी। प्रसिद्ध एशेज श्रृंखला का 5वां टेस्ट खेला जा रहा था। इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी कर रही थी और मैदान में ऑस्ट्रेलियाई टीम के तमाम दिग्गज क्षेत्र रक्षण करते हुए नजर आ रहे थे। वो बच्चा अचंभित था। वहां क्रिकेट के साथ बहुत कुछ था। कहीं ठहाके, कहीं शोर, कहीं अपने प्यारे खिलाड़ियों से सीधे संवाद की कोशिश, कभी नारे, कभी जय जयकार। कोई गेंदबाजों से विकेट गिराने की मांग कर रहा था, तो कोई चौके की तमन्ना लिए बल्लेबाजों को ललकार रहा था। कहीं से संगीत की लहरियां उठ रही थीं, तो कहीं से पकवानों की खुशबुएं। स्थानीय टीम अच्छा खेल रही थी, तो सबके चेहरे खिले हुए थे। पहले विश्व युद्ध के बाद का वो माहौल ऐसा था मानो विशाल महोत्सव चल रहा हो। वैसे उस सजग बच्चे को एहसास था कि ये पूरा मेला मजमा अच्छी क्रिकेट देखने के लिए ही लगा है। अच्छी क्रिकेट मतलब अच्छे खिलाड़ी, जिनका नाम सुनकर लोग दूर दूर से चले आते हैं। दूसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ, तब उस लड़के के सबसे प्रिय खिलाड़ी जॉन टेलर बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि टेलर ज्यादा नहीं चले, मगर दूसरी छोर पर चार्ल्स मैकार्टनी को रोकना मुश्किल था। अंग्रेज गेंदबाजों की तो खैर नहीं थी। मैकार्टनी ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे कि लोगों को बाकी नजारे देखने का मौका ही नहीं मिल रहा था। उस लड़के ने महसूस किया कि अच्छा खेलना कितना जरूरी है। जब कोई अच्छा खेलता है तो तमाम लोगों की नजरें उसी पर टिक जाती हैं। मैकार्टनी ने 50 रन पूरे किए, 100 रन पूरे किए, 150 रन भी पार कर गए। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। सबकी जबान पर एक ही नाम था, मैकार्टनी। खैर, जब मैकार्टनी का विकेट गिरा, तब उनके खाते में 170 रन जुड़ चुके थे, जिसमें 20 तो चौके थे। तब छक्कों का जमाना नहीं था। खिलाड़ी बहुत ही अनुशासन के साथ जमीनी खेल में विश्वास रखते थे और मैकार्टनी का खेल इस विश्वास का भरपूर झलक था। उस दिन का खेल जब खत्म हुआ तो उस लड़के का मन ना हुआ लौटने का। पिता खड़े हो गए कि चलो आज घर लौटना है, हम 25 और 26 फरवरी का मैच देखने के लिए ही आए थे, कल 27 को मैच का रेस्ट डे है। पर स्टेडियम से लौटने का मन ही नहीं कर रहा था उसका। पता नहीं फिर कब ऐसा मैदान और शानदार खेल देखने को मिलेगा। फिर मन में आया कि काश ऐसे मैदान में खेलने का मौका मिल जाए, लोग देखने आते, तालियां बजाते। लड़के ने पूरी दृढ़ता के साथ पिता को कहा, पापा एक दिन जरूर मैं इस मैदान में खेलूंगा। हंसमुख पिता मुस्कुरा कर रह गए। वो अपने लड़के को जानते थे, जो अच्छी टेनिस रग्बी खेलता था और कभी कभी क्रिकेट भी। खैर, सिडनी से लौटकर वो बच्चा घर पर एक जगह दीवार के सहारे अकेले घंटों अभ्यास करने लगा। हाथ में बल्ले की जगह विकेट का एक डंडा होता था और टेनिस बॉल सामने दीवार पर टकराकर बार बार कूदती आती थी और तब एक डंडा ही बल्ला बन जाता था। उस दिन मैकार्टनी का खेल देखकर ही मन में ये बात बैठ गई थी कि खेलो तो ऐसा तेज खेलो कि लोग लगातार निहारते सहारते ही रह जाएं। लड़के ने अपना पूरा ध्यान क्रिकेट पर लगा दिया कि एक दिन सिडनी के मैदान पर खेलना है। बस 6 साल लग गए और वो राष्ट्रीय टीम में शामिल कर लिया गया। बस एक पहला मैच अच्छा नहीं बीता, पर उसके बाद तो दुनिया जान गई कि डॉन ब्रैडमैन नाम के एक बल्लेबाज ने दुनिया के तमाम गेंदबाजों के लिए काल की तरह अवतार लिया है। ब्रैडमैन 1908 से 2001 तक अपने बल्लों से रनों के जो पहाड़ बनाते गए, उनमें से कुछ पर पता नहीं कोई चढ़ पाएगा या नहीं। वो 25 फरवरी को ही दुनिया से विदा हुए थे। वो बार बार प्रेरित करते थे कि जब ठान लो तो करके दिखाओ, लगन और मेहनत से सब संभव है। वो कहते थे कि मैं कभी भी प्रशिक्षित नहीं हुआ हूं और ना ही मुझे कभी बताया गया कि बल्ला कैसे थामा जाता है। तो दोस्तों, ये हुई प्रतिभा डॉन ब्रैडमैन की।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी

आधुनिक व्यवस्था में यानी कि मॉडर्न सोसाइटी में ये कहा जाता है कि बच्चों का ध्यान बड़ी आराम से बड़ी सरलता से थक जाता है और उन्हें एक ही विषय को लंबे समय तक पढ़ने के लिए नहीं कहना चाहिए। विषय बदलते रहने से उनके दिमाग को आराम मिलता है ऐसा माना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मॉडर्न सोसाइटी या आधुनिक युग इसके बच्चे पुराने लोगों से अलग हो चले हैं क्या? और यदि ऐसा हो गया है तो लंबे समय तक ध्यान केंद्रित रखने के लिए हमने ही शायद उन्हें निराश कर दिया है। क्यों? हम बच्चों के पाठों को, उनके सब्जेक्ट्स को, उनके लेसन्स को बहुत बोरिंग, बहुत नीरस बना देते हैं और जब बच्चा उनसे भागता है तो जबरदस्ती उसे पढ़ाने बैठा देते हैं और फिर कहते हैं कि जी ध्यान नहीं दे पा रहा है, इसकी शिकायतें करने लगते हैं। कदम ब कदम उसे आगे बढ़ाते चलना और जैसे जैसे अगला कदम आए उसमें उसकी रुचि उत्पन्न करना और उसे कॉन्फिडेंस देना, उसे आत्मविश्वास देना, जब तक कि अपने विषय में उसे दक्षता हासिल ना हो जाए, यही तो तरीका है ना शिक्षा देने का। यूं देखा जाए तो मातृभाषा ही शिक्षा का सबसे उचित माध्यम है। मातृभाषा मतलब जिसमें हम बोलते हैं, इसलिए बच्चे को प्राथमिक शक्तियां इसी माध्यम में पूरी दक्षता पाने की ओर लगानी चाहिए। अक्सर हर बच्चे में एक कल्पना होती है, शब्दों के लिए, वाक्यों के लिए, बातचीत के लिए एक सहज व्यवहार होता है, एक नाटकीय क्षमता, विचार व तरंग की एक संपत्ति होती है। नीरस हिज्जे और किताबों के पठन पाठन के बजाय उसका परिचय अपने साहित्य और उसके आसपास और पीछे के जीवन के सबसे रोचक अंशों से हमें कराना चाहिए और उन्हें इस ढंग से उसके सामने रखना चाहिए जिससे कि वो उन गुणों के लिए आकर्षित हो, प्रभावित हो, उसे पता चले कि ऐसा होता क्यों है। इस अवधि में बाकी सारी पढ़ाइयां, शिक्षाएं मानसिक क्रियाओं और नैतिक चरित्र की पूर्णता प्रदान करने वाली होनी चाहिए। इसी समय इतिहास, विज्ञान, दर्शन और कला के अध्ययन की नींव भी डालनी चाहिए, लेकिन जबरदस्ती नहीं और औपचारिक तरीके से नहीं। यहां एक विचार मेरे मन में आ रहा है, आजकल ज्यादा से ज्यादा बच्चे कंप्यूटर साइंसेज और टेक्निकल पढ़ाइयों में ही लगे हैं, जैसे सारा विश्व बस इन्हीं से चलता है, इन्हीं से चलने वाला है। जब कंप्यूटर साइंसेज और इस तरह की टेक्निकल शिक्षाओं के चलते लोग अपने आप से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से आपस में मिलना जुलना ही बंद कर देंगे तो ऐसे संसार का करेंगे क्या? मेरा सुझाव है, मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी टेक्निकल पढ़ाइयों के साथ साथ एक विषय, एक सब्जेक्ट ऐसा भी होना चाहिए जो आपस में एक दूसरे के प्रति संभाव को भी सिखाए। एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे के प्रति मानवीय व्यवहार सिखाए। कोई भी एक सब्जेक्ट, इतिहास, कला, दर्शन से संबंधित हर कोर्स में जरूरी होना चाहिए, सिर्फ पास करने के लिए नहीं, सिर्फ क्वालिफाई होने के लिए नहीं, बल्कि सचमुच पढ़ने के लिए। तब मेरा मानना है कि बच्चे का या किसी भी विद्यार्थी का पूरा विकास तभी होगा।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

0: छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई।
1: 70 और 80 के दशक में जब LP कहा जाता था तो उसे लॉन्ग प्लेयर रिकॉर्ड्स के साथ साथ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी समझा जाता था। इसका एक सीधा मतलब ये भी है कि उस दौर में ज्यादातर फिल्मों के जो लॉन्ग प्लेयर रिकॉर्ड्स निकलते थे उनमें से बहुतायत LP पर बतौर संगीतकार मौजूद होते थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लक्ष्मीकांत कोड़ालकर और प्यारेलाल राम प्रसाद शर्मा ने मिलकर संगीत के जिस

बारे में तो कोई शक ही नहीं किया जा सकता कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी शायद अकेली ऐसी जोड़ी रही है जिसने लोकप्रियता के मामले में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जहां अपने आरंभिक दिनों में शंकर जयकिशन की धुनों से प्रभावित थे, वहीं उन्होंने स्वतंत्र संगीतकार के रूप में कार्य करने से पहले कुछ दिनों तक कल्याण जी आनंद जी के सहायक के तौर पर काम किया।

स्वतंत्र रूप से संगीतकार बनने से पहले दोनों फनकार दूसरे बड़े संगीत निर्माताओं के लिए साज बजाया करते थे। आइए सुनते हैं उनका ये गीत।

लक्ष्मीकांत एक बेहतरीन मैंडोलिन वादक थे, जबकि प्यारे लाल जुबिन मेहता से बुरी तरह से प्रेरित होकर वियना जाकर एक वायलिन वादक का करियर चुनने का मन बना चुके थे। हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में बनी नागिन के गीत जादूगर सैया, छोड़ मेरी बैया और सचिन देव बर्मन की लाजवंती के कोई आया धड़कन कहती है मैं लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन बजाया था। आइए सुनते हैं उनका बनाया हुआ ये गीत।

कहा जाता है कि प्यारे लाल से अच्छा म्यूजिक अरेंजर फिल्म इंडस्ट्री में हुआ ही नहीं। गौरतलब बात है कि प्यारे लाल के पिता राम प्रसाद एक बेहतरीन वायलिन कलाकार थे, जिनसे कल्याण जी, राजेश रोशन और हृदयनाथ मंगेशकर भी वायलिन और वेस्टर्न म्यूजिक के नोटेशंस सीखने जाते थे। इस तरह हम कह सकते हैं कि वाद्यों को सजाने की सर्वाधिक रचनात्मक शैली LP की बनाई धुनों में सबसे ज्यादा दिखाई देती है। आइए सुनते हैं उनका बनाया ये गीत।

0: यह कहा जाता है कि जब सारे दिग्गज संगीत निर्माता 60 के दशक के बाद में बेहद सफल तरीके से रुपहले पर्दे पर सक्रिय थे, तब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को शुरुआती काम दिलाने और स्वतंत्र संगीतकार के रूप में स्थापित करने में मदद करने के लिए लता मंगेशकर ने अहम भूमिका निभाई। चलिए सुनते हैं उनका ये गीत।
1: अपनों की

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बहुत सारी फिल्मों में संगीत दिया, जैसे आसरा, आए दिन बहार के, प्यार किए जा, अनीता, फर्ज, मिलन, पत्थर के सनम, शागिर्द, नाइट इन लंदन, बहारों की मंजिल और बहुत सारी दूसरी फिल्में। चलिए दोस्तों, सुनते हैं उनकी फिल्म का एक और गीत।

पियानो, एकॉर्डियन, मैंडोलिन, ऑर्गन, सैक्सोफोन, ट्रम्पेट, हारमोनियम, कॉन्गो, बोंगो, वायलिन, गिटार के साथ साथ सितार, सारंगी, सरो, तबला, ढोलक, नाल, इन सभी का सफलतापूर्वक निर्वाह करते हुए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अपनी तर्जों को सजाने में लगे रहते। सैकड़ों फिल्मों के अत्यंत मनोग्राही संगीत से अलग उनको कुछ नया रचने में बहुत मजा आता था। आइए दोस्तों, सुनते हैं उनका ये गीत।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर, बने रहिए मेरे साथ इस प्रोग्राम आज के कलाकार में।
1: दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना कोई।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के फनकार हैं मदन मोहन जी, जो हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं, म्यूजिक डायरेक्टर। अपनी गजलों के लिए प्रसिद्ध इस संगीतकार का पूरा नाम मदन मोहन कोहली था। आइए दोस्तों इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं मदन मोहन जी के बनाए हुए इस गीत से।

मदन मोहन जी का जन्म 25 जून 1924 को बगदाद में हुआ था। इनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल इराकी पुलिस बलों के साथ महालेखाकार के रूप में काम कर रहे थे। मदन मोहन ने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्ष मध्य पूर्व में बिताए थे।

उनका परिवार अपने गृह शहर चकवाल फिर पंजाब प्रांत पाकिस्तान झेलम जिले में लौट आया। उन्हें एक दादा दादी की देखभाल में छोड़ दिया गया जबकि उनके पिता व्यवसाय के अवसरों की तलाश में बॉम्बे आए। उन्होंने अगले कुछ वर्षों तक लाहौर के स्थानीय स्कूल में पढ़ाई की।

लाहौर में रहने के दौरान उन्होंने बहुत कम समय के लिए एक करतार सिंह से शास्त्रीय संगीत की मूल बातें सीखी। हालांकि संगीत में उन्हें कोई खास प्रशिक्षण नहीं मिला। कुछ समय बाद उनका परिवार मुंबई आ गया। मुंबई में 11 साल की उम्र में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित बच्चों के कार्यक्रमों में प्रदर्शन करना शुरू किया। आइए सुनते हैं उनके द्वारा बनाया हुआ ये गीत।

सन 1943 में वो सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में शामिल हुए। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक 2 साल तक वहां सर्विस की, फिर सेना छोड़ दी और अपने संगीत हितों को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई लौटे। आइए सुने उनका ये गीत।

1946 में वो ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में कार्यक्रम सहायक के रूप में शामिल हुए। वहां वो उस्ताद फैयाज खान, उस्ताद अली अकबर खान, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसे विभिन्न कलाकारों के संपर्क में आए। इन दिनों के दौरान वो ऑल इंडिया रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होने वाले कार्यक्रमों के लिए संगीत बनाते थे। चलिए दोस्तों, सुने उनका ये गीत।

संगीतकार मदन मोहन के मामले में संगीतकार खय्याम साहब का कहना है कि वो संगीत के बेताज बादशाह थे। संगीत की जितनी विविधताएं होती हैं उन्हें उनका गहरा ज्ञान था। हालांकि कोई औपचारिक प्रशिक्षण उन्होंने कभी नहीं लिया। 1947 में उन्हें ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया गया, जहां उन्होंने छोटी सी अवधि के लिए ही काम किया। 1948 में उन्हें फिल्म शहीद के लिए संगीतकार गुलाम हैदर के तहत लता मंगेशकर के साथ फिल्म युगल पिंजरे में बुलबुल बोले और मेरा छोटा दिल डोले गाने का पहला मौका मिला। बस फिर क्या था, मदन मोहन जी की किस्मत बदल गई। आइए सुने उनका ये गीत।

1946 और 1948 के बीच उन्होंने संगीतकार एस डी बर्मन को दो भाई के लिए और श्याम सुंदर को एक्ट्रेस के लिए संगीत सहायक की भूमिका भी निभाई। चलिए दोस्तों सुने उनकी फिल्म का ये गीत।

खाली जाम ले बैठा हूँ, कब से इस मैखाने कोई तो होगा मेरा साथी, कोई तो प्यास बुझाएगा, कभी न कभी

ना दिल का पैगाम सुना, मुझको बस आवारा समझा जिसने मेरा नाम सुना। अब तो सबने ठुकराया, कोई तो पास बिठा।

कौन ये जाने कब मिल जाए, रास्ते में हम रात कोई, मेरे दिल का दर्द समझ कर दो आंसू तो

आवाज कोई, कौन ये जाने कब मिल जाए। रास्ते में हम रात कोई, मेरे दिल का दर्द समझ कर

जो मिल गया है तेरा सहारा। एक नई जिंदगी का निशान हो तो ये लगता है।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दोस्तों, आप हैं आप ही के दोस्त समीर के साथ 90.8 FM रेडियो टांटिया भील आपके झाबुआ की आवाज पर। तो दोस्तों, लीजिए शुरू करते हैं गजलों का ये महकता हुआ प्रोग्राम आज शाम

0: गजलों के साथ के प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे प्रोग्राम में जो शायरा हमारे साथ हैं, उनका नाम है रमा प्रवीर वर्मा जी। रमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी, आपको मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ।
0: बहुत बहुत शुक्रिया रमा जी। रमा जी, प्रोग्राम को शुरू करता हूँ और आपसे गुजारिश करूंगा कि अपना परिचय दें, जिससे कि श्रोता ये सुनने वाले आपको थोड़ा सा जान सकें।
1: जी जी जी, मैं नागपुर से रमा प्रवीर वर्मा बोल रही हूँ जी। लिखने में वैसे तो सभी कुछ लिखती हूँ, पर गजल मेरा पसंदीदा विषय है।
0: बहुत बढ़िया रमा जी, थैंक यू सो मच। नागपुर वैसे भी संस्कृति का भरा हुआ केंद्र है, जहां पर संस्कृति आज भी पूरे हिंदुस्तान भर के लिए रेडिएट होती है। वहां से तमाम लोग, तमाम लेखक, तमाम बुद्धिजीवी पूरे दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को प्रोत्साहित करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रमा जी। तो रमा जी, प्रोग्राम को शुरू करते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी पहली गजल मुझे और हमारे सुनने वालों को सुनाएं।
1: जी जी, अपनी एक गजल मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, तहत में पढ़ के सुनाऊंगी। तो गजल का मतलब कुछ ऐसे है कि वक्त के सांचे में ढलती जा रही है जिंदगी, वक्त के सांचे में ढलती जा रही है जिंदगी, रफ्तार रफ्तार यूं निकलती जा रही है जिंदगी, वक्त के सांचे में ढलती जा रही है जिंदगी, रफ्तार रफ्तार यूं निकलती जा रही है जिंदगी। और शेर देखिएगा कि चाहती तो हूँ बहुत के रोक लूं इसको मगर, चाहती तो हूँ बहुत के रोक लूं इसको मगर, रेत की मानिंद फिसलती जा रही है जिंदगी, रेत की मानिंद फिसलती जा रही है जिंदगी। और ये कुछ भी नहीं, और ये कुछ भी नहीं, मिट्टी का बस एक ढेर है, और ये कुछ भी नहीं, मिट्टी का बस एक ढेर है, आज बनती कल पिघलती जा रही है जिंदगी, और ये कुछ भी नहीं, मिट्टी का बस एक ढेर है, आज बनती कल पिघलती जा रही है जिंदगी। और बारहा करके बहाना मौत का ये बेवफा, बारहा करके बहाना मौत का ये बेवफा, जिस्म भी अपना बदलती जा रही है जिंदगी, बारहा करके बहाना मौत का ये बेवफा, जिस्म भी अपना बदलती जा रही है जिंदगी। और बचपना जिंदा है शायद आज भी मुझ में कहीं, बचपना जिंदा है शायद आज भी मुझ में कहीं, इसलिए पल पल मचलती जा रही है जिंदगी, बचपना जिंदा है शायद आज भी मुझ में कहीं, इसलिए पल पल मचलती जा रही है जिंदगी। और बाप के कंधे पे जिम्मेदारियों का बोझ बन
0: जी,
1: बाप के कंधे पे जिम्मेदारियों का बोझ बन, उम्र के साए में पलती जा रही है जिंदगी, उम्र के साए में पलती जा रही है जिंदगी। और मक्ता रखती हूँ
0: इरशाद
1: कि उम्र अब कच्ची नहीं कि बहक जाएगी रमा, उम्र अब कच्ची नहीं कि बहक जाएगी रमा, अपनी अना के साथ चलती जा रही है जिंदगी, अपनी अना के साथ चलती जा रही है जिंदगी, वक्त के सांचे में ढलती जा रही है जिंदगी, और रफ्तार रफ्तार यूं निकलती जा रही है जिंदगी, रफ्तार रफ्तार यूं निकलती जा रही है जिंदगी।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बेहतरीन गजल, बहुत ही खूब।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: लफ्जों का बहुत सटीक इस्तेमाल अपनी भावनाओं को बताने के लिए रमा जी, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि इतनी प्यारी गजल आपने हमारे श्रोताओं को सुनाई।
1: जी बहुत शुक्रिया।
0: तो रमा जी, आगे मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने पसंदीदा गजल गायकों में से किसी की एक गजल हमें बताएं जो हम अपने श्रोताओं को सुना सकें।
1: जी जी, मेरे सबसे पसंदीदा गायक जगजीत सिंह जी हैं। तो उनकी एक नज्म है, ये सुदर्शन फाकिर जी द्वारा लिखी गई है।
0: जी
1: उस मोड़ से शुरू करें फिर से ये जिंदगी। तो अगर आप ये सुना सकते हैं।
0: बेहतरीन गजल, बेहतरीन गजल, बिल्कुल। आइए दोस्तों, रमा जी की फरमाइश पर जगजीत सिंह की गाई हुई ये प्यारी सी गजल सुनते हैं।

0: बहुत ही प्यारी गजल। रमा जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बचपन में क्या बनना चाहते थे?
1: बचपन में ऐसा तो कोई खास सपना नहीं था, लेकिन हमेशा से हिंदी साहित्य और अपनी भाषा के प्रति एक बहुत ही गहरा लगाव था। कविताएं तो मैं बचपन से ही लिखती थी, और जब स्कूल में थी ना तो तब ये सोचती थी कि कुछ ऐसी बनूं कि मेरी बात सब सुने। जैसे शिक्षक को देखती थी सामने खड़े होकर पढ़ाते थे, तो मुझे भी लगता था कि मैं शिक्षक बनूं, तो मैं सामने खड़ी होकर पढ़ाऊंगी तो सारे बच्चे सुनेंगे मुझे
0: जी।
1: और जब किसी को मंच पर बोलते हुए सुनती थी तो लगता था कि काश मैं भी मंच पर जाकर अपने भाव व्यक्त करूं, पर वो सब

अब खिली हर कली को बचाया करो। जिंदगी कहकशों की कहानी नहीं, जिंदगी कहकशों की कहानी नहीं, खूब शिद्दत से इसको बिताया करो। और मकता है कि ख्वाब बेशक खरीदेंगे हम भी रमा, ख्वाब

0: करूं। शुक्रिया।
1: बहुत खूब बहुत खूब, बेहतरीन बेहतरीन गजल।
0: मैं दिल से शुक्रिया समीर जी।
1: कई बार रमा जी मेरी इच्छा हुई बीच में तारीफ करने की, लेकिन मैं सुनने में इतना ज्यादा व्यस्त था, मुझे लगा कि कोई एक लफ्ज भी मिस ना हो जाए मेरे से, तो इसलिए मैं चुपचाप सुनता रहा।
0: धन्यवाद। बहुत शुक्रिया समीर जी।
1: बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत बेहतरीन। तो रमा जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने पसंदीदा गजल गायकों में से किसी गजल गायक की हमें कोई गजल बताएं।
0: जी, जिगर मुरादाबादी की एक गजल है कि आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है।
1: जी,
0: तो ये अगर आप श्रोताओं को सुना सके।
1: और गायक कौन है?
0: गायक है उस्ताद नुसरत फतह अली खान।
1: जी, बेहतर है। आइए दोस्तों, सुनते हैं रमा जी की फरमाइश पर ये प्यारी सी गजल।

0: बेहतरीन गजल। तो आगे बढ़ते हुए रामा जी, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा कि आपका सबसे पसंदीदा गजल गायक कौन है?
1: जी जी, अभी जैसे मैंने बताया भी था कि मुझे सबसे पसंदीदा गायक मेरे जगदीश सिंह जी हैं।
0: जी,
1: उनकी आवाज में एक अलग ही सुकून और गहराई है। जब मैं उनकी सुनती हूँ गजलें तो बिल्कुल डूब जाती हूँ
0: जी।
1: वो जब बिल्कुल दिल को छूती हुई उनकी आवाज है, उनकी हर एक शब्द हर एक सुर ऐसे लगते हैं जैसे दिल की गहराइयों से निकले हैं।
0: जी,
1: तो जब कभी अकेली होती हूँ तो मैं उनकी गजलें सुनती हूँ तो बिल्कुल उसमें खो जाती हूँ, और उनकी हर गजलें बहुत मुझे बहुत अच्छी लगती है। पर जिसकी मैंने फरमाइश की थी वो मुझे बहुत ही पसंद आती है, उसको मैं प्रायः दिन में हमेशा ही सुनती हूँ। लगता है जिन पलों को हम पीछे छोड़ आए हैं उनको फिर से जी लें, काश हम उनको फिर से जी पाते हैं।
0: बहुत
1: ये लगता है मुझे उनकी सुनते हुए।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। यही वजह है कि जगजीत सिंह साहब को गजल सम्राट का भी खिताब दिया गया, बेहतरीन।
1: जी जी।
0: तो रमा जी, आगे बढ़ते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी गजल हमको और हमारे सुनने वालों को सुनाएं।
1: तो एक गजल है जिसका मतलब है कि कभी हमको रुलाएगा

तलक बैरी जमाना आजमाएगा। और यहाँ हासिल नहीं होता सफर आसान सबको ही, यहाँ हासिल नहीं होता सफर आसान सबको ही।

0: आएगी, कभी रास्ता रुलाएगा। और शेर देखिएगा कि
1: इरशाद।
0: जहां हम रोशनी करने की खातिर खुद ही जलते हैं, जहां हम रोशनी करने की खातिर खुद ही जलते हैं, अंधेरा अब वहां कैसे हमें आंखें दिखाएगा, अंधेरा अब वहां कैसे हमें आंखें दिखाएगा। और जिस

पर गुनाहों से अगर रिश्ता नहीं वह तोड़ पाया तो, गुनाहों से अगर रिश्ता नहीं वह तोड़ पाया तो खुदा से किस तरह जाकर

0: और मक्का रखती हूँ कि रमा अनमोल है, हर पल इन्हें खोना नहीं यूं ही। रमा अनमोल है, हर पल इन्हें खोना नहीं यूं ही। गुजरता वक्त हमको जिसकी कीमत बताएगा, गुजरता वक्त हमको जिसकी कीमत बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत खूब, बहुत खूब, बेहतरीन बेहतरीन गजल सुन के लुत्फ आ गया साहब। बहुत खूब, बहुत खूब रमा
0: जी
1: जी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी, धन्यवाद।
1: रमा जी, आगे बढ़ते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने ही पसंद के किसी गजल गायक की एक और गजल हमें बताएं जो हम अपने श्रोताओं को सुनवा सकें।
0: जी, अल्लामा इकबाल साहब की ये गजल है कि सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तहां और भी है। तो
1: क्या बात है,
0: अगर ये आप सुनवा सके तो।
1: बेहतरीन बेहतरीन गजल। आइए दोस्तों, सुनते हैं रमा जी की फरमाइश पर, रमा जी के हुक्म पर ये प्यारी सी गजल।

0: कठिन सा एक मुश्किल सा सवाल पूछ लूं?
1: जी पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं।
0: अगर फर्ज कीजिए आपको आपकी तीन इच्छाएं पूरी कर देने वाला कोई एक जिन्न कहीं से मिल जाए तो क्या मांगेंगे आप?
1: जी वैसे तो बहुत कुछ और भी उस जिन्न से मांग सकती थी, लेकिन आज जो जैसे हालात देश में बने हुए हैं तो मैं, मेरी जो इच्छाएं हैं तो सबसे पहले तो मैं ये मांगूंगी कि मुझे इतनी सफलता और नेक दिली दे कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकूं और जो बिगड़े हुए हालात अभी देश में हैं जैसे उनको मैं सुधार सकूं, जो जरूरतमंद है उनके जीवन में खुशियां ला सकूं, तो इससे बड़ी मेरे लिए और कोई बात नहीं होगी। तो पहली इच्छा तो मैं अपनी उस दिन से यही मांगूंगी
0: जी।
1: और दूसरी इच्छा मैं समाज के लिए मांगना चाहूंगी कि सभी लोगों को सद्बुद्धि दे ताकि देश में होने वाले अपराध कम हो जाएं और आए दिन जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होते हैं वो खत्म हो जाए और न्याय प्रणाली भी अच्छी हो ताकि जो गुनहगार उन्हें जल्दी सजा मिले और पीड़ितों को जल्दी न्याय मिले। तो ये मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और तीसरी इच्छा भी यही है कि मैं ये चाहूंगी कि दुनिया में सभी लोग मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सबको मिले जिससे लोगों का बौद्धिक विकास हो सके, और क्योंकि अगर लोगों के विचार स्वस्थ होंगे तो कहीं ना कहीं देश भी स्वस्थ होगा, देश भी शांति की ओर जाएगा और समाज से नफरत मिटेगी और एक भाईचारे का माहौल बनेगा। यही है कि एक खुशहाली का माहौल बनेगा। तो अगर वो जिंद जी हमारी ये तीन इच्छा पूरी कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है फिर।
0: आमीन आमीन, आपकी ये जरूर इच्छाएं जरूर जरूर पूरी होंगी। रमा जी आगे बढ़ते हुए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि अपनी एक गजल हमें और सुनाएं प्लीज।
1: जी अपनी एक गजल रखती हूँ कि और मतलब देखिएगा कुछ इस तरह है कि उम्र की कश्तियों को बहा कर गई, उम्र की कश्तियों को बहा कर गई, जिंदगी कुछ न कुछ तो सिखा कर गई।
0: वाह।
1: उम्र की कश्तियों को बहा कर गई, जिंदगी कुछ न कुछ तो सिखा कर गई, और शेर है कि ख्वाब आने ही वाले थे आंखों में पर, ख्वाब आने ही वाले थे आंखों में पर, नींद मेरी ही मुझसे दगा कर गई, नींद मेरी ही मुझसे दगा कर गई, और मौत खुद आ गई, मौत खुद आ गई ढूंढ कर रास्ता, मौत खुद आ गई ढूंढ कर रास्ता, और जिस्म से जान पल में जुदा कर गई, जिस्म से जान पल में जुदा कर गई, और शेर है कि हो गई बेअसर हर दवा मुझ पे तब, हो गई बेअसर हर दवा मुझ पे तब, काम अपनों की मुझ पर दुआ कर गई, हो गई बेअसर हर दवा मुझ पे तब, काम अपनों की मुझ पर दुआ कर गई, और यादें माजी को छूकर चली जो हवा, यादें माजी को छूकर चली जो हवा, जख्म सूखा था उसे हरा कर गई, यादें माजी को छूकर चली जो हवा, जख्म सूखा था फिर से हरा कर गई, और ख्वाहिशों की जमी मैं चली नापने, ख्वाहिशों की जमी मैं चली नापने, हद मेरी आई ना फिर दिखा कर गई, ख्वाहिशों की जमी मैं चली नापने, हद मेरी आई ना फिर दिखा कर गई, और मकता है कि महकी खुशबू से जीवन सभी का यहाँ, महकी खुशबू से जीवन सभी का यहाँ, सबके हक में दुआए रमा कर गई, सबके हक में दुआए रमा कर गई, उम्र की कश्तियों को बहा कर गई, जिंदगी कुछ ना कुछ तो सिखा कर गई।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बेहद बेहद सुंदर गजल। रमा जी बहुत बहुत आभार आपका, जो इतनी प्यारी गजल आपने हमारे सुनने वालों को सुनाई। थैंक यू सो मच,
1: बहुत शुक्रिया।
0: रमा जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ और फिर से गुजारिश करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए आपकी पसंदीदा कोई गजल, किसी गजल गायक की हमें बताएं जो हम उन्हें सुनवा सकें।
1: हाँ जी, अंजुम रहबर साहिबा की एक गजल है, इतनी उदास कब थी कलाई में चूड़ियां और ढीली हुई है तेरी जुदाई में चूड़ियां।
0: क्या बात है,
1: अगर आप सुना सके।
0: बहुत खूब, आइए दोस्तों सुनते हैं रमा जी की फरमाइश पर ये प्यारी सी गजल।

सा उसको पसंद है, जाने वो रंग कौन सा उसको पसंद है, इसीलिए हर रंग की लाई हूँ चूड़ियाँ।

0: रमा जी, एक और सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि आपकी जिंदगी में अभी तक सबसे अच्छा तोहफा आपको क्या मिला है और किसने दिया है?
1: ऐसे तो बहुत सारे तोहफे मिलते हैं बचपन से लेकर आज तक, बहुत मिले भी हैं, लेकिन कुछ तोहफा होता है जो कुछ खास होता है। तो मुझे भी एक तोहफा अभी पिछले साल ही मिला है, वो मेरी बेटी ने मुझे दिया है, एक स्मार्ट वॉच।
0: जी,
1: और खास बात यह है कि ये उसने अपनी कमाई से मुझे खरीद के दिया है।
0: क्या बात है,
1: तो
0: बेहतरीन।
1: वो क्या है ना कि हम अपनी आंखों के सामने जब अपने बच्चों को बड़ा और कामयाब होते देखते हैं तो जो खुशी मिलती है उसके सामने दुनिया की हर खुशी छोटी लगती है। बस इसीलिए मुझे लगता है वो तोहफा मेरे लिए बहुत खास है। कुछ ना कहीं ये लगता है कि हमारी परवरिश सफल हुई बच्चों को कामयाब बनाने में, वो मुझे बहुत, जी वही मेरा पसंदीदा तोहफा है अब तक।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बिल्कुल सही फरमाया आपने मैम। हम अपने बच्चों को संस्कृति के साथ, कुछ वैल्यूज़ के साथ जो परवरिश देते हैं, उसके बाद अगर वो हमें आगे बढ़ने के बाद भी याद रखते हैं, तोहफे की वैल्यू से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, कम ज़्यादा से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बात भावनाओं की होती
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल सही जी,
0: बहुत खूब। तो रमा जी, मेरी आपसे गुजारिश है कि एक गजल हमें और सुनाएं अपनी।
1: जी, मेरी एक अगली गजल रखती हूँ, छोटी बहर की छोटी सी गजल है
0: जी,
1: कि लहरों से टकरा के देख, लहरों से टकरा के देख, साए तक पे जाके देख, लहरों से टकरा के देख, साहिल तक तो जाके देख, और थोड़ी अक्ल लगा के देख, थोड़ी अक्ल लगा के देख, हिम्मत से कुछ पाके देख, थोड़ी अक्ल लगा के देख, हिम्मत से कुछ पाके देख, और मंजिल होगी बाहों में, मंजिल होगी बाहों में, अपने कदम बढ़ा के देख, पागल दीवाने दिल को थोड़ा सा समझा के देख, मुट्ठी में अंबर होगा, मुट्ठी में अंबर होगा, पंख जरा फैला के देख, और बात सितारों की मत कर, बात सितारों की मत कर, सूरज नया उगा कर देख, और खुशियों से तर होगा दिल, खुशियों से तर होगा दिल, काम किसी के आके देख, और आग भड़कती है कितनी, चिंगारी सुलगा के देख, आग भड़कती है कितनी, चिंगारी सुलगा के देख, और सब कुछ पहले जैसा है, सब कुछ पहले जैसा है, दरवाजा सरका के देख, और काम रमा बन जाएगा, बस उम्मीद जगा के देख, काम रमा बन जाएगा, बस उम्मीद जगा के देख, लहरों से टकरा के देख, साहिल तक तो जाके देख।
0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही संवेदनशील और कम लफ्जों में काफी सीरियस और काफी गंभीर आपने अपने विचार पेश कर दिए। बहुत खूब
1: जी, धन्यवाद, शुक्रिया।
0: तो रमा जी, मैं आपसे अब गुजारिश करूंगा कि अपने ही किसी पसंदीदा गजल गायक की एक गजल हमें और बताएं।
1: कतील सिफाई जी की एक गजल है कि किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह, वो आशना भी मिला हमसे अजनबी की तरह।
0: भाई वाह, क्या बात है, बहुत खूब। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं रमा जी की फरमाइश पर यही प्यारी सी गजल।

0: रमा जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल और पूछना चाहूंगा।
1: जी,
0: अगर मैं किसी को आपके बारे में बताऊं तो आप क्या चाहेंगे कि मैं आपका परिचय उनको कैसे दूं?
1: जी, वैसे तो मैं एक सामान्य इंसान हूं जिसे अपने उसूलों से बहुत प्यार है, अपने देश से और अपने परिवार से बहुत प्यार है। मुझे अगर अपने स्वाभिमान को दांव पर लगाकर कोई उपलब्धि हासिल होती है तो वो मुझे स्वीकार नहीं है। तो यानी आप मुझे एक स्वाभिमानी कह सकते हैं
0: जी,
1: बाकी ऐसी कुछ खास बात मुझ में नहीं है। तो एक साधारण इंसान की तरह आप मुझे किसी भी परिचित कर सकते हैं।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा संक्षिप्त और साफ सुथरा परिचय। तो रामा जी, आगे बढ़ते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक गजल हमें और सुनाएं।
1: मतला है कि गजल का मतला इस तरह है कुछ कि जिंदगी दास्तान है खाली, जिंदगी दास्तान है खाली, फिर भी सबको गुमान है खाली, जिंदगी दास्तान है खाली, फिर भी सबको गुमान है खाली, और बस गए लोग जाके शहरों में, बस गए लोग जाके शहरों में, गांव गलियां मकान है खाली, बस गए लोग जाके शहरों में, गांव गलियां मकान है खाली, और फूल भी डर रहे हैं खिलने से, फूल भी डर रहे हैं खिलने से, खुशबुओं से बगान है खाली, फूल भी डर रहे हैं खिलने से, खुशबुओं से बगान है खाली, और शेर है कि लग गई है नजर।

0: परिंदों को लग गई है नजर, तक आसमान है खाली और आदमी भाग दौड़ में उलझा, आदमी भाग दौड़ में उलझा, जिंदगी इम्तहान है खाली, जिंदगी दास्तान है खाली, फिर भी सबको गुमान है खाली, फिर भी सबको गुमान है खाली। बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी।
1: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही प्यारी सी छोटी सी गजल। रमा जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपकी गजलें सुनी हमने, आपसे बातचीत की। आपके बारे में श्रोताओं को सुनकर मुझे यकीन है बहुत मज़ा आया होगा, बहुत उनको अच्छा लगा होगा कि एक अच्छे शायरा, एक अच्छे गज़ल लेखक से उनकी मुलाकात हुई, उनके बारे में उन्हें पता चला। आपका बहुत बहुत आभार रमा जी।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी, मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों आज शाम गजलों के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, कल नई गजलें लेकर मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा आपके पास। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे वर्षा
3: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष और सुन रहे कार्यक्रम खेती बाड़ी।
2: जी हां साथियों, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे किसान साथियों के लिए हम बहुत ही लाभदायक जानकारी लेकर आते हैं कि हमारे किसान साथी कैसे खेती कर सकते हैं और कैसे खेती करके अपना ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही साथ श्रोताओं, हम इस कार्यक्रम में ये भी बताते हैं कि इस मौसम में हमारे किसान साथी कैसे अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, क्योंकि धूप आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा हो रही है। तो ऐसे में हमारे किसान साथी जब भी खेतों में जाते हैं तो अपने सर को ढक कर रखें, तौलिए से, गमछे से या फिर किसी और चीज से, या टोपी भी आप लगा सकते हैं। खेतों में काम करते वक्त साथियों हमें ध्यान देना है कि पानी की मात्रा कम नहीं होने देना है। अपने शरीर को पानी बार बार दें यानी कि पीते रहें तो आपके लिए अच्छा होगा, तभी हम खेती का काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम खेती बाड़ी में श्रोताओं हम बात करने वाले हैं कि टिकाऊ खेती।
3: बिल्कुल श्रोता साथियों, कि टिकाऊ खेती आखिरकार है क्या, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि टिकाऊ खेती किसे कहते हैं, टिकाऊ खेती में किस तरीके से नई पद्धति से हमारे किसान साथी खेती कर सकते हैं, क्योंकि अब जमाना नई पद्धति का आ गया है कि कैसे किसान साथी नई पद्धति से और नई नई योजनाओं के साथ लाभ लेकर हमारे किसान साथी आगे बढ़ सके, उनकी आजीविका को बढ़ाया जा सके। इसलिए हम कार्यक्रम खेतीबाड़ी के माध्यम से हम अपने किसान साथियों को नई नई पद्धति के बारे में खास तौर पर बता रहे हैं और कुछ ऐसी बातों को भी ध्यान में रखना होगा किसान साथियों को, क्योंकि अगर झाबुआ जिले की बात करें तो वहां पर पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। पानी की किल्लत को देखते हुए हमारे किसान साथी कम पानी वाली फसलों पर जा सकते हैं, लगा सकते हैं। अब उसके लिए बीजों का चयन होता है, तो बीजों के चयन के लिए हमारे किसान साथी केवीके में जाकर या कृषि विभाग में जाकर संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ में किसान साथियों को बता देना चाहते हैं कि रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM के माध्यम से जो हम कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं वो हमारे किसान साथियों के लिए बड़े महत्वपूर्ण बातचीत हम लेकर आते हैं। और जैसा कि टिकाऊ खेती की अगर बात करें तो अभी हमारे किसान साथी, चूंकि गर्मी का सीजन चल रहा है और ऐसे में हमारे किसान साथी क्या करें, तो उनको यदि पथरीला इलाका है तो छोटी छोटी जमीन भी हमारे किसान साथियों के पास, तो वो क्या कर सकते हैं, पॉली हाउस एक माध्यम हो सकता है, ग्रीन हाउस जिसे कहा जाता है, उसमें नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं, पौधे भी उसमें लगा सकते हैं, उसमें भी खेती कर सकते हैं। तो किस तरीके से खेती करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस पर आज हम एक लघु नाटिका भी प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम के माध्यम से। साथ साथ में कुछ किसान अपने जो सफल हुए हैं और वो अपने अनुभव साझा करेंगे, तो हम देर नहीं करते हैं, हम अपने किसानों के पास हमारे श्रोता साथियों को ले चलते हैं, उनके अनुभवों को हम जानते हैं, वो नई पद्धति से किस तरीके से खेती करते हैं, क्या अनुभव उनका रहा है। तो आइए हम अपने किसान साथियों की आवाज़ में इस उनकी कहानी को हम सुनते हैं।
4: मैं विवेक यादव, मैं एक मध्यवर्गीय सुभाष नगर किसान हूँ। भैया, अगर हम अपनी नई तकनीकों को आज हम अपने खेतों में लगाते हैं तो भैया लागत आती है, पर यह लागत एक बार की है, जिससे हम भविष्य में काफी समय तक इससे लाभ ले सकते हैं। कह सकते हैं कि भैया लगाओ एक बार और काटो बार बार।
5: मैं सुंदरदास, जगदीशपुर का किसान। हमारे ख्याल से आज स्थिति को देखते हुए नई तकनीकों का प्रयोग हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सब लोग पिछड़ जाएंगे और सारा काम खराब हो जाएगा। हाँ, नई तकनीक को अपनाना थोड़ा महंगा जरूर है।
6: मैं जवाहर नगर का एक छोटा सा किसान हूँ। मेरा नाम अभिषेक है। भैया, यह बात तो सही है कि खेती में अगर हम वैज्ञानिक तकनीक लगाएं तो इससे थोड़ा खर्चा तो आता है, पर इससे आने वाले समय में बहुत से काम हो जाते हैं। जैसे मैंने 2 साल पहले पंप सेट लगाया था और मैं अभी तक उससे सिंचाई कर रहा हूँ।
7: किसान भाइयों की बात को ध्यान से सुनते हुए मुझे एक धारणा का पता चला। भाइयों कि हमारे सभी किसान भाई सोचते हैं कि भाई अगर हम उन्नतशील खेती करना चाह रहे हैं और नई नई जो तकनीकें हमें जो विशेषज्ञ बताते हैं उनको अपनाना चाह रहे हैं तो इसके लिए निवेश करना बड़ा जरूरी है और निवेश भी मामूली नहीं, बड़ा निवेश है किसान भाइयों। तो इस निवेश को किसान कैसे देखे, क्या खर्चा है उसके लिए या कि एक कमाई का नया साधन। और इसी बात से एक विषय जो सामने आया है कि निवेश एक बार लाभ बार बार, यानी एक बार निवेश करने के बाद आप लाभ बार बार कैसे लें, आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं। लेकिन किसान भाइयों की धारणा को और मजबूती से समझते हैं और चलते हैं बातों बातों में, जो कि है एक लघु नाटिका।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।

0: की राखी। जय जोहार जय जोहार जय जोहार।
1: हाँ दिशान मिया पकड़ो, उधर से पकड़ो, चलो तुम रुको रुको, मैं पहले उतरता हूँ। हाँ हाँ हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक,
2: आराम से आराम से।
3: अरे घर में शादी है क्या? राम राम
1: राम राम, तुम हटो यार जरा,
2: एक बार
1: का
2: कह रहे हो कल्लू भैया?
3: घर मैंने कहा घर में किसी की शादी है क्या भैया?
1: शादी से तुम्हारा मतलब?
3: अरे इतना सारा सामान लेकर आए हो, शादी का ही लग रहा है।
2: शादी का? अरे कल्लू ये जो पाइप है ये सामियाना का पाइप थोड़े ना है। ऊपर से ये बताओ जो सामियाना कहीं पन्नी का लगता है क्या है?
3: ये तो बात सही कह रहे हो भैया, लेकिन है क्या ये बवाल?
1: अरे भाई कल्लू कुछ नहीं, तुम्हें पता नहीं क्या, हम लोग अच्छी खेती चाहते हैं, इसके लिए पाली हाउस लगा रहे हैं। हाँ और तुम्हें पिछली बार की बात याद है, संगम भैया कह रहे थे कि हम लोगों को टिकाऊ खेती करनी चाहिए, और टिकाऊ खेती के लिए अगर हम पॉली हाउस में खेती करेंगे तो हमारी इनकम भी अच्छी होगी और उत्पादन भी अच्छा होगा।
3: इसके लिए पैसा तो बहुत खर्च किया दिलशान भैया।
1: हाँ थोड़ा सा खर्चा हुआ है, लेकिन भाई वो सब बराबर हो जाएगा, क्यों दिलशान भाई?
2: बिल्कुल भाई, आज हम पैसा लगा रहे हैं, कल पैसा फिर आएगा और परसों फिर आएगा।

0: भाई पाली हाउस के लिए जो सामान था ले आए हैं। आप जरा देख लीजिए कि ये सारी चीजें सही है कि नहीं। क्यों दिलशान भाई?
1: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। संगम भैया, जिस दुकान पे आपने कहा था हमने सामान वहीं से लिया, इससे और दुकान से थोड़ा सस्ता ही पड़ा है।
2: संगम भैया, कितना भी सस्ता पड़ा हो लेकिन है तो महंगा ही।
3: अरे कल्लू भैया, आप कह तो सही रहे हो लेकिन आज तो जरूर ये महंगा लग रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में यही तो आपको बरकत देके जाएगा, तब आपका जो पान का खोका है ज्यादा महंगा महसूस होगा और ये पॉली हाउस बहुत ही सस्ता लगेगा।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो संगम भैया। कल्लू भैया, आज हम ये पॉली हाउस लगा रहे हैं तो ऐसा थोड़ा ना है कि अगली बार इसको उखाड़ के बेचना पड़ेगा, एक बार ये लग गया तो सालों साल चलता है।
0: अरे दिलशान मियाँ, किसे समझा रहे हो? तुम तो जाओ कल्लू अपनी पान की दुकान खोलो और हम भी तुम्हारे वहाँ आएंगे 10 साल बाद पान खाने।
2: चलो पान वान भैया छोड़ो, ये बताओ इस पॉली हाउस जो लगा रहे हो उससे क्या क्या फायदे होंगे?
3: अरे भैया, पॉली हाउस में ऐसी फसलों का उत्पादन हो सकता है जो उस मौसम में बाजार में नहीं मिलती, और जो फसलें बाजार में नहीं उपलब्ध हों और वो फसलें तुम बाजार में ले जाओगे तो बताओ कितना मुनाफा होगा, यानी 40 पैसे का बैंगन 40 रुपये में मिलेगा।
2: अरे भैया, ये तो मुनाफे वाली बात है, तो क्या मैं इसमें आपकी सहभागिता ले सकता हूँ?
0: क्यों नहीं?
1: लेकिन भैया जितना खर्चा हुआ है उतने के बराबर ही खर्चा देना पड़ेगा।
2: चलो ठीक है, मेरा भी एक हिस्सा जोड़ लो।
3: अरे ये हुई ना बात, तुम भी समय के साथ साथ चलने लगे हो, इसका मतलब हुआ थे बुद्धू और बन गए महात्मा बुद्ध।
4: कार्यक्रम खेती बाड़ी में एक बार फिर से सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सुन रहे हैं इस समय रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपनो रेडियो आपनी बातें। अभी हम सब मिलकर सुन रहे थे एक लघु नाटकिया जिसमें हम जान रहे थे कि किस तरह से पॉली हाउस होते हैं और हमारे किसान साथी कैसे उसमें नर्सरी लगाकर कुछ फायदा ले सकते हैं। चलिए श्रोताओं, अब हमारा वक्त हो चला है अगले सेगमेंट का। अगले सेगमेंट में हम जानेंगे कि हमारे जो एक्सपर्ट है वो नई पद्धति के बारे में हमें बता रहे हैं, तो कैसे हमारे किसान साथी उस नई पद्धति का फायदा ले सकते हैं। लेकिन श्रोताओं, उससे पहले हम यहाँ पर सुन लेते हैं एक गीत को।

अपना हक नहीं लड़ाई से, अपना हक नहीं लड़ाई लड़वा माटे गमे गाम थी मारा भाईओ मारी बोनो मारा काका मारी काकियो ए बता सालों

0: की राखी। जय जोहार जय जोहार जय जोहार।
1: सर्वप्रथम तो है कि पाली हाउस बड़े काम की चीज है और खास तौर पे जो है बेमौसमी सब्जी उत्पादन जो किसान भाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे जो महत्वपूर्ण इसका अंग होता है कि इसमें आप 6 से लेकर 8 गुना तक ज्यादा उत्पादन इससे ले सकते हैं और उत्पादन के साथ साथ दूसरी भी महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होगी। जो भी आप सब्जी लेते हैं उसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होगी। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कि आप बिना सीजन के आप उगाते हैं तो हमारी जनसंख्या भी देखते हैं, ये भी है कि हम जो है सब्जी उत्पादन अपना जो है जितना हो रहा है उससे हम बढ़ा देते हैं तो हमें बहुत सारी जो है सब्जियां जो है बिना मौसम में खाने को लिए मिलती हैं, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है हमारे लिए। देखिए पॉली हाउस कई तरह के होते हैं और जैसे आपका लो कास्ट है, मीडियम कास्ट है, हाई कास्ट है, तो हमारे किसान भाई किस तरह का पॉली हाउस बनवाना चाहते हैं कास्ट उस पर निर्भर करता है। इसमें जो हम पॉली सीट यूज करते हैं उसमें भी बहुत तरह की पॉली सीट आती है कि एंटी डस्ट है, एंटी सल्फर है, एंटी फॉग है, तो ये लागत तो इस पर निर्भर करता है कि हमारे किसान भाई किस चीज का बनाते हैं। आप बांस का भी बना सकते हो साधारण पॉली हाउस, आप तो चाहे आप अब तो जीआई पाइप्स आती हैं उसका भी आप पॉली हाउस बना सकते हो, किस तरह का बनाते हैं। ज्यादा करके किसान भाई जो हमारी हमारा प्रदेश है नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस हम लोग के लिए लाभकारी होता है। बनवाते समय इसमें एक ही बात का ध्यान रखते हैं कम से 60 से 70% इसमें वेंटिलेशन होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों को देखा है वेंटिलेशन अच्छा नहीं होगा तो बीमारियों वगैरह का प्रकोप बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है। बनवाते समय कुछ चीजों का और ध्यान रखेंगे, ऐसी जगह पॉली हाउस बिल्कुल आपका न हो जहां पे छाया आती हो या ऐसी जगह न हो जहां पे पता लगा बरसात के दिनों में पानी भर गया, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका फेंस वगैरह से थोड़ा घिरा हो तो भी बहुत अच्छा रहेगा, जानवर उसके पास कम से कम जा सके, पानी का स्रोत उसके आसपास होना चाहिए और बाजार से भी नजदीक हो तो बहुत ही अच्छा है। और ये सब चीजें हैं और एक महत्वपूर्ण है कि पॉली हाउस बना लेते हैं तो चूंकि हम ठंडी के दिनों में इसको इस्तेमाल करते हैं किसान भाई पॉली हाउस अगर बना, ऐसा नहीं कि जब भी जो ये आता है और पॉली हाउस खोला और अंदर घुमाने के लिए चले गया, पॉली हाउस इसके लिए नहीं होता है। पॉली हाउस को कम से कम खोला जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। बनाते समय एक और ध्यान रखिएगा कि दरवाजे जो हैं आपके बिल्कुल सामने की तरफ न खुले, थोड़ा सा घूम के आप दरवाजा बनाइए, इससे क्या होता है कि बहुत सारे कीट अंदर जाने जा नहीं पाते हैं, तो ये हमें काफी उससे लाभ रहता है। और जिन किसान भाइयों के जिसे पॉली हाउस बनवा चुके हैं 2-3 साल हो चुके हैं तो बरसात बीतने के बाद एक बार उसकी जो है पॉली सीट जो ऊपर होती है सर्फ से उसकी धुलाई जरूर कर दें क्योंकि बहुत लोगों की शिकायत होती है कि अब उत्पादन कम हो रहा है। उत्पादन इसलिए कम होता है कि बरसात के बाद पन्नी हमारी थोड़ी गंदी हो जाती है, थोड़ी काई जैसी जमने लगती है, तो आप धुलाई कर दोगे तो उत्पादन जो है एक बार फिर से आपको दोबारा अच्छे इस प्रकार से मिलने लगेगा। और एक पॉली हाउस बनाते हैं तो आप पूर्व से पश्चिम की दिशा में बनाएं, कई सारे पॉली हाउस आपके लगे हुए हैं तो उत्तर से दक्षिण दिशा में बनने चाहिए, तो बहुत सारी चीजें हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि जो भी किसान भाई पॉली हाउस बनवाना चाहते हैं बिना तकनीकी जानकारी लिए हुए न बनवाए तो बेहतर रहता है। एक बार आप जानकारी जरूर लें क्योंकि आपकी उपयोगिता क्या है, कौन सी सब्जी उगाना चाहते हैं, ये सब चीजों का जैसे उसमें मिस्ट सिस्टम लगता है, ड्रिप सिस्टम लगता है, तो हम सारी चीजों की जानकारी देते हैं कि आपकी आवश्यकता क्या है और कितना बड़ा पॉली हाउस आपके लिए ठीक रहेगा। जैसे कम से कम आपका होता है कि 100 वर्ग मीटर का तो होना ही चाहिए, तो 100 से लेकर 500 वर्ग मीटर का पॉली हाउस अच्छा माना जाता है। इन सब चीजों को बनाए और लगाने का होता है तो बीमारियों के लिए भी अच्छा, तो सावधानी के लिए भी आपको जो दवाएं हैं और जो डोज है बाहर से थोड़ा अलग होता है तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या लगाए हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं, तो आप किसी वैज्ञानिक से या संस्था से जुड़े रहें। बस ये है कि नहीं कि आप सब्जी का जैसे खेती से लगातार आय बढ़ाने का ये है कि खेत को हम कभी खाली ना छोड़ा जाए और पहले से सोच के डाइवर्सिफिकेशन की एक बात होती है कि ज्यादा तरह की फसलों का चुनाव किया जाए। बहुत सारी जैसे बीच में छोटा छोटा जैसे आपका गैप आता है, जैसे हमारे यहाँ भी लोबिया की बात होती है कि आपका गेहूं कटेगा और उसमें आप लोबिया थोड़े समय में 60 दिन में लगा के ज्यादा से ज्यादा जो धान कटने के बाद आप लगा के ले सकते हैं, गेहूं और उसके लगने के पहले जो है आप उससे ले सकते हैं। तो बहुत सारी सब्जियां ऐसी है कि जो आप थोड़े थोड़े समय में, जैसे मूली एक ऐसी सब्जी है आप इसको साल भर में 8 बार लगा सकते हैं, तो आपको लगता है कि 2 फसल के बीच में जो है हमारा थोड़ा गैप हो रहा है 25 दिन 40 दिन, तो आप ऐसी प्रजाति का चुनाव करिए, लगाइए और आमदनी ले लीजिए। बिल्कुल भी हमें जो अगर हम लगातार लगे रहें और सोच बनाए रखें خاص طور پہ ان سبزیوں کو بھی جیسے لگتا ہے کہ سال بھر آمدنی کی بات ہے تو کچھ کسان بھائیوں کو پالی ہاؤس وغیرہ بھی بنانا آوشیک ہوگا، کیونکہ بنا موسم میں بھی جو ہے سبزی ہم لگا کے ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ آمدنی لے سکتے ہیں. اور لگانے سب سے مہتوپورن ہے کسان بھائی جیسے ہے کہ دو چیز بہت مہتوپورن ہوتا ہے کہ کس سبزی کو لگانے جا رہے ہو اس میں لاگت کتنی آئے گی اور اس کا بازار میں اس کی مانگ ہے کہ نہیں ہے. تو جہاں بھی آپ لگانا چاہو، یہ نہیں کہ ہم نے کہہ دیا کہ کوئی بھی سبزی آپ سال بھر اگاتے رہیے، ان دونوں چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہی آپ سبزی اتپادن شروع کریں گے. یہ بہت مہتوپورن بندو ہے. اس کے علاوہ بہت کوئی نئی سبزی آپ جیسے ایکزوٹک آپ لیٹوس لگانا چاہتے ہیں، سرلی لگانا چاہتے ہیں، اس طرح کی سبزیوں کی اگر کھیتی کرنا چاہتے ہیں تو ایک بار بات ضرور کر لیجیے آپ، کیونکہ بہت ساری سبزیاں ایسی ہیں جیسے ہمارے دلی ہے، وہاں آپ کو مولیہ بہت زیادہ اس کا ملے گا. تو اس طرح کی چیزوں میں لگنے سے پہلے ایک بار بازار کو دیکھ لیں، ویگیانک صلاح ضرور لے لیں. اور مجھے لگتا ہے کہ ایسی سبزی ہے جیسے ٹماٹر تو پورے سال بھر، اور کسان بھائی دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک سبزی پورے سال بھر مل رہی ہے. مل کہاں سے رہی ہے؟ جب کوئی کسان اگا رہا تھا ابھی تو مل رہی ہے آپ کو، تو دوسرا اگا سکتا ہے، ہمارے دیش کے دوسرے باغ میں اگا سکتا ہے، تو ہم کیوں نہیں اگا سکتے ہیں. تو پورا ہے کہ سبزی سے اگر ویوسائے میں لگا جائے تو ہم پورے سال بھر جو ہے اس میں لگے رہیں گے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ آمدنی لے سکتے ہیں. اس کے لیے تھوڑا سا یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں آدھونیکرن کرنا پڑے گا کہ ہمیں جو ہے پالی ہاؤس ہے، ملچ ہے، ڈرپ اریگیشن ہے، فرٹیگیشن ہے، کچھ نئی چیزیں جو آئی ہیں، نئی پرجاتیاں ہیں، ان کا ہم سماویش کریں گے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ لابھ ہوگا. اور مجھے پورا یقین ہے کہ سال بھر جو ہے ہمارا جو پریوار، ہم خود بھی اچھی سبزی کھائیں گے، دوسرے کو بھی اچھا کھلائیں گے. تو یہ جیسا کہ ہے کہ بھائی جے جوان جے کسان جے وگیان، تو سب مل کے چلیں تو سبھی اچھا ہی اچھا.
2: آپ سن رہے ہیں جھابوا کا پہلا سامدائک ریڈیو اسٹیشن ریڈیو ٹانٹیا بھیل 90.8 ایف ایم. آپڑو ریڈیو آپڑی باتیں.
3: ریڈیو ٹانٹیا بھیل 90.8 ایف ایم سننے والے سبھی ساتھیوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت کرتے ہیں. شروتاؤں، ابھی آپ نے سنا وشے وشیشگ کو، تو کافی ساری باتیں کلیئر ہو چکی ہوں گی ہمارے کسان ساتھیوں کے من میں جو بھی سوال چل رہے تھے اس کھیتی کو لے کر، اور ساتھ میں نئی پدھتی کو لے کر ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے آس پاس کا کلائمیٹ ایک دم سے خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، پانی کی کمی ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے. تو ایسے میں ہمارے کسان ساتھی کون سے وہ بیج ہیں جن کا چین کر کے ہم اپنے کھیتوں میں لگا سکتے ہیں، جس سے ہمیں اچھا خاصا منافع ایک مل سکتا ہے. شروتاؤں، کاریکرم کو آگے ہم بڑھاتے ہیں، اور آئیے اسی کاریکرم میں ہمارے ساتھ پشو پالن کی بھی بات ہونی چاہیے، کیونکہ پشو پالن بھی ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے. تو اس موسم میں ہم کیسے پشو پالن پہ دھیان دے سکتے ہیں، کیا چیزیں ان کے لیے صحیح ہوتی ہیں، کیا ہمیں کرنا چاہیے پشو دھن کے ساتھ، تو آئیے سنتے ہیں اس چرچا کو.
4: खेती के साथ साथ किसान पशुपालन कर अतिरिक्त आय कमा रहे हैं. कम स्थान और कम व्यय पर छोटे पशुपालकों में सबसे ज्यादा बकरी पालन का प्रचलन है, क्योंकि इसके लिए ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती और इनकी संख्या में आसानी से इजाफा भी होता रहता है. बीते 5 सालों में बकरियों की संख्या में इजाफा देखा गया है. हर 5 साल में होने वाली पशु गणना के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2012 की तुलना में पशुधन में 4.6% की वृद्धि हुई है. ये संकेत पशुपालन में होने वाले मुनाफे की ओर इशारा करते हैं. बकरी पालन से और अधिक कमाई कैसे की जाए, आइए जानते हैं. पशुधन बढ़ता रहे और मुनाफा भी होता रहे, इसके लिए बकरियों के प्रजनन में कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए. एक बकरी लगभग 1.5 साल की उम्र में प्रजनन करने लायक हो जाती है. एक बकरी 2 साल में 3 बच्चों को जन्म दे सकती है. इस तरह इनकी संख्या में वृद्धि होती रहती है. ब्लैक बंगाल बकरी का प्रजनन बीटल या सिरोही नस्ल के बकरों से कराना चाहिए. बीटल या सिरोही नस्ल से उत्पन्न संकर पाठी या बकरी का प्रजनन संकर बकरा से कराएं. इसके अलावा इनके आहार पर भी खास ध्यान रखें. गाभिन बकरियों को अंतिम 1.5 महीने में चराने के अलावा कम से कम 200 ग्राम दाना का मिश्रण अवश्य दें. साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि बकरियों के आवास में प्रति बकरी 10 से 12 वर्ग फीट की जगह दें और एक घर में एक साथ 20 बकरियों से ज्यादा ना रखें. बच्चा जन्म के समय बकरियों को साफ जगह पर रखें. जन्म के बाद नाभि को 3 इंच नीचे से ब्लेड की सहायता से काट दें. साथ ही टिंचर आयोडीन या वोकाडिन दवा लगाएं. बच्चों को रोगों से बचाने के लिए जरूरी टीकाकरण कराएं. बकरियों के अच्छे विकास में आहार की अहम भूमिका होती है, इसलिए बकरियों के पोषण के लिए प्रतिदिन दाने के साथ सूखा चारा दें. दाने में 57% मक्का, 20% मूंगफली की खली, 20% चोकर, 2% मिनरल मिक्सचर, 1% नमक होना चाहिए। इसके अलावा सूखे चारे में गेहूं का भूसा, सूखी पत्ती, धान का भूसा, उड़द का भूसा या अरहर का भूसा होना चाहिए। इस तरह ध्यान देने से बकरी में मांस के साथ साथ दूध में भी वृद्धि हो सकेगी। बकरी पालन में जितना जरूरी बकरी का होना है, उतना ही जरूरी सही जानकारी का भी होना है, और सही जानकारी के लिए किसान या पशुपालकों को प्रशिक्षण लेना चाहिए। साथ ही मौसम के हिसाब से छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर बड़े नुकसान की आशंका से बचा जा सकता है और पशुपालन से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। हो रहे बदलाव के साथ साथ युवा वर्ग की सोच भी बदल रही है। युवा अब हर वो कदम उठा रहे हैं जो प्रकृति और स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। यही वजह है कि युवा अपनी सोच को नया रूप देकर अपने बनाए उत्पादों को बाजार में ला रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही युवा उद्यमियों से मिलवाएंगे जो बेहतर स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक पहल कर रहे हैं। हरजोत की रुचि घर के बने उत्पादों में थी। छोटे रूप में वो घर में कुकीज और अन्य उत्पाद बनाया करती थी। अपने इस शौक को व्यावसायिक रूप देने के लिए उन्होंने PAU से प्रशिक्षण लिया। वो बताती है कि पहले उनके 20 से 100 ग्राहक ही थे, लेकिन प्रशिक्षण के दौरान उन्हें मार्केटिंग के तरीके भी सिखाए गए। इन तरीकों से हरजोत को अपने उत्पाद को विस्तार देने में मदद मिली। आज हरजोत के करीब 1000 ग्राहक हैं जो उनके उत्पाद ले रहे हैं। वो बताती हैं कि PAU से उन्हें करीब 16 लाख की ग्रांट भी मिली, जिससे उन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाने में काफी सहायता मिली। क्या है उनकी आगे की रणनीति, जानते हैं उन्हीं से।
5: मैंने पहले अपने प्रोडक्ट्स घर से बनाने शुरू किए। घर से मैंने अपनी डॉटर के लिए स्टार्ट किया था। उसके बाद मेरे को लगा कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो हम मार्केट से ले रहे हैं, ये केमिकल और फुल ऑफ प्रिजर्वेटिव्स हैं। तो मेरे को लगा कि आजकल जो नीड है वो विदाउट प्रिजर्वेटिव्स की है। तो उसके लिए मैंने ट्रेनिंग्स यहाँ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ली। उसके बाद मेरे को पता चला कि यहाँ पे RKVY रफ्तार प्रोग्राम है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर में है, जिसके लिए मैंने अप्लाई किया और वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई। तो सिलेक्ट होने के बाद जो मेरा प्रोडक्ट्स थे, जैसे मैं बना रही थी, तो जैसे मेरे 20 या 100 कस्टमर्स थे, उस इन्होंने यहाँ से मेरे को पैकेजिंग का कैसे मार्केटिंग करनी है सब कुछ बताया। तो उसी को मैंने फिर वही, मेरी प्रोडक्शन भी बढ़ गई, मेरे 1000 से ऊपर अब कस्टमर्स हैं, जिसके हिसाब से अब मेरे को गवर्नमेंट से ग्रांट भी मिली है। तो उसके साथ साथ मैंने अब जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो कुकीज़ हैं, मिलेट कुकीज़ हैं, ग्लूटेन एलर्जी वाले लोगों के लिए हैं, वीगन्स के लिए हैं, और ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में जा रहे हैं। अब हम अपनी आउटलेट भी खोलने जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये जो सारी प्रोडक्शन है, ये हम खाली ये नहीं कि मैं अपने तक सीमित रखना चाहती हूँ। अगर मैं काम शुरू कर रही हूँ तो कम से कम मेरे अंडर अब 20 से 25 जिन लोगों को जो अनएम्प्लॉय हैं, जिनको आगे गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती या और जिनके स्किल्स अभी इतने नहीं हुए, उनको दे रही हूँ। क्योंकि मैंने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो न्यू जनरेशन, जो कमिंग जनरेशन है, वो आ रही है, वो भी अपने जो उसका पैशन है उसको प्रोफेशन बनाए, ताकि हम किसी पर डिपेंड ना होए।
4: वहीं PAU के छात्र परमप्रीत का कहना है कि उन्होंने पढ़ाई के दौरान ही खुद का व्यवसाय शुरू किया। परमप्रीत का उद्देश्य लोगों को हेल्दी सलाद देने का है। इसके लिए उन्होंने एक किट तैयार की जिसमें शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व मौजूद हैं। परमप्रीत मानते हैं कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय का अभाव है। इस वजह से वो संतुलित और पोषण से भरपूर भोजन से दूर होते जा रहे हैं। इसी कमी को भरने के लिए परमप्रीत ने ये कदम उठाया है। वे बताते हैं कि इसके लिए उन्होंने प्रशिक्षण भी लिया, साथ ही PAU ने उन्हें वित्तीय सहायता भी दी।
6: मैंने अपनी शिक्षा के साथ साथ मैंने एक स्टार्टअप, मेरे एक पार्टनर है अनुपमा, वो उनके साथ मिलकर हमने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, वो है माइक्रोग्रीन्स और एक्जॉटिक वेजिटेबल्स का। तो हमने अपनी जो शिक्षा है उसके साथ साथ ही स्टार्ट किया था, लेकिन अब हम इसे कंपनी के रूप में अभी एक स्टार्टअप रजिस्टर करा दिया है। जो हमारा स्टार्टअप है वो इनक्यूबेट कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट सेंटर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर, जहाँ पे हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है कि हम कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे अपने प्रोडक्ट को शोकेस करना है, सारा का सारा हमें हेल्प करते हैं डॉक्टर रियाज सर, जो हमारे अभी प्रोग्राम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके अंडर हमें गवर्नमेंट फंडिंग भी मिली हुई है, उसके अंडर हमें 12 लाख की जो गवर्नमेंट फंडिंग मिली हुई है जिसमें हम इंडोर फार्मिंग का प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहा है। इंडोर फार्मिंग हम क्या कर रहे हैं, जैसे माइक्रोग्रीन्स का हमारा है, माइक्रोग्रीन्स क्या होते हैं कि जो छोटे फॉर्म के कह सकते हो 10 दिन की ग्रोथ है पौधे की बीज से उगने तक, वो उसे माइक्रोग्रीन कहते हैं, तो वो काफी न्यूट्रिशियस होते हैं और उसके साथ साथ हमारे काफी ऐसी वेजिटेबल्स भी हैं जैसे केल हो गया या स्विस चार्ड हो गया या मैस्को ब्रोकली हो गया, जो डिफरेंट टाइप्स की एक्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं जो काफी न्यूट्रिशियस होती हैं लेकिन हमारी मार्केट में नहीं मिलती हैं।
3: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे वर्षा
7: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष।
3: जी हां साथियों, आप ही आप सुन रहे थे सफल किसान की कहानी को कि किस तरह से साथियों हम जब खेतों में चावल उगाते हैं और उसको सीधा ही हम मंडी पर बेच देते हैं जिससे हमें बहुत ही कम मुनाफा और सीमित मुनाफा मिलता है, लेकिन अगर हम उन्हीं चावलों का कोई और प्रोडक्ट बनाकर तैयार करें, उनकी पैकिंग कर अगर बेचें तो उससे 2 गुना फायदा हम कमा सकते हैं। बस जरूरत है तो हमें समझने की और एक प्लान करने की कि किस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। अगर आपके खेतों में दालें बहुत ज्यादा होती हैं, अगर आप किसी और सब्जी की बहुत ज्यादा पैदावारी करते हैं, मान लीजिए आपका आलू बहुत ज्यादा होता है, तो आप आलू ऐसे ही बेचने की बजाय आप उनके चिप्स बनाकर भी बेच सकते हैं बाजारों में, जो आपकी अच्छे दामों में चली जाएगी, जिसका अच्छा खासा मुनाफा हमारे किसान साथियों को सीधे पहुंच सकता है। तो साथियों ज्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि हमारा समय हो रहा है आज के इस कार्यक्रम से जाने का, तो आज का ये कार्यक्रम खेती बाड़ी साथियों आप सभी को कैसा लगा हमें जरूर फोन के माध्यम से बताना ना भूलेगा और साथ में हमें सुझाव भी दीजिएगा, क्योंकि अगर ये कार्यक्रम आपके अनुसार यानी आपके लिए फायदेमंद है तब भी हमें बताइएगा और फायदेमंद अगर नहीं है तब भी हमें जरूर जरूर जरूर बताइएगा, जिसके लिए हमारा मोबाइल नंबर है
7: 9425416603। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और साथ साथ में यदि आपको खेती बाड़ी से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी आप चाहते हैं तो हमें जरूर कॉल करके पूछ सकते हैं। साथ साथ में विषय विशेषज्ञ की सलाह भी अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, तो हम अपने विषय विशेषज्ञ से सलाह लेकर आपके सवालों का जवाब हम कार्यक्रम के माध्यम से दिलाएंगे। और हम साथियों कार्यक्रम में कोशिश कर रहे हैं वो छोटी सी छोटी बातें हमारे किसान साथियों तक पहुंचनी चाहिए जो उनके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो। खासतौर पर अगर देखा जाए कि इस मौसम, चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे में हमारे किसान साथी किस तरीके से अपनी आय को बढ़ा सकते हैं तो बहुत सारे विकल्प होते हैं। जैसे वर्षा जी ने बताया था कि हम सीधे जैसे चावल को बोते हैं और उसको बेच देते हैं तो डायरेक्ट ना बेचकर, या फिर आलू यहाँ पर जो भी सीजनेबल चीजें रहती हैं जो उगाई जाती हैं खासतौर पर झाबुआ में, तो उनको सीधा ना बेचकर उनको पैकिंग कर यदि संगठन के माध्यम से अगर हम उसको बेचा जाए तो आपको दाम भी अच्छा मिलेगा और मुनाफा भी आपको अच्छा होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे किसान साथियों को समझनी होगी, सोचनी होगी और अपने जीवन में अपनानी होगी। तो साथियों हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का, तो आपके रेडियो साथी मनीष
3: और आपके रेडियो साथी वर्षा को दीजिए जाने की अनुमति, फिर होगी हमारी और आपकी मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: रेडियो टांटिया फील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान श्रोता साथियों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और किसान साथियों के लिए हम खेती बाड़ी कार्यक्रम में खेती किसान से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं और खासतौर पर नई नई पद्धति पर हम बात करते हैं और उन्होंने उनको जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं कि किसान साथी अब अपनी किस तरीके से खेती कर सकते हैं, किस तरीके से लाभ ले सकते हैं और आने वाले समय में हम किस तरीके से अपनी खेती में मुनाफा कमा सकते हैं। छोटी छोटी कार्य योजना भी हमें बना लेनी चाहिए कि खेती के साथ साथ हम और क्या कर सकते हैं अपनी आजीविका को बढ़ाने के लिए। तो बहुत सारे विकल्प हैं खेती किसानी में, तो हमारे किसान साथी कर सकते हैं। खासतौर पर अगर झाबुआ जिले की बात करें तो किसान साथी कड़कनाथ मुर्गा पालन भी कर सकता है और छोटे छोटे बागवानी भी हम लगा सकते हैं और ड्रिप एरीगेशन पद्धति का उपयोग कर सकते हैं और पानी, खासतौर पर अब आने वाले समय में हम पानी को किस तरीके से बचा सकते हैं, इस पर भी हमें बात करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आज के हमारे इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हमारे किसान साथी प्रधानमंत्री सिंचाई योजना आखिरकार है क्या, किस तरीके से लाभ ले सकते हैं, साथ साथ में खजूर की खेती हमारे किसान साथी किस तरीके से कर सकते हैं और कुछ हमारे किसानों के सवाल हैं खेत तालाब को लेकर, उनके सवालों को हम जानेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम खेतीबाड़ी में, इस रिपोर्ट को हम सुन लेते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बातें।
3: जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजादी के 75वें वर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, ऐसे में सरकार की तरफ से खास तौर पर आज से एक अभियान की शुरुआत की गई है। जी हां, क्योंकि किसान हमेशा से ही इस सरकार की प्राथमिकता में रहे हैं और सरकार भी यही चाहती है कि उनके हितों को देखते हुए तमाम तरह की जो योजनाएं चलाई जा रही है उसमें किसानों की भी भागीदारी सुनिश्चित हो। ऐसे में आज हम इस कार्यक्रम में भी एक खास योजना के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, साथ ही और भी विषय होंगे जिस पर आज हम बातचीत करेंगे। लेकिन हाँ, आप भी अपनी भागीदारी जरूर निभाएं, इस कार्यक्रम में आप भी शामिल हो सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ के इस कार्यक्रम में अपने मन से सवाल पूछ सकते हैं और उनका जवाब हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से हासिल कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि आज इस कार्यक्रम में हम किन विषयों के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। इसके साथ ही बात होगी शुष्क क्षेत्रों में खजूर की बागवानी की संभावना की। आइए आगे बढ़ते हैं, हमारे खास मेहमानों से अब आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर ए के मिश्रा, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है जल प्रौद्योगिकी केंद्र IRI पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद, किसान भाइयों को मेरा नमस्कार
3: जी। आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले मेहमान से भी आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर PK यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर एवं हेड है स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर राजस्थान में। डॉक्टर यादव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद मैडम, सभी किसान भाइयों को नमस्कार
3: जी। आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले विषय के बारे में चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, डॉक्टर मिश्रा आपसे सबसे पहले इस योजना के बारे में हम समझना चाहेंगे कि किस तरह की है ये योजना और किस उद्देश्य के साथ इसे शुरू किया गया।
4: देखिए, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्ष 2015 में 1 जुलाई को हुआ था और इस योजना का सबसे बड़ा और प्रमुख उद्देश्य यही था कि हर खेत को सुनिश्चित जल प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों से और बहुत सालों से देखा जा रहा था कि हमारे देश में सिंचाई की सुविधा इतनी नहीं थी। लगभग 55% हमारा खेत वर्षा पोषित ही होता था और किसानों को जल की उपलब्धता न होने की वजह से उनकी पैदावार बहुत कम होती थी। तो ये सोचा गया कि अगर हम हर खेत को सुनिश्चित जल प्रदान कर सके तो न केवल हमारे किसानों की पैदावार बढ़ेगी बल्कि उनकी आमदनी में भी आशातीत वृद्धि होगी, और जिसका प्रतिपादन पहले किया गया था कि सन 2022 तक किसानों की आमदनी को बहुत बढ़ाना है, तो उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था और लगभग 50,000 करोड़ रुपए के एक बजट से बजट का एक प्रावधान किया गया था। और इसमें ये देखा गया कि हम अगर सभी किसानों को उनके खेतों को सिंचित बना सकें तो न केवल उनका उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, न उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और खुशहाली भी आएगी।
3: बिल्कुल, तो इस योजना के बारे में आपने जाना, आइए एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
6: माननीय प्रधानमंत्री की पहल पर केंद्र सरकार ने हर खेत को पानी के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की है। इसके तहत देश के हर जिले में समस्त खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने की योजना है। इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय के साथ साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय को दी गई है। इसके तहत देश में सभी कृषि फार्म में संरक्षित सिंचाई की पहुंच को सुनिश्चित किए जाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि प्रति बूंद अधिक फसल उत्पादन लिया जा सके। किसान इस योजना के अंतर्गत अपने खेतों में छोटे तालाब, सूक्ष्म सिंचाई के साधन जैसे स्प्रिंकलर सिंचाई और बूंद बूंद सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन के उपकरण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा किसान सुनिश्चित सिंचाई के माध्यम से उचित फसल प्रबंधन और जल संचयन या प्रबंधन विधियों के बारे में प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं। किसान अपने खेत और क्षेत्र की आवश्यकताओं को ग्राम पंचायत के माध्यम से संबंधित ब्लॉक और जिला सिंचाई योजना में सम्मिलित करवाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
3: जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और हमारे दूसरे मेहमान का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर यादव, आपसे जानना चाहेंगे कि खजूर की जो बागवानी है उसमें किस तरह की संभावनाएं इस वक्त किसानों के सामने हैं, आज की स्थिति क्या है, देश के किन किन हिस्सों में खास तौर पर जो खजूर है वो इस वक्त उगाया जा रहा है।
5: किसान भाइयों, मैं बताना चाहूंगा, ये जो खजूर की फसल है ये पौधा बहुत ही सख्त होता है और मुख्य रूप से ये आजादी के बाद ही व्यावसायिक रूप से भारत में शुरुआत की गई थी। इसकी सबसे पहले इसको अबोहर में लगाया गया था, अबोहर में व्यावसायिक किस्में शुरू करी गई, उसके बाद ये राजस्थान में फैला, गुजरात में भी इसकी काफी खेती की जाती है
3: जी।
5: और जो खेती की जाती है उसमें सबसे उपयुक्त ये बात है कि इसकी जलवायु कौन सी होनी चाहिए। जिस समय पश्चिमी राजस्थान में तापक्रम 45 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या देश के दूसरे हिस्सों में होता है, दूसरी फसल करना बहुत ही कठिन कार्य होता है किसान भाइयों के लिए। लेकिन ये खजूर एक ऐसा पौधा है जिसको 45 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यहां तक कि इससे अधिक तापक्रम पे बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। और जब सर्दी होती है तो ये माइनस तापक्रम को भी, शून्य तापक्रम से भी नीचे तापक्रम को बहुत आसानी से सह सकता है। तो इसकी खेती की संभावनाएं शुष्क क्षेत्रों में बहुत अधिक हैं, और जहां पे पानी की गुणवत्ता की कमी बहुत अधिक है, अच्छे गुणवत्ता वाला पानी नहीं है, वहां भी इसको बहुत आसानी से इसकी खेती को किया जा सकता है
3: जी। बिल्कुल, तो ऐसे क्षेत्र जो जहां पर खेती करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है वहां किसान आसानी से खजूर की खेती कर सकते हैं क्योंकि इसमें सहनशीलता काफी होती है। खेती के दौरान और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर।
6: खजूर की खेती मुख्य रूप से अरब या अफ्रीकी देशों में की जाती है और यहीं से ही विश्व भर में खजूर निर्यात किए जाते हैं। विश्व बाजार में खजूर के आयात करने वाले देशों में भारत सबसे बड़े देशों में से एक है। ऐसे में भारत के किसान इनकी खेती कर खजूर के आयात को कम करके विदेशी मुद्रा को बचाने में मदद कर सकते हैं। खजूर की खेती करने वाले किसान शुरुआत के 4 वर्षों में खजूर के बाग में आसानी से हरे चने, मोठ और तिल की इंटरक्रॉप भी कर सकते हैं। खजूर की खेती के लिए शुष्क जलवायु की जरूरत होती है और सौभाग्य से भारत में पश्चिमी राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जहां खजूर की खेती आसानी से उगाई जा सकती है। इस इलाके में खजूर के फल खाड़ी देशों की तुलना में 1 महीने पहले पक जाते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी ज्यादा कीमत होती है। यही वजह है कि वर्तमान में सरकार के प्रयासों और वैज्ञानिकों एवं कृषि विशेषज्ञों की मदद से यहाँ के किसान खजूर जैसी वाणिज्यिक फसलें उगाकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। जो किसान खजूर की खेती करना चाहते हैं, वो बरही, खुनेजी, जामली, खदराची, खलास और मेरचूल किस्मों के अलावा नर किस्मों में धनामी मेल और मत्सरी मेल की बागवानी लगा सकते हैं और कृषि विशेषज्ञों की सलाह से अच्छी कमाई कर सकते हैं।
3: जी हाँ, तो इस रिपोर्ट के जरिए जाना आपने कि खजूर की खेती किसानों के लिए किस तरह से फायदेमंद साबित हो सकती है। तो खजूर ऐसे क्षेत्रों में उगाया जा सकता है जहां पर पानी की किल्लत होती है और पानी की किल्लत में खास तौर पे खेती करना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। और डॉक्टर मिश्रा, जैसे कि आपने बताया कि आधे से ज्यादा खेती हमारी ऐसी है जो वर्षा पर आधारित है, जहां पर सिंचाई के जो संसाधन है वो बेहद ही सीमित मात्रा में है। ऐसे में ये जो योजना है, इसके तहत किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है ताकि पानी की जो बचत है वो भी होती रहे और फसल भी अच्छी उगे?
4: इस योजना में तीन मंत्रालयों के द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं को समाहित किया गया है और जो सबसे पहला उद्देश्य, सबसे पहला जो कार्य किया गया है वो एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम में जो पुरानी, जो बहुत दिनों से लंबित परियोजनाएं थी उनको शीघ्रता से कम्प्लीट करने के ऊपर बहुत जोर दिया गया, जिससे कि जल संसाधन और जल स्रोतों को पुनः बनाया जा सके और जल उपलब्धता बढ़ाई जा सके। दूसरा, एक जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का एक प्रोग्राम था जिसमें वाटर मैनेजमेंट के ऊपर कार्य हो रहा था, तो उसमें भी उन्होंने देखा कि जहां पर भी हो सके पुरानी संरचनाओं को पुनर्जीवित करना, नई संरचनाओं को बनाना और उसके साथ में मोर क्रॉप पर ड्रॉप का ऑब्जेक्टिव लेकर के माइक्रो इरिगेशन के द्वारा, यानी कि प्रेशराइज इरिगेशन के द्वारा बहुत कम जल उपयोग करके बहुत ज्यादा फसल उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया था। और तीसरा, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम था, उसमें जो भी कार्य किए जा रहे थे वाटरशेड डेवलपमेंट के, यानी कि तालाब बनाने के लिए या चेक डैम बनाना, किसी भी प्रकार से जल का संरक्षण करना, और जो उनका उद्देश्य था कि खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में, इस प्रकार से जल संग्रहण करना और इन सीटू रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, एक्स सीटू रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना और हर प्रकार के वो क्रियाकलाप करना जिससे कि एक तो जब जल उपलब्ध हो तब हम बचा सके और उसके बाद हम जल को बहुत मितव्यतापूर्ण तरीके से फसल उत्पादन के लिए इस्तेमाल कर सके। जिससे
3: इसके लिए किस तरह के तौर तरीके अपनाने चाहिए, इसके बारे में जानेंगे आप।
2: लेकिन इससे पहले हम सुनते हैं इस प्यारे से एक भीली गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनों रेडियो अपनी बात है।

0: उन तरफ मारे थोड़ा सा।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम।
2: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और कुछ हमारे लिसनरों के सवाल हैं, आइए जानते हैं कि उनका किस तरीके का सवाल।
3: मैम, हम 16 एकड़ की खेती पे टपक सिंचाई।
4: विवेक जी, आपका सवाल है कि 16 एकड़ की खेत में आप टपक सिंचाई की जो विधि है वो अपनाना चाहते हैं,
3: सिंचाई पद्धति करना चाहते हैं।
4: ठीक है,
3: उसके लिए हमें पाइप खरीद पर हमें सब्सिडी कैसे और कब मिलेगी
4: जी?
3: और पाइप खरीदने के पैसे देने के बाद या पहले उस सब्सिडी के लिए हमें किससे संपर्क करना पड़ेगा? और पाइप के साइज को लेकर कोई कंडीशन तो नहीं है?
4: ठीक है, आइए जानते हैं। डॉक्टर मिश्रा बताएं।
5: देखने वाली बात है कि हमारे किसान भाई कौन सी फसल लगाना चाहते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है
4: जी।
5: तो यहाँ की सैंडी लोम सॉयल है और मैं समझता हूँ कि बहुत उपयुक्त होगा आपका ड्रिप इरिगेशन की ओर चलना और स्प्रिंकलर इरिगेशन की ओर चलना। आपको या तो अपने PMKSY की वेबसाइट पे जा करके डायरेक्टली आपको अप्लाई करना पड़ेगा वहां पे, अथवा अपने नगर के जिला कृषि अधिकारी या जिला उद्यान अधिकारी, जैसी आपकी फसल की चॉइस हो उनके वहां जाना पड़ेगा। और लगभग इसमें जहां तक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का सवाल है, आपको वहां पे प्रोफेशनल्स के द्वारा डिजाइन करके दिलवाया जाएगा। और जहां तक सब्सिडी का सवाल है, आपको लगभग 80-90% अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग हिसाब है, लेकिन तो लगभग किसानों को 90% तक सब्सिडी मिल सकती है और 5 हेक्टेयर तक की लिमिट है।
4: अच्छा,
5: तो 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए नहीं है, लेकिन 5 हेक्टेयर तक आपको मिल सकती है। और मेरा ख्याल है कि आपका 5 हेक्टेयर के आसपास ही इलाका है सिंचाई के लिए।
4: तो बिल्कुल पाइप के साइज को लेकर भी वो जानना चाहते थे।
5: पाइप के साइज में देखिए, ऐसा है कि फसल कौन सी लगाने वाले हैं, या तो हॉर्टिकल्चर कोई ऑर्चर्ड लगाना चाहते हैं, और उसमें ये है कि कितनी स्पेसिंग है, बहुत सारी चीजों का ध्यान देना पड़ता है। तो नॉर्मल पाइप साइज अगर मान लीजिए, देखिए मेन लाइन की जो है 4.5 इंच की है और सब मेन की 2.5 इंच की है, तो वो उनका ज्यादा इनको ध्यान नहीं देना है, उसके लिए जो है प्रोफेशनल्स अपने आप ही उनको बता देंगे कि किस प्रकार की पाइप, कितनी प्रेशर वाली, ये सारी जानकारी वो वेल डिफाइंड है, आपको मिल जाएगी।
1: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और विवेक जी ने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि जो हमारे किसान साथी का सवाल था कि हम किस तरीके से प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में ड्रिप पद्धति से पाइप ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, सारी जानकारी उन्होंने उपलब्ध कराई है। इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अगर झाबुआ डिस्ट्रिक्ट की बात करें, झाबुआ जिले की बात करें, यहाँ पर 3 इलाका है और ड्रिप पद्धति या स्प्रिंकलर पद्धति का उपयोग हमारे किसान साथी कर सकते हैं। और स्कीम्स में उन्होंने बताया कि 80-90% इनमें छूट भी मिलती है, यानी सब्सिडी भी मिलती है। तो अपने नजदीकी कृषि विस्तार अधिकारी या KVK में जाकर संपर्क करना चाहिए और इन योजनाओं का हमें विशेष तौर पर लाभ लेना चाहिए, तभी हम अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हम और आप देखते हैं कि हमारे बहुत सारे किसान साथी अपनी अभी भी पुरानी पद्धति से खेती बाड़ी करते चले आ रहे हैं। अब हमें समय है कि हमें कुछ नई पद्धति से खेती करना होगा, तभी हमारे आय में वृद्धि होगी। जैसा कि लक्ष्य बनाया हुआ था कि 2022 तक हम अपने किसानों की आय दुगनी कर सकते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे आंकड़े हैं, एक छोटे छोटे हमारे श्रोता साथियों के लिए सुझाव हैं कि किस तरीके से वो वैज्ञानिक पद्धति से, वैज्ञानिक योजनाओं, वो खासतौर पर कृषि विभाग से लाभ लेकर, योजनाओं का लाभ लेकर वो अपने खेती में मुनाफा कमा सकते हैं, नई पद्धति से खेती कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जिसमें पानी कम लगता है, मुनाफा अधिक होता है। बहुत सारे ऐसी प्रजाति हैं जो हमारे किसान साथियों खासतौर पर झाबुआ जिले के लिए, पथरीला इलाका के लिए बहुत अच्छी अच्छी किस्में हैं और बहुत सारी सब्सिडी, बहुत सारी योजनाएं हैं, तो उनका लाभ हम ले सकते हैं। कार्यक्रम को हम एक गीत सुनते हैं कार्यक्रम में, इसके बाद आपके हमारी और भी जो हमारे साथी हैं कुछ सवाल हैं उनके बात करना चाहेंगे, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद, यानी सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटा भील 90.8 FM, आपला रेडियो आपकी बात है।
6: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

અમે ગામથી મારા ભાઈઓ, મારી બહેનો, મારા કાકા, મારી કાકીઓ,

0: गरब मारे थोड़ो।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आपड़ू रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस प्यारे से गीत को सुना, गीत का आनंद लिया कार्यक्रम में। अब जानते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी तकनीकें हैं, बहुत सारे ऐसे हम अपने बागवानी भी कर सकते हैं। तो बागवानी में अगर खजूर की बात आती है तो खजूर की खेती हमारे किसान साथी खजूर का बाग किस तरीके से लगा सकते हैं, आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से बातचीत को।
2: किसान भाइयों को इसके बाग लगाने से पहले अच्छी तरह से खेत तैयार होना चाहिए। जो सबसे उपयुक्त समय है इसके बाग लगाने का, वो समय है सितंबर अक्टूबर में पौधे लगाने के लिए, विशेष रूप से राजस्थान के क्षेत्रों में
3: जी।
2: और हम फरवरी, यदि पानी की बहुत अच्छी सुविधा हमारे पास है तो हम फरवरी मार्च के अंदर भी इसके बाग लगा सकते हैं।
3: अच्छा।
2: बाग लगाने के लिए दूरी हमारी 8x8 मीटर रखनी चाहिए। पास पास में इसलिए नहीं लगाते कि इसकी जो पत्तियां होती हैं उनमें कांटे होते हैं। यदि हम ट्रैक्टर चलाएंगे तो ट्रैक्टर चलाने में भी हमको 6x6 मीटर पे परेशानी आएगी और वो आंख में चोट लग सकती है और भी कोई गहरी चोट लग सकती है। इसलिए 8x8 मीटर की दूरी इसके लिए उपयुक्त होती है। अब पौधे लगाने से पहले हमको किस्मों की बातें बहुत जरूरी है। जो हम प्रेस खाने वाली हमारी किस्में हैं, जो हमारी रिपोर्ट में भी बताई गई, खुनेजी है, हलावी है, बरी है, ये किस्में हमारे देश के लिए बहुत ही उपयुक्त किस्में हैं। इसके अलावा जो छुआरे बनाने के लिए हमारी किस्में हैं वो मेजूल है, खलास है, जहीदी है, ये किस्में हमारे लिए बहुत उपयुक्त हैं। इसके बाद में आती है बात प्रवर्धन की, जो हम पौधे कैसे लें पौधे के लिए। अब पौधे के तैयार करने के इसके
3: डॉक्टर यादव जानेंगे इसके बारे में आपसे आगे। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल यहाँ शामिल कर लेते हैं। इस वक्त झांसी से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं शशिकांत जी, आइए उनसे बात करते हैं। शशिकांत जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल।
4: हमारा सवाल ये है कि खेत में तालाब खुदवाने पर क्या अनुदान मिलेगा।
3: ठीक है, आइए जानते हैं। बिल्कुल, खेत में तालाब खुदवाना चाहते हैं, क्या करें ऐसे में?
5: देखिए, खेत में तालाब खुदवाना चाहते हैं तो भारत सरकार की तरफ से एक स्टैंडर्ड है कि लगभग 50,000 रूपए तक का अनुदान मिल सकता है यदि तालाब 15 मीटर चौड़ा, 20 मीटर लंबा और 3.5 मीटर गहरा, लगभग इतनी साइज का तालाब आप खुदवाना चाहते हैं तो आपको ये 50,000 रूपए के आसपास का अनुदान की व्यवस्था की जा सकती है।
3: जी बिल्कुल, शशिकांत जी उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इसी के साथ ही
1: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने कुछ किसानों के सवाल सुने और किसी ने कहा कि हमें तालाब खुदवाना है, क्या कुछ करना पड़ेगा, कौन सी योजना है जिसमें सम्मिलित हम हो सकते हैं। खासतौर पर हम अपने अगर खेत तालाब की बात करें तो चूंकि बरसात अभी आने वाली है तो ऐसे में हमारे किसान साथी खेत तालाब का विचार कर सकते हैं और खोद भी सकते हैं और शासन की योजना का इस लाभ ले सकते हैं। और साथ साथ में खजूर की बागवानी पर भी विस्तार से हमारे जो विशेषज्ञ उन्होंने विस्तार से चर्चा की है। अलग अलग जगह के लिए अलग अलग सब्सिडी दी जाती है, अलग अलग मौसम के बारे में उन्होंने बताया कि किस मौसम में इसको उगाया जाता है, कैसे किया जाता है। अगर बरसात जल्दी आती है या बरसात देर से आती है, उन जगह किस तरीके से बागवानी खजूर की करना चाहिए, उस पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए साथियों हम जानते हैं कि चूंकि अभी बरसात का मौसम आएगा तो हमारे किसान साथी अगर झाबुआ जिले की करें तो किस तरीके से अपने खेत के पानी को रोक सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, आइए विषय विशेषज्ञ की इस बात को हम सुन लेते हैं।
5: देखिए, ऐसा है कि सबसे पहली बात तो यह है कि जब पानी उपलब्ध होता है, जैसा कि आपको पता ही है कि भारत में 4 महीने मानसून की वर्षा होती है और बाकी 8 महीने सूखा रहता है
3: जी।
5: तो निश्चित तौर पर ये जानिए कि पहले तो पानी को इकट्ठा करके रखने की जरूरत है, जो कि हमारी पारंपरिक जल संग्रहण संरचनाएं जो विभिन्न नामों से जानी जाती है, हर प्रदेश में बहुत सारी है और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी और उसी से पहले हम लोग अपना काम चलाते थे। लेकिन तो अब धीरे धीरे, अब जब से ग्राउंड वाटर मोटर के ऊपर ज्यादा जोर हुआ है, बटन दबाते ही पानी मिलने लगा है, तो लोगों ने उनको भुला दिया और अब वो खराब हो गई। लेकिन तो जो बरसात में पानी उपलब्ध होता है पहले उसका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है, धरती के ऊपर भी और मृदा के अंदर भी, दोनों इन सीटू एंड एक्स सीटू दोनों हम बताते हैं, पहले उसको करना जरूरी है और तभी आप उस जल को आप प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर सरफेस पे वाटर आप स्टोर करते हैं तभी ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होता है, यानी कि भूजल तभी आपको मिल सकता है ट्यूबवेल के द्वारा बटन दबाते ही, यदि आपने पहले भूजल पुनर्भरण की व्यवस्था की, यानी आपने स्टोर किया है पानी। और दूसरी बात, आपने कहा कि जल का मितव्यता पूर्ण प्रयोग जो है उसमें हमें अपनी पारंपरिक जो जल यानी सिंचाई की विधियां हैं उनको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, और आगे बढ़ने की जो नई विधियां आई हैं जिसमें कि स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है ये बहुत आजकल प्रचलन में है, और इनका इनकी बहुत सारी खूबियां भी हैं, अच्छाइयां भी हैं, और इनकी दक्षता बहुत अधिक है और कम पानी में बहुत ज्यादा उत्पादन इनसे लिया जा सकता है और साथ में लागत भी बहुत कम आती है और बहुत से अन्य फायदे भी होते हैं, जैसे कि आप इनके साथ ही फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंचाई के ऊपर लगने वाला जो आपका लेबर चार्ज है उसकी भी बचत हो जाती है, और बहुत से ऐसी चीजें हैं जिसे आप बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि प्रिसाइज इरिगेशन आप दे सकते हैं इन विधियों के द्वारा। और अब तो ऑटोमेटेड सिस्टम्स भी आ रहे हैं कि किसानों को अब बहुत ज्यादा खेत में ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है सिंचाई लगाने के लिए, धीरे धीरे एक तरीके से पूरा ही स्वचालित इरिगेशन सिंचाई विधियां जो है प्रचलन में आ जाएंगी और कहीं कहीं आना लोगों ने अपनाना भी शुरू कर दिया
3: है। बिल्कुल,
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
1: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में, और डॉक्टर मिश्रा से कितनी महत्वपूर्ण जानकारी हमने सुनी है और जाना है कि किस तरीके से हमारे किसान साथी आने वाले समय में अपने पानी को भंडारण कर सकते हैं, किस तरीके से रोक सकते हैं, और उन्होंने कितनी महत्वपूर्ण बात बताई है कि जहां पर पथरीला इलाका है जहां पर पानी नहीं रुकता है तो वहां पर हमें तालाब बनाने चाहिए, जहां पर जैसे जैसे ही बरसात का मौसम आएगा वो तालाब भर जाएगा और इससे सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे कारनामे हैं जो हमें अपने सिंचाई पद्धति में अपनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, अपनी खेती बाड़ी में अपनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि एक छोटे छोटे ही मार्गदर्शन हमारे जीवन में बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि अब नई जमाने से हम आगे बढ़ रहे हैं, और खासतौर पर अगर स्कीम्स की बात करें तो बहुत सारी सरकार की खेती किसान से जुड़ी स्कीम्स चलाई जाती हैं तो उनका भी हम लाभ ले सकते हैं और हम इस परियोजना में जुड़कर अपनी खेती बाड़ी में कुछ अच्छा कर सकते हैं। साथ ही वक्त हो चुका है आज के हमारे इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का, कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति, आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, और चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार।

0: तड़प मारे थोड़ा सा।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: शुभ प्रभात दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिव्य दर्शन के भजनों के इस प्रोग्राम में। भजन क्यों किए जाते हैं, यूं तो सभी को इस बारे में पता है, लेकिन फिर भी भजन करने से जो मन की शांति हमें मिलती है, स्वास्थ्य लाभ हमें मिलता है, सुबह सुबह जो हमारे चित्त को, हमारे स्वभाव को, हमारे सोचने की शक्ति को प्रबल कर देता है, अच्छा बना देता है, सुख से भर देता है, उसी को भजन कहते हैं दोस्तों। तो आइए सुनते हैं दिव्य दर्शन के ये भजन।
1: एक रेस्टोरेंट में कई बार देखा गया कि एक आदमी जो कि दरअसल भिखारी था, वो आता था और भीड़ का लाभ उठाकर नाश्ता करके चुपके से बिना पैसे दिए खिसक जाता था। एक दिन जब वो खा रहा था तो एक आदमी ने चुपके से दुकान के मालिक को बताया कि ये भाई जी भीड़ का लाभ उठाएगा और देखिएगा बिना बिल चुकाए निकल जाएगा। उसकी बात सुनकर रेस्टोरेंट के मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे बिना कुछ कहे जाने दो, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। हमेशा की तरह भाई ने इधर उधर देखा और भीड़ का लाभ उठाकर चुपचाप खिसक गया। उसके जाने के बाद उसने रेस्टोरेंट के मालिक से पूछा कि मुझे बताइए तो सही कि आपने इस व्यक्ति को भला जाने क्यों दिया। रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा, भाई आप अकेले नहीं हो, कई भाइयों ने देखा है उसे और मुझे उसके बारे में बताया भी है। वो रेस्टोरेंट के सामने बैठा रहता है और जब ये देखता है कि भीड़ हो गई तो वो चुपके से खाना खाने आता है और खा के निकल जाता है। मैंने हमेशा उसे नजरअंदाज किया और कभी उसे रोका नहीं है, उसे कभी पकड़ा भी नहीं और ना ही कभी उसका अपमान करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी दुकान में भीड़ इसी भाई की वजह से है। कैसे? देखिए, वो मेरे रेस्टोरेंट के सामने बैठे हुए प्रार्थना ही करता रहता है कि जल्दी इस रेस्टोरेंट में भीड़ इकट्ठी हो तो मैं भी जल्दी से अंदर जाकर कुछ खा सकूं और निकल सकूं। और निश्चित रूप से जब वो अंदर आता है तो हमेशा यहां भीड़ ही होती है, तो ये भीड़ भी शायद उसी की प्रार्थना का असर है। शायद इसीलिए कहते हैं कि मत करो घमंड इतना कि मैं किसी को खिला रहा हूं। क्या पता कि हम खुद ही किसी के भाग्य से खा रहे हों।
0: आप हैं आरजे समीर के साथ भक्तिमय दिव्य दर्शन प्रोग्राम में।
2: कलयुग की सच्चाई को इस गीत के माध्यम से आप सभी के बीच लेकर आया हूं और आशा करता हूं आप सुनेंगे और अमल करेंगे।

पहले श्रवण कुमार जैसे पुत्र अपने अंधे माता पिता को अपने कंधे पर रखकर चारों धाम की यात्रा करवाते थे, और आज इस कलयुग के पुत्र अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाते हैं। उन्हें अपने माता पिता को अपने साथ रखने में शर्म आती है।

जिस माँ ने रात रात भर जागकर और खुद भूखी रहकर अपने बच्चों को अपने खून से सींचा, आज वही बच्चे उसे अपने साथ रखने में भी शर्माते हैं।

एक माँ 9 महीने अपने बच्चे को कोख में रखती है, लेकिन एक पिता ताउम्र उस बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए अपने दिमाग में रखता है, और वही बच्चे उस पिता के साथ क्या व्यवहार करते हैं, आइए सुनते हैं।

दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइए बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। आइए दोस्तों, मिलकर प्रभु की प्रशंसा में गीत गाते हैं, भजन गुनगुनाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि सभी को प्रभु खुश रखे।

0: है हवा से रूबरू, बोलो कौन हुआ है हवा से रूबरू?
1: न मैं और न तुम, मगर जैसे ही पत्तियों की होती है सरसराहट, होने लगती है गुजरती हुई हवा की आहट। किसने देखा है हवा को? न तुमने न मैंने, मगर जब पेड़ हो जाते हैं नतमस्तक, मगर जब पेड़ हो जाते हैं नतमस्तक, बस बहती ही रहती है हवा। बोलो कौन हुआ है हवा से रूबरू? न मैं न तुम।

एक बार कुछ जिज्ञासुओं ने क्वेश्चन किया, प्रश्न किया कि मनुष्य डेवलपमेंट क्यों चाहता है, विकास क्यों चाहता है, उसे पाने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। दरअसल विकास यानी कि डेवलपमेंट नेचर यानी कि प्रकृति का एक शाश्वत नियम है, होके रहेगा आप करें या ना करें। सृष्टि में सब कुछ गतिमान है, चलता ही रहता है। मनुष्य सृष्टि का ही एक अंग है और विकास करना, आगे बढ़ना उसका मौलिक लक्षण है। मनुष्य को यह पता है कि जब तक वो परिश्रम नहीं करेगा विकास पथ पर आगे बढ़ ही नहीं सकता। विकास का पथ चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक, इसके पीछे का उद्देश्य व्यक्तिगत जीवन में सुख भोग की चाहत ही होती है। क्योंकि मनुष्य की सोच बहुत बड़ी है, इसलिए सिर्फ वो अपने लिए सुख समेटना उसका मौलिक गुण धर्म नहीं होता। उस सामाजिक जीवन को भी वो सुख पहुंचाना चाहता है जिसे वो भोग रहा है। विवेकशील प्राणी होने के कारण वो अच्छे बुरे के बारे में सही निर्णय ले सकता है। जब वो सही निर्णय लेने लगता है तब आध्यात्मिक महत्व को भी समझने लगता है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग का सहारा लेने के लिए उसे सुबह शाम साधना करनी पड़ती है। इसी साधना की बदौलत मनुष्यों में व्यक्तिगत मानसिक विकास और विश्व बंधुत्व की भावना कायम होगी। यहां एक और बात बहुत जरूरी है दोस्तों, आध्यात्मिकता के साथ मनुष्य को भौतिक और मानसिक जगत से भी संतुलन बनाकर रखना होगा। मनुष्य में वृहत्व को पाने की आकांक्षा है, इसे बड़ा देखने की इच्छा भी कह सकते हैं, इसे बड़ा बनने की इच्छा भी कह सकते हैं। अगर उसमें यह आकांक्षा न होती तो ब्रह्म समुद्र में रहकर भी वो परब्रह्म को पहचानने का प्रयास न करता और हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाता। विराट को पाने का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति है। व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं कि एक कार का मालिक 5 कारों का मालिक बनना चाहता है, करोड़पति अरबपति बनना चाहता है, मगर माने या ना माने सीमित संपत्ति को सभी मनुष्यों को संयुक्त संपत्ति के रूप में ग्रहण करना होगा। सीमित वस्तुओं की प्राप्ति के पीछे दौड़ दौड़ कर धक्के खा खा कर मनुष्य ने एक दिन ये सच तो खोज ही निकाला था कि सच में उसका मन ऐसा कुछ पाना चाहता है जो जीवन भर के लिए बस मिल जाए।

0: भजन किसी भी भाषा में धार्मिक विषय या आध्यात्मिक विचारों के साथ किसी भी भक्ति गीत को संदर्भित करना होता है, विशेष रूप से धार्मिक धर्मों में। तो लीजिए दोस्तों, सुनते हैं दिव्य दर्शन के ये प्यारे से भजन।
1: मोह माया के बंधनों में फंसे मनुष्य की वेदना को संबोधित करते हुए कबीर दास जी लिखते हैं कि ये माया ऐसी पापिनी है कि ये अलग अलग रूपों जैसे आशा, कृष्णा इत्यादि के रूप में मनुष्य को घेरे रहती है। शरीर मरते रहते हैं, मनुष्य बार बार जन्म लेते रहते हैं, परंतु ये मोह माया के बंधन कभी समाप्त नहीं होते। इसलिए इस माया से सदैव दूर रहना चाहिए।

मनुष्य के जन्म मरण के चक्र को संबोधित करते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि अपने जीवन काल में ही मनुष्य को ऐसे सत्कर्म करने चाहिए कि जब वो प्राणी संसार से जाए तब ये सारा संसार उसे याद करते हुए उसके द्वारा की गई ईश्वर भक्ति तथा उसके द्वारा किए गए सत्कर्मों को याद करते हुए रोए और उसे सदा सदा के लिए अपने हृदयों में बसा कर रखे।

0: मेरे।
1: संत शिरोमणि कबीर दास जी का यह दोहा भी कर्म कांडी भक्ति के तरीकों पर प्रहार करता है। वो कहते हैं कि भले ही लाख माला फेर लो, यदि आपके मन में प्राणी मात्र के लिए दया और प्रेम का भाव नहीं है तो आपकी पूजा पूर्णतः व्यर्थ है। अतः आपने हाथ की माला का त्याग करना है और अपने मन को शुद्ध करना है, जिसमें जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव न हो और सभी प्राणी एक समान रूप से प्रिय।

संत कबीर दास जी चाटुकारों और चापलूसों से बचकर रहने की सलाह देते हैं। उनके मतानुसार जो हमारी निंदा करता है उसे सदा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि केवल वही है जो कि आपको आपकी कमियों के बारे में अवगत कराता रहता है, जिसे हम दूर

रेडियो टंटिया भील आपके झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM। सुनते रहिए आपके झाबुआ की आवाज़।

बार बार किसी पूज्य या देवता या प्रभु को याद करना, उसका नाम लेना, जय जयकार करना, ये वही गीत हैं जिसमें ईश्वर या किसी देवता आदि के गुणों का कीर्तन किया जाता है। इन्हीं को भजन कहते हैं मित्रों। तो लीजिए सुनते हैं दिव्य दर्शन की ये भजन। मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर और आप सुन रहे हैं दिव्य दर्शन के भजन।

अनूठी ईमानदारी। श्रीलंका में मेहता शैसा नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो परम ईश्वर भक्त और ईमानदार था। वो धर्मशास्त्रों का वाक्य दोहराया करता था कि बिना परिश्रम के प्राप्त हुआ धन विष का काम करता है। वह पहले जड़ी बूटियों का एक बड़ा थोक व्यापारी था, लेकिन अब खुद जंगलों से जड़ी बूटियां लाता और उन्हें बेचकर दिन गुजारता था। उसका एक मित्र था लारोटा। वह भी पहले काफी धनी था, लेकिन इन दिनों गरीबी के दिन बिता रहा था। एक दिन मेहता शैसा लारोटा के बागीचे में जमीन खोदकर जड़ी बूटियां तलाश रहा था कि अचानक उसे एक घड़ा दिखाई दिया। उसमें सोने की अशर्फियां भरी हुई थी। शैसा ने अशर्फियों को देखा, किंतु उसके अंदर की सच्चाई ने लालच को पास भी फटकने नहीं दिया। उसने घड़े को मिट्टी में ही दबा दिया और लारोटा के पास पहुंचकर सूचना दी कि बगीचे में अशर्फियों से भरा घड़ा दबा हुआ है। लारोटा तत्काल बगीचे में उस जगह पहुंचा जहां पर वह घड़ा दबा हुआ था। अशर्फियां देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने शैसा को इनाम देने की कोशिश की तो उसने कहा कि दूसरे का धन विष के समान घातक होता है। लारोटा ने बगीचे की खुदाई करवाई तो उसे अशर्फियों से भरे कई घड़े मिले। शैसा की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसने अपनी बहन का विवाह उससे कर दिया।

चलिए दोस्तों, इन्हीं भजनों के साथ हम सभी का दिन शुभ हो। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा, आज के सुखदायक दिन के बाद कल सुबह मैं फिर प्रभु के नाम के साथ, प्रभु के भजनों के साथ हाजिर हो जाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप हैं आप ही के जहां।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भी 90.8 FM। एक म्यूजियम से शुरू हुई कहानी, क्यूरियोसिटी की पावर। दोस्तों, कभी आप किसी ऐसे म्यूजियम गए हैं और वहां किसी एक छोटी सी लाइन ने आपको कुछ ऐसे इन्फ्लुएंस किया है जिसने आपकी सोच बदल दी हो? कभी एक छोटी सी कहानी ने आपको रोक कर सोचने पर मजबूर किया हो? आज मैं आपको एक ऐसे स्टोरी टेलर के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्होंने अपनी जिंदगी का डायरेक्शन एक म्यूजियम में पड़े हुए एक सच से बदल दिया। नाम है अरविंद विजय मोहन। उनकी कहानी सिंपल सी लगती है, लेकिन मैसेज बहुत गहरा है। एक वक्त था जब उनका इंस्टाग्राम भी बाकी लोगों की तरह था, ट्रैवल के फोटोज, लग्जरी प्लेसेस, खूबसूरत विजुअल्स, सब कुछ अच्छा था पर मीनिंगफुल नहीं। फिर एक दिन वो जर्मनी के एक म्यूजियम में गए, मर्सिडीज म्यूजियम। वहां उन्होंने पढ़ा मर्सिडीज नाम एक्चुअली एक छोटी सी लड़की का नाम था। एक फादर ने अपनी बेटी के नाम पर कार का नाम रखा था। एक बिजनेस डिसीजन के पीछे एक इमोशनल कहानी थी, और बस यहीं से उनकी सोच बदल गई, पूरा यू टर्न ले लिया समझो। उन्होंने महसूस किया हर चीज के पीछे एक कहानी जरूर होती है। हर ब्रांड, हर बिल्डिंग, हर इन्वेंशन किसी इंसान की एक कहानी ही तो है। दोस्तों, यहीं से शुरू होती है उनकी क्यूरियोसिटी की जर्नी। उन्होंने डिसाइड किया कि इंस्टाग्राम पर सिर्फ फोटोज नहीं डालेंगे, कहानियां बताएंगे। और आज उनका कंटेंट सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होता, वो इंसाइट होता है, मीनिंग होता है, वो हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बना देते हैं, ब्रांड्स को ह्यूमन बना देते हैं, और फैक्ट्स को इमोशनल बना देते हैं। और सबसे खास बात, वो हर कहानी के बाद एक सवाल छोड़ देते हैं, हम अपनी कहानी कैसे बता रहे हैं, सोच कर देखिए। क्योंकि सच ये है, हर इंसान एक ब्रांड ही तो है, हर इंसान की एक स्टोरी है। पर फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग उस स्टोरी को समझते हैं और कुछ नहीं। अरविंद कहते हैं स्टोरी सिर्फ बताने के लिए नहीं होती, स्टोरी डायरेक्शन देती है। अगर आप अपने पास्ट को समझ लेते हैं तो आप अपने फ्यूचर को डिजाइन कर सकते हैं। सोचिए, अगर मर्सिडीज सिर्फ एक कार होती बिना किसी कहानी के, क्या वो इतनी आइकॉनिक होती? अगर कोई लीडर सिर्फ डेजिग्नेशन होता बिना स्ट्रगल की कहानी के, क्या लोग उसे कनेक्ट करते? नहीं। हम

फैक्ट से इम्प्रेस नहीं होते पर कहानी से कनेक्ट जरूर होते हैं, और यही यही अरविंद का कोर मैसेज है। क्यूरियोसिटी को जिंदा रखो, सवाल पूछते रहो, सरफेस के थोड़ा नीचे देखो। और इंस्टाग्राम एक रिमाइंडर है और उनका इंस्टाग्राम एक रिमाइंडर है कि दुनिया बोरिंग नहीं है। हमारी नजर बोरिंग हो जाती है जब हम देखना सीख लेते हैं, तो हर चीज में कहानी मिल ही जाती है। एक बिल्डिंग, एक नाम, एक पुराना सा बोर्ड, सब में हिस्ट्री छुपी हुई है। और शायद इसीलिए उनके फॉलोअर्स सिर्फ कंटेंट कंज्यूम नहीं करते, वो सोचने लगते हैं। दोस्तों, आज का सवाल मेरा आपसे है, आपकी कहानी क्या है? आप अपने आप को कैसे डिफाइन करते हैं? अगर आज कोई आपकी बायोग्राफी लिखे तो उसमें सिर्फ डेजिग्नेशन होगा या कोई जर्नी भी होगी, कोई किस्सा भी होगा? क्यूरियोसिटी सिर्फ नॉलेज नहीं देती, क्लैरिटी देती है। और जब क्लैरिटी आती है तो इंसान ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। याद रखिए, जिंदगी में सिर्फ जीना नहीं, ऑब्जर्व करना सीखिए, क्योंकि कहानियां हर जगह हैं, बस देखने वाली नजर चाहिए। देख के देखिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारी हंसने का समय।
1: इंसान प्रोडक्ट नहीं खरीदता, कहानी खरीदता है। इसलिए 20 रुपए की कॉफी घर पर नहीं पीता, 200 रुपए देकर कैफे में बोलता है। यहाँ वाइब अलग है भाई।

नरेटिव का जाल, मीडिया सच नहीं सच का फ्रेम दिखाता है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है सच क्या होता है? और जो हम कहते हैं वो सच होता है या सच का सिर्फ एक हिस्सा होता है? मीडिया हमेशा झूठ नहीं बोलता, लेकिन मीडिया सच को कैसे दिखाता है वही असली खेल है। इसको कहते हैं फ्रेमिंग। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हेडलाइन आई, प्रोटेस्टर्स ने सिटी को ब्लॉक किया, और दूसरी आए, सिटीजंस ने जस्टिस डिमांड की। इवेंट सेम है, लोग सेम है, रोड वही है, बस शायद शब्द बदल गए, फ्रेम बदल गया, और आपका रिएक्शन भी आई एम श्योर बदल गया। यही कल्चरल मैनिपुलेशन का पहला बीज है, सच को छुपाना नहीं, सच को एंगल देना। एजेंडा सेटिंग, जो दिख रहा है वही इंपॉर्टेंट है। 1970 में कम्युनिकेशन रिसर्चर्स ने एक थ्योरी दी, एजेंडा सेटिंग थ्योरी। मीडिया लोगों को यह बताता है कि सोचना है, मीडिया लोगों को यह बताता है कि किस बारे में सोचना है। और अगर 10 दिन तक टीवी पर सिर्फ क्राइम दिखाया जाए तो लोग कहेंगे देश अनसेफ है, चाहे क्राइम रेट स्टैटिस्टिकली कम हो रहा हो। अगर 15 दिन तक इकोनॉमी की ग्रोथ हेडलाइन बने, लोग कहेंगे देश तो प्रोग्रेस कर रहा है, चाहे उनके घर का बजट टाइट ही क्यों ना हो। हम अपनी रियलिटी एक्सपीरियंस से कम, मीडिया के रिपीटेशन से ज्यादा बनाते हैं। अब थोड़ा सिनेमा की बात करते हैं। सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, सिनेमा कलेक्टिव इमेजिनेशन को डिजाइन करता है। हॉलीवुड ने 1940s एंड 50s में अमेरिकन सोल्जर को हीरो बनाकर वॉर को मॉरल ड्यूटी के रूप में प्रेजेंट किया। कोल्ड वॉर के दौरान विलेन का एक्सेंट अलग होता है, कलर ग्रेडिंग डार्क होती है, म्यूजिक टेंस होता है, आपका दिमाग स्लोली डिसाइड करता है कि ये लोग थ्रेट हैं। आपने कभी कॉन्शियसली डिसाइड नहीं किया, फ्रेम ने आपके लिए जरूर डिसाइड किया। इंडिया में भी 70s 80s के दौरान एंग्री यंग मैन का राइज हुआ। सिस्टम करप्ट है, हीरो सिस्टम से लड़ता है, ऑडियंस क्लैप करती है। ये सिर्फ फिल्म नहीं थी, ये पब्लिक फ्रस्ट्रेशन का सिनेमैटिक आउटलेट था। सिनेमा इमोशन को आइडियोलॉजी में बदलने का सबसे सटल तरीका होता है। सबसे साइलेंट वेपन रिपीटेशन। मैनिपुलेशन लाउड नहीं होती, वो रिपीट होती है। एक इमेज को 50 बार देखिए, वो नॉर्मल लगने लगेगी। एक स्टीरियोटाइप को बार बार सुन लीजिए, वो जोक बन जाएगा, फिर ट्रूथ बन जाएगा। सच और कहानी का सच डिफरेंस ही नहीं रहता है। 1990 के एड्स याद कीजिए, फेयरनेस क्रीम इक्वल्स टू सक्सेस। शादी के रिश्तों में गोरी प्रेफरेंस, ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं थी, ये ब्यूटी स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग थी। और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्शन एस्पिरेशन बन गया। कल्चर को चेंज करने के लिए लॉज नहीं, विजुअल्स रिपीट किए गए। और अब आते हैं हमारा सबसे फेवरेट और सबसे नया एजेंडा, सोशल मीडिया एल्गोरिथम मैनिपुलेशन।

आज मीडिया सिर्फ टीवी स्टूडियो में तो नहीं है, वो आपके हाथ में है हर समय। लेकिन यहाँ एक नया प्लेयर है, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम डिसाइड करता है कि आप क्या देखेंगे। अगर आप एक पॉलिटिकल व्यू देखेंगे, आपको 20 और मिलेंगे। अगर आप एक आउटरेज क्लिप देखेंगे, आपको एक्सट्रीम वर्जन्स मिलेंगे। इसको कहते हैं एको चेंबर। आपको लगता है दुनिया आप जैसे सोच रही है, असल में एल्गोरिथम आपको फिल्टर बबल में रख के दुनिया दिखा रही है। आपको लगता है आप इन्फॉर्म्ड हैं, असल में आप एक क्यूरेटेड रियलिटी में जी रहे हैं। मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट एक पॉलिटिकल थिंकर ने टर्म दिया था, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। इसका मतलब पब्लिक को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं किया जाता, कभी नहीं। पब्लिक को स्लोली कन्विंस किया जाता है कि जो हो रहा है वही सही है। रिपीटेटेड एक्सपर्ट पैनल्स, रिपीटेटेड ग्राफिक्स, रिपीटेटेड नरेटिव्स, कहानियां, किस्से, लोग रेजिस्ट नहीं करते, लोग अग्री करने लगते हैं। कल्चर को फोर्स से नहीं, फ्लो से बदला जाता है। विलेन बनाना, हीरो बनाना, मीडिया किसी को भी विलेन बना सकती है, किसी को भी हीरो बना सकती है, वो भी रातों रात। क्लोजअप शॉट्स, सीरियस बैकग्राउंड म्यूजिक, सिलेक्टिव फुटेज, और हीरो सॉफ्ट लाइटिंग, बैकग्राउंड में अपलिफ्टिंग स्कोर, पॉजिटिव कमेंट्री। ह्यूमन ब्रेन स्टोरी टेलिंग का अडिक्ट है, हम फैक्ट्स नहीं स्टोरीज कंज्यूम करते हैं। और जो स्टोरी कंट्रोल करता है वो परसेप्शन कंट्रोल करता है। सबसे बड़ा सवाल, तो क्या मीडिया हमेशा गलत है? नहीं, मीडिया पावरफुल है, ताकतवर है, और पावर न्यूट्रल होती है। उसे कैसे हो वो मैटर नहीं करता। प्रॉब्लम तब होती है जब व्यूअर क्रिटिकल नहीं होता, सवाल नहीं पूछता, अपनी सोच नहीं इस्तेमाल करता। जब हम हेडलाइन शेयर कर देते हैं बिना सोर्स तक चेक करे, जब हम वायरल क्लिप पर रिएक्शन दे देते हैं बिना कॉन्टेक्स्ट देखे। कल्चरल मैनिपुलेशन तब सक्सेसफुल होता है जब ऑडियंस पैसिव हो। दोस्तों, सच को झूठ बनाना मुश्किल है, लेकिन सच को फ्रेम करके आधा सच बनाना आसान है। आज जब आप न्यूज देखें, फिल्म देखें या इंस्टाग्राम की रील देखें, एक सवाल जरूर पूछेगा, मुझे क्या दिखाया जा रहा है और क्या नहीं दिखाया जा रहा। क्योंकि नरेटिव का जाल तब टूटता है जब देखने वाला जागता है। जाग कर देखिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: जब प्रोडक्ट गलती से फ्लोट करने लगे, कोई और कंपनी पैनिक करती, जीनियस ब्रांड बोल उठे, देखिए ये पानी पर तैरता है। लेसन, बिजनेस में मिस्टेक भी फीचर बन सकती है।

बोरोलिन एक हरी डिब्बी एक देसी दास्तां। दोस्तों आज मैं आपको किसी ग्लैमरस कॉस्मेटिक ब्रांड की कहानी नहीं सुनाने वाली, ना कोई फिल्मी इंडोर्समेंट, ना कोई फ्लैशी एड कैंपेन। आज की कहानी एक छोटी सी हरी टिन की डिब्बी की है जो शायद आपके घर में जरूर होगी, और अगर नहीं है तो कभी ना कभी तो जरूर रही होगी। नाम है बोरोलिन। हाँ, वही बोरोलिन जिसकी खुशबू आते ही बचपन की याद आज भी ताजा हो जाती है। शुरुआत 1930 में अंग्रेजों का दौर था। साल 1930 इंडिया अभी आजाद नहीं हुआ था। बाजार में ज्यादातर फॉरेन प्रोडक्ट्स ही मिलते थे। देसी चीजें बनाना एक हिम्मत का काम था। तब कोलकाता की एक व्यक्ति गौर मोहन दत्ता, इन्होंने डिसाइड किया कि एक इंडियन एंटीसेप्टिक क्रीम बनाई जाए। उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की जीडी फार्मास्यूटिकल्स, और वहां से पैदा हुई बोरोलिन। नाम भी इंटरेस्टिंग है, बोरो आया बोरो एसिड से जो इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है, ओलिन आया लिनोनिन से जो स्किन को नरम बनाता है। मतलब नाम के अंदर ही फॉर्मूला छिपा है भाई। सिर्फ क्रीम नहीं, स्वदेशी सोच। उस टाइम बोरोलिन सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं थी, वो एक मैसेज थी, अपना बनाओ अपना लगाओ। फॉरेन क्रीम्स के सामने एक देसी जवाब, सिंपल ग्रीन डिब्बी, सीधा सा डिजाइन, कोई एक्स्ट्रा शोशा नहीं। और शायद इसी सिंप्लिसिटी ने लोगों का दिल जीत लिया सालों तक, शतकों तक। वो पहचान वाली खुशबू, आपने नोटिस किया है बोरोलिन की एक खास स्मेल होती है, थोड़ी मेडिसिनल, थोड़ी कंफर्टिंग। कई ब्रांड्स टाइम के साथ फ्रेग्रेंस चेंज कर देते हैं, पर बोरोलिन ने अपनी ओरिजिनल खुशबू ऑलमोस्ट वही रखी है, क्योंकि वो समझ गए थे प्रोडक्ट सिर्फ स्किन पर नहीं लगता, यादों पर भी लगता है। दादी की संदूक में, माँ के पर्स में, स्कूल के बाद घुटने की चोट पर, हर जगह एक ही क्रीम, बोरोलिन। बिना शोर के पॉपुलर हुई बोरोलिन। आज के जमाने में ब्रांड बनाने के लिए सोशल मीडिया, रील्स, इन्फ्लुएंसर्स, एड्स, सब कुछ चाहिए। पर बोरोलिन का असली एडवर्टाइजमेंट क्या था आप जानते हैं? लोग एक घर से दूसरे घर तक, एक माँ से दूसरी माँ तक, वर्ड ऑफ माउथ। जब प्रोडक्ट सच में काम करता है तो लोग खुद ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। मुश्किल दौर में भी साथ दिया। 1947 का पार्टीशन बिजनेस के लिए टफ टाइम था, पर बोरोलिन का प्रोडक्शन बंद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लोगों को उसकी जरूरत थी। छोटी सी कट, फटी हुई स्किन, सर्दी में फटी हुई एड़ियां, बोरोलिन हर घर का एक परमानेंट मेंबर बन चुकी थी। पैकेजिंग जो बदली नहीं। एक और इंटरेस्टिंग

बात। मार्केट में इतने सारे नए एंटीसेप्टिक क्रीम्स आए, मॉडर्न ट्यूब्स, ग्लॉसी पैक्स, स्टाइलिश ब्रांडिंग, लेकिन बोरोलिन आज भी अपनी हरी टिन में ही मिलती है। क्यों? क्योंकि कभी कभी चेंज करना ग्रोथ नहीं होता, कभी कभी कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। वो टिन सिर्फ कंटेनर नहीं है, वो आइडेंटिटी है। सोचिए, अगर आपसे कोई पूछे घर में एंटीसेप्टिक क्रीम है, अक्सर जवाब होता है हाँ बोरोलिन है। ये होता है ब्रांड रिकॉल, जब प्रोडक्ट कैटेगरी का नाम ही ब्रांड बन जाए। बंगाल में तो बोरोलिन लोग घर का हिस्सा मानते हैं, शादी के सामान में, ट्रैवल बैग में, विंटर के टाइम बेड साइड टेबल पर, सभी जगह जानी जाती है। 100 साल का सफर, लगभग एक सदी होने को आई है। ना अग्रेसिव मार्केटिंग, ना कोई सेलिब्रिटी फेस, सिर्फ एक चीज, भरोसा। और शायद इसीलिए बोरोलिन एक एग्जाम्पल है कि ब्रांड लाउड होने से नहीं, रिलायबल होने से बनता है। दोस्तों, कभी कभी सबसे सिंपल चीजें सबसे ज्यादा टिकती हैं। हरी भरी डिब्बी, एक सिंपल फॉर्मूला और एक देश की यादें। बोरोलिन सिर्फ क्रीम नहीं, वो कंटिन्यूटी है, वो रिमाइंडर है कि असली वैल्यू पैकेजिंग से नहीं, क्वालिटी से आती है। तो अगली बार जब आप बोरोलिन लगाएंगे, सिर्फ स्किन हील नहीं होगी, शायद थोड़ी सी मेमोरी भी रिफ्रेश हो जाए। लगा के देखिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: नए ब्रांड्स, पैकेजिंग ग्लॉसी, एड फ्लैशी, इन्फ्लुएंसर रेडी। पुराने ब्रांड्स, हम 80 साल से खड़े हैं, तुम इंस्टाग्राम संभालो, हम भरोसा संभालते हैं। What?

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज। दुनिया में ज्यादातर इंसान मन हारे बैठे रहते हैं कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं तो छोटा आदमी हूं, क्या काम कर पाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, ज्ञान नहीं है, क्या कर लूंगा। कई बार तो धनी और ज्ञानी लोग भी अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता जैसे मुहावरों के पीछे छिप जाते हैं। ये सुंदर युवती भी बस यही सोचती थी। दुनिया जब द्वितीय युद्ध लड़ने जा रही थी तब वो क्या कर सकती थी। उसके देश पोलैंड पर जर्मनी और रूस का कब्जा हो चुका था। वो युवती कभी नर्स का काम करती तो कभी नौकरानी। जुल्म के दिन थे, यहूदियों पर तो कहर टूट रहा था, हिटलर की हैवानियत चरम पर थी। ये युवती ईसाई थी पर अपने देश की आजादी की पक्षधर भी थी, तो उसे भी तरह तरह से सताया जाता था। वो बिचारी अपने परिवार से बिछड़ गई, चुपचाप नजरें झुकाए मुंह छिपाए घर से निकला करती थी कि पता नहीं कब कौन सी नई मुसीबत टूट पड़े। सामान्य कद की, दुबली पतली, मृदुभाषी, नीली आंखें और घने सुनहरे बालों वाली यह युवती तमाम झमेलों से बचने के लिए इधर उधर फिरती थी। वो सोचती रहती थी कि ये सोचकर भी वो क्या कर लेगी, किसे बचा लेगी। अक्सर वो आंखें मूंद लेती जैसे ज्यादातर लोग करते हैं, पर एक दिन तो हद ही हो गई। अप्रैल का महीना था, साल 1942, बाजार में कोहराम मचा था, नाजी दरिंदे लोगों को मार रहे थे, एक छोटे से बच्चे को भी उन्होंने उसकी मां से छीन लिया। छीनते ही एक नाजी अफसर ने उसे हवा में उछाल दिया और जमीन पर गिरने से पहले ही गोली मार दी। हैवानियत के बेरहम मंजर में नाजी पागल जानवरों से भी ज्यादा खूंखार नजर आ रहे थे। उनकी रगों में सिर्फ नफरत का सैलाब था जिसमें इंसानियत का नामो निशान नहीं था। ये नाजी भी कभी बेबस शिशु रहे होंगे, उन्हें किसी ने मां की गोद से नहीं छीना होगा ना, उन्हें